सुप्रभा मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के जून महीने की 27 तारीख, सुबह के 5:58 और 46 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं खेती किसानी, जानकारी लेते हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में। वाचन है अनीता तिर्के का।
3: आज औषधीय पौधों का महत्व और उपयोग बढ़ता जा रहा है। झारखंड के किसान भाई घृत कुमारी, बेल, आंवला, सर्पगंधा, अश्वगंधा, सतावर, ब्राह्मी, सफेद मूसली, स्टाविया, कालमेघ इत्यादि की खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इन औषधीय पौधों की मांग बाजार में बहुत है, अतः विपणन में दिक्कत नहीं होगी। कई औषधीय पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें काम में आती हैं, जैसे अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, सर्पगंधा आदि। जिन औषधीय पौधों के पत्ते काम में आते हैं उनमें घृत कुमारी, तुलसी, स्टीविया, नीम इत्यादि हैं। जिन पौधे के पंचांग काम में आते हैं उनमें ब्राह्मी, कालमेघ, पुदीना मुख्य हैं। बीज या फल के रूप में औषधीय पौधे में बेल, पपीता, हर्रे, बहेरा, आंवला इत्यादि प्रमुख है। घृत कुमारी भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों में कई रोगों के लिए सदियों से व्यवहार किया जाने वाला एक औषधीय पौधा है। यह उष्ण क्षेत्र अनुकूल वनस्पति है, अतः कम पानी में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यह 1 से 2 फुट ऊंचाई वाला बहुवर्षीय प्रकृति वाला पौधा है। यद्यपि इसकी खेती पथरीली और वर्षा आधारित बरानी भूमि में भी हो सकती है, पर अच्छे जल निकास वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। घृत कुमारी के पौधे से कई छोटे छोटे जड़दार पौधे निकलते हैं जिन्हें शकर कहा जाता है। इनको मुख्य पौधे से अलग कर नर्सरी में लगाया जाता है। एक विकसित पौधे से एक वर्ष में 10 से 15 पौधे प्राप्त होते हैं। पौधों को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खेतों में लगाया जाता है। खेत की तैयारी हेतु 100 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद और 25 किलोग्राम लिंडेन धूल प्रति हेक्टेयर की दर से देना है। पौधा लगाने के बाद 1 सप्ताह तक हल्की सिंचाई जरूरी है। खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करना जरूरी है। गर्मी में 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना ठीक रहेगा। वर्षा ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। रुपाई के 6 महीने बाद करंज या नीम की खल्ली 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से देना है। इनकी अच्छी किस्मों में IC 1112/67, IC 1112/66, 1112/80, 1112/72 और आकांक्षा है। घृत कुमारी के पौधे से रुपाई के 1 वर्ष बाद उत्पादन मिलने लगता है। पौधों की पत्तियों को सावधानी पूर्वक काटकर और धोकर पैक करें और उद्योगों को भेजें। एक स्वस्थ पौधे से 1 वर्ष में लगभग 3 से 5 किलो पत्तियां प्राप्त होती है। एक बार पौधे लगाने से 5 साल तक पत्तियां प्राप्त होती है। पहले वर्ष में प्रति हेक्टेयर खर्च लगभग 1 लाख रुपए है, जबकि अगले 4 साल में प्रति वर्ष 20,000 व्यय होते हैं। प्रथम वर्ष से 5वें वर्ष में प्रति हेक्टेयर 30 मीटर टन पत्ता से कुल 1.5 लाख रुपए और पौधों से 75,000 रुपए तक की कुल आय प्राप्त होती है। अतः शुद्ध आय के रूप में प्रथम वर्ष में 1,10,000 रुपए और दूसरे से 5वें वर्ष तक 2 लाख रुपए प्रति वर्ष आमदनी होती है। सतावर भी एक झाड़ी वाला लता है जो लगभग 1 से 2 मीटर ऊंची होती है। खेत की तैयारी हेतु इसे मई जून में 2 बार अच्छी तरह गहरी जुताई करनी है। 100 क्विंटल कंपोस्ट के साथ साथ 200 किलो जैविक खाद प्रति हेक्टेयर दें। इसके बाद खेत में मेड़ बनाकर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। बीजों को पौधशाला में बुवाई कर बिचड़े तैयार किए जाते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता होती है। पौधों की रुपाई के लिए 25 से 30 दिनों के बाद निकाई गुड़ाई करनी है। दो तीन निकाई गुड़ाई के बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि तब तक पौधे बड़े हो जाते हैं।
2: खेती किसानी में अभी आप जानकारी ले रहे थे औषधीय पौधों की खेती के बारे में। वाचन था अनिता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन। संकलन एवं वाचन है दिनेश कुमार लाल का।

धर्म का सार यही है कि मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, यानी मानव जीवन का उद्देश्य सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही असल में मानव जीवन का सौंदर्य और श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा बल्कि परम पिता परमेश्वर की सच्ची आराधना भी है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीबों को धन देना, अनपढ़ को विद्या देना ही हर व्यक्ति का सेवा धर्म है। असल में दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य सेवा है। यदि हम किसी कामना के लिए दूसरों की सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। हम भले ही कितने सुविधा संपन्न क्यों ना हों, लेकिन जो सुख हमें दूसरों की सेवा करने से मिलता है वो सभी सुखों में सर्वोपरि है। सेवा करने से जो संतोष प्राप्त होता है वो किसी और कर्म से संभव नहीं है। सेवा भाव से व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा में अपनी परेशानियों को भूल जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा में जुट जाए तो दुनिया में गरीबी, अशिक्षा, अहंकार, घृणा, पाप, अक्रूरता इत्यादि अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे और तब सभी सुखी संपन्न और प्रसन्न हो जाएंगे। असल में हर देश की भाषा, संस्कृति और बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी के कल्याण का मार्ग मानवता की सेवा ही है। हम सभी को क्रोध, घृणा, अहंकार को त्याग कर अपने भीतर दया, क्षमा और सेवा का भाव जागृत करना चाहिए ताकि समाज, देश, दुनिया में शांति स्थापित हो सके। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है तो युधिष्ठिर ने कहा कि दया ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर दीनहीन, असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति पर दया दिखाते हुए उनकी सेवा और सहायता नहीं करेंगे तो कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी हमारा घर, समाज, देश और विश्व उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारे वेदों में कहा गया है कि मनुष्य, तू दो हाथों से कमा और सैकड़ों हाथों से दान कर। इसी तरह प्रकृति भी हमें यही सीख देती है कि तेरे पास तेरा अपना कुछ नहीं है, जो है वो

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। ये आकाशवाणी रांची है। वक्त हो चला है कार्यक्रम आराधना का। आरंभ करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ। शैलेंद्र की रचना है और संवेद स्वर में।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समवेत स्वर में। भजनों के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मानिक वर्मा की आवाज में ये भक्ति गीत।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आइए सुनते हैं अगला भक्ति रचना।

आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार। स्वास्थ्य चर्चा में आज आपको जानकारी मिलेगी त्वचा रोग और होम्योपैथिक का पद्धति से उपचार के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर सीताराम सिंह, उनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। समय है 7:05 पर। हम आपको सुनवाएंगे सुबह सुरीली। 7:45 पर प्रसारित होगा कानून की बात। 8:00 आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर रांची आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

9 बजे हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद प्रस्तुत होंगे दो गते, विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध होगी। कलाकार होंगे चीर सत्य ठाकुर और तबले पर संगत करेंगे संचाली नाग। 10 बजे का समय होगा कल्याणी का, जिसमें चर्चा होगी अच्छे पलों को पहचाने और खुश रहें और बिगड़ती बात को बनाना भी एक कला है। प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की।

मिनट पर प्रसारण होगा फिल्म संगीत का, 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार। अनुरंजनी का समय होगा 1:20 पर, जिसमें आप सुनेंगे मिश्र पहाड़ी में ठुमरी, कलाकार होंगे शोभा गुड्डू।

अभी आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले संस्कृत में और हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता त्वचा रोग और होम्योपैथिक पद्धति से उपचार के बारे में। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सीताराम सिंह, भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
4: मित्रों नमस्कार और सुप्रभात। दोस्तों आज हम बात करेंगे त्वचा रोग के बारे में, स्किन डिजीज के बारे में। आए दिन हम छोटे छोटे जो स्किन की बीमारियां होती हैं, जैसे खुजली होना, हाथों पैर में खुजली हो जाती है, रिंगवॉर्म, दाद, दिनाई या चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, इस तरह की बीमारी से हर लोग परिचित हैं और हर लोग को कहीं ना कहीं बीमारी उनको सताती है और इस तरह की बीमारियों का सटीक इलाज हमारे होम्योपैथिक में है। तो आज हमारे साथ ऐसे कार्यक्रम में होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सीताराम सिंह साहब उपस्थित हैं। ये बताएंगे कि त्वचा की कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं और आप स्वतः ही इसका इलाज कर सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब स्वागत है।
5: थैंक यू।
4: त्वचा की डॉक्टर साहब कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं और उसका हम किस प्रकार घर बैठे ही होम्योपैथिक पद्धति से इसका इलाज कर सकते हैं?
5: जी जी, देखिए त्वचा की तो जो कॉमन बीमारी है खुजली हो गया, दिनाई हो गया जिसको रिंग वर्म हम लोग बोलते हैं, और फिर एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, ये सब कॉमन बीमारियां हैं जो आए दिन लोगों को परेशान करता है, होते रहता है। खुजली आम समस्या लोगों का है।
4: जी, खुजली, सोराइसिस, दाग, दिनाई। खुजली तो प्रायः हम समझ लेते हैं कि हमें खुजली हो रही है। दाग, दिनाई या फिर आपने सोराइसिस बताया, क्या पहचान है इसकी?
5: हाँ, दाद है जिसको हम लोग रिंग वर्म बोलते हैं
4: जी।
5: ये त्वचा में ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। रिंग की तरह, अंगूठी की तरह गोल गोल चकता हो जाता है, चारों तरफ स्किन में उभार आ जाता है, लाल लाल दाने हो जाते हैं, उसमें इचिंग बहुत रहता है, खुजली बहुत रहता है। कुछ लोग दाद बोलते हैं, दिनाई बोलते हैं, एक ही चीज़ है।
4: अच्छा,
5: तो ये समस्या हो जाता है रिंग वर्म, जिसको दाद हम लोग बोलते हैं
4: जी।
5: ये खुजलाने से बहुत जलन होता है, काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। हाँ, सोराइसिस जो है वो अलग बीमारी है, एक तरह का जो है ऑटो इम्यून डिजोर्डर्स हो जाता है। स्किन सेल में जो है ड्राइनेस हो जाता है, रफनेस हो जाता है, रैश हो जाता है, वो काफ़ी इची, स्केली, देखने में बाहर भद्दा गंदा लगता है, सूखा सूखा भी लगता है, इस तरह का जो है पहचान इसका है, सोराइसिस का।
4: जी डॉक्टर साहब, हम होम्योपैथिक द्वारा इसकी उपचार की बात करें, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो त्वचा की सामान्य बीमारियाँ हैं ये क्यों हो जाती है, क्या कारण है इसका?
5: कारण तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। खुजली की बात करेंगे तो माइट्स है, स्कैबीज माइट्स है, जिसके वजह से हमारे शरीर में वो बहुत सूक्ष्मदर्शी होता है, जिसको हम खुले आँख से नहीं देख सकते, हमारे स्किन में प्रवेश कर जाता है। ज़्यादातर वो गंदगी से हो जाता है। बहुत लोग बहुत दिन तक नहीं स्नान किए या उनका बिस्तर गंदा रहा, कपड़ा पहनने का जो है वो गंदा संदा रहा, पसीना सूख गया शरीर में, जिसके चलते जो है माइट्स जो है हमारे स्किन लेयर में वो पनपने लग जाते हैं, जगह जगह जो है वो बहुत कंटेजियस होता है, दूसरे से भी फैल जाता है। अगर उसके साथ आप क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं तो आपको हो गया, उसके बेड में बैठ गए तो आपको अटैक कर गया,
4: घर बैठे होम्योपैथिक पद्धति के द्वारा हम अपना स्वतः इलाज कर सकते हैं। तो यदि किसी को खुजली हो जाता है
5: जी जी।
4: या आपने बताया दाद दिनाई, तो कैसे हम इसका उपचार करें?
5: हाँ,

0: देखिए, खुजली के लिए तो बहुत कॉमन मेडिसिन है, बाजार में उपलब्ध है। अब दिन भर आप ऑफिस में हैं, शाम को गए, जैसे ही कपड़ा उतारे तो पता चला कि शरीर में खुजलाहट होने लग गया। तो जैसे ही हवा का कॉन्टेक्ट होता है हमारे बॉडी में तो खुजली महसूस होता है। उसके लिए सबसे अच्छी दवा है रूमेक्स। रूमेक्स बहुत ही अच्छी दवा है और शरीर में कहीं कुछ दाना नज़र नहीं आएगा, कहीं कोई घाव नज़र नहीं आएगा, लेकिन खुजली बहुत बेहद होता है तो उसके लिए रूमेक्स बहुत अच्छी दवा है। जिनको ये समस्या है, रूमेक्स क्रिस्पस नाम से दवा आती है, उसका लो पोटेंसी 6 पोटेंसी, ये रूमेक्स क्रिस्पस का 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी बाजार से लेके उसको सुबह शाम जो है ड्रॉपिंग में दो दो बूंद करके सुबह दोपहर शाम लेंगे तो हमको लगता है 1 सप्ताह उनकी खुजली ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा डोलिकस है। डोलिकस भी बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथ में। सल्फर बहुत कॉमन मेडिसिन है हमारे शरीर में। खुजली की समस्या, स्किन का जो भी प्रॉब्लम, स्किन का कहिए कि 99% प्रॉब्लम जो है सल्फर से हम ठीक कर सकते हैं। सल्फर हमारे शरीर में बहुत ही इफेक्ट डालता है। सल्फर से 99% हम जो है बीमारी, हम उसको स्किन डिजीज को दूर कर सकते हैं।
1: तो दवाइयों का जो मात्रा आपने बताया
0: जी
1: तो वो उम्र के हिसाब से लेंगे या फिक्स किया हुआ है कि इतना ही लेंगे?
0: पोटेंसी है तो लोअर पोटेंसी जो है, अब बच्चे, अब बहुत छोटा बच्चा है उसको हम 200 पोटेंसी नहीं देंगे, लोअर पोटेंसी में देंगे, 6 में देंगे, 30 में देंगे, क्योंकि हायर पोटेंसी एकाएक दे देने से एग्रावेट कर सकता है, बीमारी बढ़ सकती है। क्योंकि होम्योपैथिक में तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन है, जो दवा से हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं उस दवा से वो बीमारी हो भी सकती है
1: जी।
0: इसलिए हम लोग लोअर पोटेंसी उसको प्रोवाइड करते हैं। लोअर पोटेंसी लेने से वो एकदम सुगमता पूर्वक ठीक हो जाता है,
1: किसी भी आयु के वर्ग के व्यक्ति हो,
0: किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति हो
1: जी। तो ये तो खुजली की बात हो गई। और यदि हमें दांत दिनाइव जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे आपने बताया गोल गोल चकत्ते ऐसे नजर आने लगते हैं शरीर में, तो उसमें कौन सी दवा कारगर?
0: उसमें दवा जो है हम लोग ग्रेफाइटिस देंगे। ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी दवा है। और उसमें आर्सेनिक एल्बम देंगे, मेजेरियम देंगे, सोरिनम देंगे, ये सब बहुत कॉमन मेडिसिन है
1: जी
0: दिनाई के।
1: और इसकी मात्रा की हम बात करें तो कितना मात्रा दिया जाए इसमें?
0: मात्रा वही हम 6 या 30 पोटेंसी में जो है सुबह दोपहर शाम देंगे और 1 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह दवा खिलाएंगे, 1 सप्ताह खाने से बीमारी चली जाएगी।
1: और ये सुगमता पूर्वक दुकानों में उपलब्ध है?
0: एकदम उपलब्ध है, इजिली उपलब्ध है।
1: डॉक्टर साहब, इस तरह की बीमारी नहीं हो, त्वचा रोग हमें नहीं हो, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए?
0: हाँ, चूंकि त्वचा के रोग जो है ये कंटेजियस है, एक दूसरे से फैलता है, तो सबसे पहले क्या है कि हमको क्लोज कॉन्टेक्ट से बचना पड़ेगा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके जैसे बरसात के दिनों में लोगों को फोड़ा, फुंसी, खुजली ज़्यादा हुआ करता है। इसका मेन कारण क्या है कि अभी हवा में नमी ज़्यादा रहता है, तो जैसे क्या है कि स्नान किए तो स्नान करने के बाद हम त्वचा में पानी को अच्छा तरह से सूखा तौलिया से अच्छे तरह से उसको ड्राई करके तब कपड़ा पहने, इसका ध्यान रखना है। मोजा वगैरह जो है एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। पैर एकदम जब सूख जाए, चूँकि उंगलियों में जो है मॉइस्ट एब्जॉर्ब करके रखता है, कांख में एब्जॉर्ब करके रखता है, जंघा के बीच में एब्जॉर्ब करके रखता है, तो इन सब बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको ड्राई करके तब हम कपड़ा पहने। कपड़ा साफ पहने, धुला हुआ कपड़ा पहने, संभव हो तो आयरन कपड़ा ही पहने, प्रतिदिन आयरन करके पहने, क्योंकि आयरन करने से कपड़ा में जो भी बैक्टीरिया है उसका नाश हो जाता है। ये बचाव के लिए सबसे अच्छा।
1: और डॉक्टर साहब, हमारा खान पान बहुत बिगड़ गया है, तो खान पान पथ परहेज की हम बात करें
0: जी जी,
1: तो कौन कौन सी चीजों से हम दूरियां बनाएं और कौन कौन सी चीजों का हम
0: स्किन बीमारी में, तो ज्यादातर खान पान में साइट्रस फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। अंडा से एलर्जी होता है, अंडा अवॉइड करना चाहिए। मछली से एलर्जी होता है, इससे पोल्ट्री प्रोडक्ट से होता है, डेयरी प्रोडक्ट से भी होता है। अगर हम घर में पालतू पेट्स कुछ रखे हैं, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बहुत लोग पालते हैं घर में, तो हमको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पालते हैं तो उसका भी साफ सफाई का ध्यान रखें, क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं रखें, अपने बिस्तर में, सोफा में उसको दूर रखें, ताकि उससे भी बड़ी तेजी से जो है उनका बैक्टीरिया फैलता है।
1: तो दोस्तों, यदि अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, अपने परिवेश का हम समुचित ध्यान रखते हैं, तो इस तरह की बीमारियां हम पर आक्रमण नहीं करेंगी,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: और हम स्वस्थ रहेंगे,
0: बिल्कुल स्वस्थ।
1: तो दोस्तों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।
2: अभी

आप जानकारी ले रहे थे होम्योपैथिक पद्धति से उपचार और त्वचा रोग के बारे में। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर सीताराम सिंह, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुरीली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत से जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना है नक्शलियालपुरी की, संगीत है खयाम का, फिल्म का नाम है खानदान।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में, बोल है जावेद अख्तर के, धुन बनाई है शिव हरी ने।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। अगली पेशकश है फिल्म फर्ज से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म देश परदेश से ये नगमा, किशोर कुमार के स्वर में। शब्द रचना है अमित खन्ना की, सुरों से सजाया है राजेश रोशन ने।

सुबह सुरीली में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। अगला गीत है फिल्म आप तो ऐसे न थे से, मोहम्मद रफी की आवाज में, बोल है निदा फाजिल के, धुन बनाई है उषा खन्ना और कमल जोशी ने।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम कानून की बात, भेंटवार्ता सूचना का अधिकार अधिनियम। भेंटवार्ताकार हैं श्री राहुल सिन्हा, भेंट करता है संजीव कुमार लाल, प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

0: मित्रों नमस्कार। मित्रों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू है। इस सूचना का अधिकार के अंतर्गत आप कोई भी वांछित जानकारी सरकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जहां आपने कोई आवेदन दिया है किसी कार्य से संबंधित, आपको लगता है कि हमारा कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने कार्य की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। या कोई भी सूचना आप यदि सरकारी कार्यालय से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सूचनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं, क्या तरीका है, और कौन कौन सी सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपको नहीं है, क्या तरीका है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, और ये सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं श्री राहुल सिन्हा, आप एडवोकेट हैं और मेडिएटर झालसा। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: राहुल जी, सूचना का अधिकार अधिनियम काफ़ी प्रचलित है, बहुत लोग जानते हैं, ये अधिनियम क्या है और ये किस तरह कार्य करती है?
1: जी, सबसे पहले तो आपने जैसा कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, इसका जवाब, इसी के जवाब से शुरुआत किया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, ये 12 अक्टूबर 2005 को हमारे पार्लियामेंट के द्वारा इन्फोर्स किया गया, लाया गया। इसके तहत हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उन्हें ये अधिकार मिलता है कि वो कोई भी वैसी जानकारी जो पब्लिक ऑथोरिटी से रिलेटेड है, जो एक निजी जानकारी, एक निजी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जानकारी जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो जानकारी प्राप्त करने का उन्हें हक मिलता है, अधिकार मिलता है। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव, या एक तरह से कहें तो इसका एम यही है कि हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाया जाए, लोग अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग रहें, लोग में जागरूकता आए, और हमारे देश में, जो हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ लोग जो भी करप्शन हो रहा है, वो कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। और एक तरह से करप्शन को कंट्रोल करने में भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है।
0: जी, इसमें सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाती है।
1: जी
0: जी, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो जाने कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक जवाबदेही तय कर दी जाती है इसके अंतर्गत। तो कौन कौन से सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं इसके अंतर्गत, और कौन कौन से सूचना प्राप्त करने का हमें

0: अधिकार नहीं है, और सूचना प्राप्त करने का तरीका क्या है?
1: जी, एक आवेदन देकर, वो ऑफलाइन मोड भी हो सकता है, ऑनलाइन तरीके से भी एक आवेदन देकर कोई भी व्यक्ति ये मांग सकता है कि मुझे फलाने ऑफिस से रिलेटेड जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये आवेदन में उसे ये स्पष्ट कहना होगा कि उसे जानकारी किस विषय में चाहिए। जैसे अगर उसे ये जानकारी चाहिए कि फलाने ऑफिस में अगर उसे लगता है कि कुछ करप्शन हुआ है, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो ये नहीं कह सकता अपने आवेदन में कि वहाँ मुझे लगता है भ्रष्टाचार हुआ है तो वो कैसे हुआ है। उसे ये कहना होगा कि उस ऑफिस में इस काम के ऊपर कितना खर्च हुआ है, इसकी जानकारी मुझे दी जाए। और अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब लागू हो गया है, तो इसके बाद जो पब्लिक ऑफिस हैं, पब्लिक ऑथोरिटीज हैं, उसके ऊपर भी ये नियम लागू किया गया है कि वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। वो अपने काम को लेकर, अपने कार्यों को संपन्न करने के बाद उसकी एक रिकॉर्ड रखे। वो रिकॉर्ड जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, और कोई भी व्यक्ति जो उसकी जानकारी चाहिए, जिस व्यक्ति विशेष को भी उसकी जानकारी चाहिए, वो एक आवेदन के माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, दोनों के माध्यम से वो उसकी जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, जिनकी जानकारी किसी को नहीं मिल सकती। जैसे कोई जानकारी अगर हमारे देश के सुरक्षा और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, उन सब की जानकारी नहीं मिल सकती। साथ ही साथ वैसी जानकारी जो कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित है और उनका संबंध पब्लिक इंटरेस्ट से नहीं है, वैसी जानकारी नहीं मिल सकती। वैसी जानकारी जिससे हमारी देश की सुरक्षा को खतरा है, वैसी जानकारी भी नहीं मिल सकती। और साथ ही साथ अगर हम आम भाषा में समझना चाहें, तो हम समझ सकते हैं कि वैसी कोई भी जानकारी जो किसी न किसी तरीके से, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट, जनमानस का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वैसी जानकारी प्राप्त करने का हक हमारे देश को के हर एक नागरिक को है। लेकिन इसके अलावा जो जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे से संबंध नहीं रखती, वैसी जानकारी आम तौर पे नहीं मिल सकती।
0: जी, वैसी जानकारी जिससे ऐसा लगता है कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता पर एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है, या राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता उससे प्रभावित हो सकती है, तो ऐसी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी।
1: जी,
0: जानकारी प्राप्त करने का तरीका क्या है राहुल जी?
1: जानकारी प्राप्त करने का तरीका ये हुआ कि एक आवेदन के माध्यम से जो है, आप सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एक आवेदन दे सकते हैं, या स्टेट पब्लिक ऑफिसर को आप एक आवेदन दे सकते हैं, जिसमें समान रूप से जो शुल्क है वो 10 रुपये की शुल्क के रूप में लिया जाता है, जिसके बाद आप आवेदन में ही वो फीस देते हुए आवेदन लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको वो जानकारी उपलब्ध हो जाएगा। और ये जानकारी जो है, जो भी कंसर्न ऑफिसर है, उनके जिम्मेदारी बनती है कि वो 30 दिनों के भीतर भीतर वो जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं।
0: यदि उस 30 दिन के अंदर उसे जानकारी दी जाती है और वो उस जानकारी से संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर वो कहाँ अपने आवेदन को अग्रसरित करे?
1: जी, इस पे जो है अपील की सुविधा भी दी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अपील की सुविधा है। अगर वो व्यक्ति जो जानकारी उसे, उसके आवेदन के बाद उसे जो जानकारी मिली है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है, तो वो फिर अपील कर सकता है जो सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर है उससे। वरिष्ठ जो भी कोई अधिकारी हैं, इनका नाम या पदनाम स्पष्ट नहीं किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, लेकिन जो भी वरिष्ठ अधिकारी सरकार के द्वारा अपॉइंट होते हैं, उन्हें वो अपील कर सकता है, और फिर वो जानकारी उसे उपलब्ध करवाना होगा उस वरिष्ठ अधिकारी को अपील के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त अगर 30 दिनों के भीतर भीतर उसे जानकारी नहीं मिलती, तो पेनल्टी की भी इसमें बात की गई है, जहां अगर 30 दिन की अवधि समाप्त हो गई है और उसे जानकारी नहीं मिली है, तो हर एक दिन 250 रुपये पर दिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, और साथ ही साथ इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपये

0: ये राइट टू इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट रूप में था, पहले से ही था, और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर विभिन्न जजमेंट के माध्यम से ये कहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार हमारे देश के नागरिक को मिलता है। एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हमारे देश के जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उन्हीं को ये अधिकार मिलता है कि वो उन्हें वो जानकारी हासिल करने का हक मिलता है। अगर वो आवेदन देते हैं तो उन्हें जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है उनकी एक प्रतिलिपि या फोटोकॉपी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके तहत वो जानकारी उन्हें मिल जाएगी।
1: उसके लिए शुल्क अदा करना होगा?
0: जी हाँ, उसके लिए उन्हें जो भी निर्धारित शुल्क है वो अदा करना होगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अगर हम इसे एक नज़र में या कम शब्दों में समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ एक गणतंत्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ आज के समय में हर कोई भ्रष्टाचार की समस्याओं को देख रहा है, उससे परेशान भी है। इस परेशानी से उभरने का सबसे अच्छा माध्यम मेरे नज़र में अगर कुछ है तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ही है। जहाँ पे अगर हमें लगता है कि कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी ऑफिस में, सरकारी विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो हमें ये जानकारी प्राप्त करने का हक है कि वो फराना काम में, कार्य में कितना पैसा खर्च हुआ। और अगर इसकी जानकारी हमें मिल जाती है और वो खर्चा जो है सही नहीं लगता है हमें, तो फिर हम PIL भी फाइल कर सकते हैं, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हम कोर्ट को कह सकते हैं कि फराने काम में देखिए मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो जानकारी मिली है उसके तहत इसमें जितना पैसा खर्च होना चाहिए था उससे ज़्यादा खर्च हुआ, या काम जिस अनुरूप होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, तो फिर PIL फाइल करके उस विभाग के ऊपर कोर्ट केस करके हम उस विभाग के गलत अधिकारी या जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनको दंडित कर सकते हैं, और फिर दंडित करने के बाद एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण संभव है।
1: इस अधिनियम के अंतर्गत आपने सही कहा कि एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। और कोई भी सूचना सरकारी कार्यालय से आप मात्र 10 रुपये का पोस्टल आर्डर के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप उस जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो फिर आगे भी आप अपील बात कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राहुल सिन्हा जी, एडवोकेट एंड मेडिएटर झालसा, बड़ी अच्छी आपने बात की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अगले सप्ताह एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कानून की बात। भेंट वार्ता थी सूचना का अधिकार अधिनियम। भेंट वार्ताकार थे श्री राहुल सिन्हा। भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेंसी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
5: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ दो क्वेश्चन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
4: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
3: Union Home and Corporation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program.
5: Developed by Sahakar Taxi Cooperative Limited with the support of 8 major cooperative institutions including Amul, IFFCO and NABARD, Bharat Taxi operates on a zero commission model to pass the maximum financial benefits directly to drivers. Since its soft launch in December last year, this platform has registered over 1.5 lakh drivers and 7 lakh customers in Gujarat alone, completing more than 3,500 rides daily. The service will initially be launched across 14 major cities in Gujarat, including Ahmedabad, Surat and Vadodara, with a target to cover the entire state within a month. Aparna Khun, Akashwani News, Gandhinagar.
3: Secretary Department of Atomic Energy Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle utilizing nuclear process heat generated from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research, IGCAR, Kalpakkam. Addressing the gathering, Dr. Mohanty said that the integration of nuclear energy with emerging clean energy technologies such as hydrogen production represents a strategic pathway towards a sustainable energy future. We have a report.
6: Dr. Mohanty said that nuclear power with its unique ability to provide reliable carbon-free electricity is ideally suited to support large-scale hydrogen production while contributing to India's energy security, decarbonization goals and long-term sustainable development objectives. The facility has been established as a technology demonstrator to validate the production of hydrogen using nuclear energy through the thermochemical process developed indigenously by Bhabha Atomic

0: Have a nice day.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: आदाब।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्राकृतिक खेती कर धरती बचाने की अपील की। कल दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज एक दिवसीय झारखंड दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यातायात में बदलाव। राज्य के कई जिलों में आज आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, 3 जुलाई तक बारिश की संभावना। और बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन, देश भर के ओलंपियन और शीर्ष तीरंदाज होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान भाई बहनों से जमीन के एक छोटे हिस्से में भी प्राकृतिक खेती करने की अपील की है। उत्तराखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने खेत बचाओ अभियान, धरती बचाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती अपनी धरती को भी बचाएगी।
2: सारे मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि इस बार बारिश कम होगी, ऐसी फसल जिसमें पानी ज्यादा लगता है कृपया करके इस बार उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी फसल लगाएं जिसमें कम पानी लगे और कम बारिश में भी वो सरसब्ज हो सके, वह फसल हम बचा सकें।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए शामिल होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले आज एक दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री अठावले रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर को आयोजित एक विशेष सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में मीडिया से संवाद करेंगे। आगामी 30 जून को साहिबगंज के ऐतिहासिक भोगना डीह में हुल दिवस का आयोजन पारंपरिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। वीर शहीद सिधो कान्हो के वंशज और सिधो कान्हो हुल फाउंडेशन के अध्यक्ष मंडल मुर्मू ने इसकी जानकारी दी।

0: उन दिवस मनाने के संदर्भ में। अतुमन जी वैसी की बिना तले हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज हमने एसडीओ साहब को चिट्ठी दिया है।
1: झारखंड भाजपा ने साहिबगंज के भोगनाडीह में 30 जून को हुल दिवस के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन किया है। प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि चांद भैरव और फूलो झानो सहित जनजातीय वीरों के बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि हुल दिवस पर महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान का व्यापक स्तर पर स्मरण किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड
2: हमारे
1: पूरी तरह अटूट है और वर्ष 2029 तक जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। देवघर में कल बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के विभिन्न राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
2: हमारे हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के जो बाकी कांग्रेस है, राजद है, माले, इन्होंने लिखकर 2029 तक के लिए माननीय राज्यपाल जी के पास में सपा हस्ताक्षर है और सदन के नेता हेमंत जी हैं, उनको सदन का संपूर्ण विश्वास प्राप्त है और केवल हमारे पक्ष के नहीं, जो हमारे विपक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं वो भी सरकार की नीतियों के कारण हमारे साथ हैं।
1: रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और राज्य भर में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा और हजारीबाग सहित संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रांची जिला प्रशासन ने अखाड़ाधारियों से निर्धारित मार्ग और समय का पालन करने तथा जुलूस में असामाजिक तत्वों और खतरनाक प्रदर्शन को रोकने की अपील की है। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि शहर में मुहर्रम जुलूस की सुरक्षा के लिए 6,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे और पूरे जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों तथा कंट्रोल रूम से की जाएगी। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बिजली का करंट लगने से 9 लोग झुलस गए हैं। यह हादसा भीखना पंचायत के कुसुमडीह गांव में हुआ। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से जुलूस के दौरान बिजली के तारों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग समेत 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश के बीच कहीं कहीं वज्रपात और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 3 जुलाई तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने सेकेंड NTPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी बोकारो जिला तीरंदाजी संघ को सौंपी है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 18 से 27 अगस्त तक मोहन कुमार मंगलम खेल स्टेडियम बोकारो में आयोजित होगी। बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष डॉ. लंबोदर महतो ने बताया कि इस आयोजन में देश भर से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय तीरंदाज, ओलंपियन, राष्ट्रीय कोष तथा तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।
3: जिला तीरंदाजी संघ निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट को बहुत ही भव्य, शानदार और ऐतिहासिक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये इतना महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है जिसमें पूरे देश भर के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। आयोजन 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक इसका आयोजन तुम्हार मंगलम स्टेडियम बोकारो में होना।
1: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और उस पर

कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड में वज्रपात ने ली 6 की जान, दर्जन भर झुलसे। प्रभात खबर ने लिखा है, 177 करोड़ की लागत से बनेगी 10 लेन की स्मार्ट सड़क। दैनिक भास्कर ने लिखा है, माध्यमिक आचार्य के 7 विषयों का रिजल्ट जारी, 315 सफल। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली से रांची आ रहे विमान में आई तकनीकी खराबी, प्लेन के भीतर 3 घंटे फंसे रहे यात्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से प्राकृतिक खेती कर धरती बचाने की अपील की। कल दिल्ली में आयोजित होगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज एक दिवसीय झारखंड दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रांची सहित पूरे झारखंड में मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, यातायात में बदलाव। राज्य के कई जिलों में आज आंधी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट, 3 जुलाई तक बारिश की संभावना। और बोकारो में 18 अगस्त से राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन, देश भर में ओलंपियन और शीर्ष तीरंदाज होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहाँ जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं श्वेता के साथ। कुछ ही पलों में सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग, कुर्माली भाषा में शिव नारायण महतो और साथियों के स्वर में। इसके लिए कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग, कुरमाले भाषा में कलाकार थे शिव नारायण और साथी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही क्षणों में।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सभी श्रोताओं को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। पहला गीत है फिल्म चिराग से, जिसे गाया है मदन मोहन ने। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत है मदन मोहन का।

अगला गीत है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम रसरंजन में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं अगली पेशकश फिल्म आंधी से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। रचना है गुलजार की, संगीत से सजाया है RD बर्मन ने।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रांची केंद्र को, आप सुन रहे हैं रसरंजन। अगला गीत है फिल्म कलाकार से किशोर कुमार के स्वर में। गीत को लिखा है इंदिवर।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म हम है राही प्यार के से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। रचना है समीर की, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जसलीन रॉय के स्वर में।
1: To ruin a beautiful future.

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: इस प्यारे से गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम रसरंजन। इजाजत दीजिए, नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, आइए सुनते हैं सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद प्रस्तुत हैं दो गते। विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध है। कलाकार हैं चीर सत्य ठाकुर, तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप चटर्जी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद प्रस्तुत थी दो गति विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध थी। कलाकार थे चीर सत्य ठाकुर, तबले पर संगत कर रहे थे संदीप चटर्जी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी चर्चा, अपने अच्छे पल को पहचाने और खुश रहे। साथ ही आप सुनेंगे बिगड़ती बात को बनाना भी एक कला है, भेंटवार्ता है पारिवारिक विघटन और समाधान। भेंटवार्ताकार है निर्मल कुमार भारती, भेंट करता है संजीव कुमार लाल, प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

नमस्कार, कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुनीता। श्रोताओं, हमारी कोशिश होती है इस कार्यक्रम में अपने समाज, अपने आसपास, अपने लोगों के साथ जो कुछ भी बातें होती है उस पे हम आपसे बातें करें, कुछ चर्चा करें, कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में प्रायः हर कोई हमेशा यही सोचता है कि हम कैसे कुछ ऐसा करें जिससे हम सब खुश रहें। खुशियाँ पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत धन दौलत हो, बहुत पैसे हो या फिर बहुत ऐशो आराम की जिंदगी हो, तभी आप खुश रहेंगे। खुशी का राज बड़ी चीजों में नहीं बल्कि

0: अपने छोटे छोटे पलों को पहचानने जिसमें हमारा वर्तमान जीवन छिपा है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे पलों को पहचानते हैं तो यकीन मानिए हम बहुत खुश रह सकते हैं। सच्ची संतुष्टि और खुशी पाने के लिए आप बहुत सारी बातें हैं जिसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। पल अच्छे बुरे हमेशा आते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छे पल जो हमारे लिए हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, हम उनमें अपना जीवन ऐसे जिए कि आगे आने वाला अगर कोई ऐसा पल है जहां हमें परेशानी हो सकती है तो उन अच्छे पलों के सहारे हम उस कठिन परिस्थितियों को पार कर सके। छोटे छोटे काम है जो हम कर सकते हैं। हर दिन रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातों या पलों को याद करें जो आपके साथ हुए हैं। पूरे दिन में अगर कुछ अच्छी चीजें आपने की है या आपके साथ किसी ने की है तो सोने के पहले उन्हें थैंक्स जरूर बोले, उनके प्रति कृतज्ञता जरूर निभाए और साथ ही साथ ईश्वर को भी याद करें कि हमें उन्होंने ये पल दिया है जो हमारे लिए बेहद खुशी का रहा है। साथ ही खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दे। आपकी खुशियां, आपका जीवन बिल्कुल आपका अपना है और आपका सफर बिल्कुल अनोखा है, ये बात याद रखें। किसी को देखकर उसके पीछे ना भागे बल्कि अपने जो गुण है उन्हें पहचाने और उन गुणों को निखार कर खुशियों के साथ अपने जीवन के सफर को आगे बढ़ाएं। अक्सर देखा गया है कि हम आज को छोड़कर भविष्य की चिंता करते हैं, यानी फ्यूचर प्लानिंग में ही रहते हैं कि आने वाले समय में हम ये कर लेंगे, हमारे साथ ये हो तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में फ्यूचर को लेकर चलती रहती हैं। इससे तो अच्छा है कि भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझने के बजाय जो आज आपके पास मोमेंट है, यानी जो क्षण है, पल है, उससे प्यार करना सीखे, उन पलों में जीना सीखिए, उन पल में आपके लिए क्या अच्छा है ये जानने की कोशिश करिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए। देखिए खुशियां आपके चारों ओर बिखरी नजर आएंगी और आप खुश रहेंगे। हम में से हर किसी ने अनुभव किया है कि जब हम पॉजिटिविटी अनुभव करते हैं तो हम बेहद खुश रहते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो नेगेटिविटी को अपने आसपास ना आने दें, नकारात्मकता के जो भी भाव है उन्हें हम अपने मन से निकाल दें और जो पॉजिटिविटी है यानी सकारात्मकता है उसे अनुभव करें और उसे खुलकर अपने जीवन में स्वीकार करें, तभी हम शांत मन से जीवन को जी पाएंगे और खुशियां हमारे लिए होंगी। साथ ही साथ ऐसी बातें जो हमारे दिल को छूती हैं, दिल की भावनाओं में गहराई तक उतरती हैं, ऐसा कोई गहन विचार अनुभव भी हो सकता है जो हमारे मन को सुकून और प्रेरणा देता है, जिससे मन की शांति या सीख मिलती है। हमेशा यह विश्वास रखें कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ईगो के कारण बहुमूल्य रिश्ते भी खो देते हैं, तो ऐसी चीजों से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे पल हैं उनमें हम जिए और उनसे प्रेरणा लें। साथ ही कोशिश यह करें कि हमारी ये कोशिश किसी और के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। किसी को सांत्वना देना, कोई गहरा सत्य समझाना भी दिल को छू लेने वाली बातें हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे विचार हमें अंदर से झकझोर देते हैं, हम कभी उदासी या तन्हाई में घिर जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन बातों से खुद को बाहर निकालें और कोशिश ये करें कि हम खुशियों के साथ अच्छे से अपना जीवन जी पाए। अच्छे बुरे पल हमेशा आते हैं जीवन में, तो उन पलों को संजो कर, संभाल कर, अपना कर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में खुशियां बिखेरे। जीवन के बेहतरीन पल वो होते हैं जब हमारा मन शांत और सकारात्मकता होता है। खुश रहने और अच्छे पलों को पहचानने के लिए वर्तमान में जीना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढें। खुद की तुलना किसी से ना करें। अपने आप से जुड़े, देखें वर्तमान में कौन सी खुशी आप महसूस कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों में आप अपनी बहुत बड़ी खुशियां ढूंढ सकते हैं। सुबह की धूप, किसी की मुस्कान, चाय की चुस्की जैसे छोटे छोटे साधारण पल है ना, उसमें भी हमें खुशियां मिलती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अतीत के पछतावे को भूलकर, भविष्य की चिंता को छोड़कर आज में जिए और खुश रहें। लोगों की तारीफ करें, दयालुता दिखाए, और सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भर ले। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हमें पीछे ढकेल सकती है। ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलकर खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। जो काम आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें और खुशियों के साथ अच्छे पल में जिए। कोशिश करें आपके जीवन का हर पल खुशियों भरा हो। श्रोताओं, ये तो सही में बहुत जरूरी है कि हम अपने अच्छे पलों को पहचान कर उसमें खुश रहने की कोशिश करें। साथ ही साथ जरूरी है कि परिवार में भी खुशियां बिखेरे रहे। परिवार में खुशियां इसलिए भी जरूरी है कि आज के वर्तमान दौर में अक्सर हमने ये देखा है कि परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले जहां संयुक्त परिवार होता था, आज उसने एकल परिवार का रूप ले लिया है। दिन प्रतिदिन परिवार में विघटन होता जा रहा है, जो कि आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों होता है पारिवारिक विघटन और इसके समाधान क्या है, इस विषय पर भी सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपर सचिव झालसा के निर्मल कुमार भारती जी को, जिनसे हम बातें करेंगे पारिवारिक विघटन और समाधान। उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है और इस परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसमें माता पिता, दादा दादी और बच्चे, चाचा चाची सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आजकल की वर्तमान स्थिति में हम एकल परिवार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं, एकल परिवार में आ गए हैं जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा लगभग खत्म हो चुकी है और इस न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारी परेशानियां भी जन्म लेने लग गई है। जब परिवार का निर्माण होता है तो एक सभी लोग उसमें जुटते हैं और बड़ा खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन यही परिवार जब विघटन के कगार पर आ जाता है तो इससे सबकी क्षति होती है। परिवार बनता है, शादी ब्याह होते हैं और कुछ दिनों के बाद बहुत सारी संकटें आने लग जाती हैं और फिर आप जानते हैं आजकल तलाक का दौर चल पड़ा है। लोग अर्जी दाखिल कर जाते हैं और परिवार अलग हो जाता है और इसमें परिवार संवेदना का शिकार हो जाता है, अवसाद से घिर जाता है और फिर हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आखिर ये पारिवारिक विघटन क्यों हो रहा है, क्या कारण है और इसका समाधान हम कैसे निकालें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री निर्मल कुमार भारती जी। भारती जी स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: भारती जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार में तनाव, विघटन, अवसाद बहुत देखने को मिल रहा है, क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं?
2: देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर अग्रसर हो चुके हैं। भारत में जो कि संयुक्त परिवार के लिए जानी जाती थी हमारी पारिवारिक व्यवस्था, आज एकल परिवार के रूप में हम लोग आने लगे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि रोजी रोजगार के तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह भटकने लगे हैं। आज न सिर्फ हमारा देश, हमारा राज्य, बल्कि समूची दुनिया ही सिकुड़ चुकी है और पूरी दुनिया इतनी नज़दीक हो गई है कि यहाँ से सात समंदर पार भी अगर हमें जाना है तो 24 घंटे 26 घंटे में हम पहुँच जा रहे हैं। इसी वजह से लोग जो है अपने जन्मभूमि से, अपने स्थान से दूर होने लगे, अपने सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों को दरकिनार करके रोजी कमाने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और यह मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कारण है पारिवारिक विघटन का। दूसरा कारण क्या है कि अगर आप कोर्ट कचहरी में देखें और ये देखें तो सबसे मुख्य कारण है कि जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो उनमें मानवीय संवेदना के जगह पर अपना अधिकार पाने की इच्छा शक्ति जो है ये प्रबल हो जाती है। यहाँ लोग भूल जाते हैं कि समाज के प्रति और संयुक्त परिवार के प्रति उसके क्या कर्तव्य थे, बल्कि लालच में पड़कर वह संपत्ति को अधिक से अधिक भाग अपने पास रखने के लिए अग्रसर होने लगते हैं और इस तरह से कानूनी समस्याएं जन्म होती है। जो परिवार की मिलजुल कर रहता था वहां पर हम संपत्ति अधिक से अधिक अर्जित करने के चक्कर में पारिवारिक मूल्य त्यागते हैं और पारिवारिक विघटन होता है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि तलाक के मामले भी बढ़ने लगे हैं, इसके पीछे एकल परिवार ही है, क्योंकि जब लोग एकल परिवार में रहते हैं तो वहां पति पत्नी और बच्चे ही हैं। कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी के जो मेंटल स्टेटस होता है वह अंतर लिए हुए होता है, कई बार उम्र में फासला होता है, कई बार पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो एक दूसरे के संवेदनाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं और परिवार जो होता था, हमारा संयुक्त परिवार जो होता था वह सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता था। पति अगर अवसाद में है, चिंता में है, परेशानी में है तो परिवार के दूसरे लोग उसे कम कंट्रोल करते थे ताकि पति पत्नी में, बच्चों में आपस में सामंजस्य बना रहे। पत्नी अगर टेंशन में रहती थी तो परिवार के दूसरे लोग उसे सहयोग करते थे, अब दूसरे लोग सहयोग करने के लिए नहीं है, इसका

0: नतीजा ये होता है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और इससे तलाक और दूसरी कानूनी समस्याएं आती है। बच्चों में संस्कार घटते चले जाते हैं। हम अपने दादा दादी चाचा चाची के गोद में पले बढ़े लोग हैं और आज जो है हमारे बच्चे उस सब चीज से महरूम होते जा रहे हैं। तो उसका नतीजा यह होता है कि बच्चे में जो संस्कार आने चाहिए वह नहीं आ पाता है और पारिवारिक विघटन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। यही सब मुख्य कारण है मेरे हिसाब से।
1: हम समय की रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक सामंजस्य स्थापित करने में हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। दूसरे को सम्मान देना, उसका ख्याल रखना, उसकी भावनाओं को कद करना, ये जहां हम भूल जाएंगे, इससे यदि हम किनारा कर लेंगे तो फिर समस्याएं धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है और फिर वो विघटन या टकराव का रूप धारण कर लेता है। फिर जब समस्याएं विकराल होने लगती है, जटिलताएं आने लगती है, तो फिर कानूनी समस्या आ जाती है। लोग कानून का सहारा लेते हैं और सिर्फ कानून के सहारे से ही हम इसका बचाव नहीं कर सकते। हमें अपनी मानवीय संवेदनाओं को वापस लाना होगा और एक सोच और समझ के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। निर्मल जी, समस्याएं वहां उत्पन्न होती है, कई जगह समस्याएं वहां उत्पन्न होती है जब इस रिश्ते में तीसरा व्यक्ति कूद पड़ता है। वो कहीं ना कहीं उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अपनी बात वहां रखने की कोशिश करता है, परिवार का तीसरा व्यक्ति आ जाता है और मामले में आग लगाने की कोशिश करने लग जाता है। ये आजकल काफी देखने को मिल जा रहा है।
0: देखिए, खास करके पारिवारिक मामलों में, जहां पर कि पति पत्नी के बीच में जब पति पत्नी एकल परिवार के रूप में रह रहे हों और वहां पर इंटरफेरेंस पत्नी के मायके वालों का या पति के परिवार वालों का होता है, जो लोग कि वहां नहीं रह रहे हैं और चूंकि वे अपनी बहू के साथ नहीं रहे हैं, वे अपने दामाद के साथ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उनकी भावनाओं को समझे बिना अपनी बेटी को या अपने बेटे को, अपने भाई को या अपनी बहन को जब अपने हिसाब से उनके अंदर विचारों का पुट करने लगते हैं, तो वैसे में जो है पति पत्नी के बीच आपस का रिश्ता खराब होता है। लेकिन जब यही हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो यही लोग वे होते थे जो कि परिवार को बचाने का काम करते थे। एक्चुअली वे झगड़ा लगाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि बस अपने विचारों को अगले के विचारों को जाने बिना डालते हैं, इसीलिए पारिवारिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है।
1: जी, जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, समाज में भी गलत संदेश जाता है। तो क्या क्या इसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार पर देखने को मिल जाता है?
0: जैसा कि आपने कहा कि बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है, देखिए जब पति पत्नी दोनों कामकाजी हों और घर में शांति का माहौल नहीं रहे, तो ऐसे में बच्चे अपने पारिवारिक मूल्यों से दूर होते चले जाते हैं और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो बच्चे होते हैं वे गलत संगत में पड़ जाते हैं। माता पिता दोनों घर में नहीं है और जब घर में है तो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे जो है कई बार अपने उम्र से ज्यादा उम्र के बच्चों के साथ, ज्यादा उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं और उनका बचपन समाप्त हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि इसके चलते हुए अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं, उनमें असंवेदनशीलता की भावना आ जाती है, वे बचपन से अवसादग्रस्त रहने लगते हैं, डर की भावना आ जाती है और कुल मिलाकर इस तरह से राष्ट्र को एक स्वस्थ मनुष्य जो कि आज का बच्चा बड़ा होकर बनेगा वह नहीं मिल पाता है।
1: लोग अवसादित हो जाते हैं और परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है, परिवार का विकास वहीं का वहीं रह जाता है। इस समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए? निर्मल जी, कैसे एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, कैसे एक दूसरे के भावनाओं को कद्र किया जाए और कैसे बच्चों में एक संस्कार के बीज हम डालें?
0: देखिए, हम उस देश के निवासी हैं जहां पर कि हमारे पौराणिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि भगवान राम अपनी पत्नी का हरण को से निकालने के लिए समुद्र पार लंका चले गए थे। आज हम अपनी पत्नी को समझ नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें थोड़ा पीछे मुड़ना होगा और जैसा कि हम कहे, आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप यह जाने कि जब आपकी रफ्तार बहुत तेज होगी तो आपके जूते घिसेंगे और यह जूता घिसना कहने का मतलब यह है कि आपके पारिवारिक मूल्यों का ह्रास होगा। तो हम अपनी विकास की रफ्तार में इतनी तेजी से ना दौड़ें कि हम अपने पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ दें, बल्कि अपने पारिवारिक मूल्यों के साथ हम अपना विकास करते चलें और जो हमारा संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उसे यथासंभव लेते हुए हम आगे बढ़ें, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके।
1: जी, हमारे कहावत भी है वसुधैव कुटुंबकम, यदि इस अवधारणा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे संस्कारों के साथ यदि हम एक जीवन यापन करते हैं और थोड़ा सा हम यदि विराम देते हैं अपने

0: रफ्तार भरी जिंदगी में, तो फिर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी।
1: विराम तो बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन है क्या, हम अंधे दौड़ में इस तरह से पागल ना हो जाएं कि हम अपने पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ते चले जाएं। और दुनिया को तो हम कुटुंब बाद में बनाएं, पहले अपने कुटुंब को ही अपने साथ लेकर विकास के लिए चले। अगर मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे, हमारा इनकम हो गया है और अब बगल में हमारा भाई इतना नहीं कमा पा रहा है कि उसके घर का चूल्हा जल रहा है, तो क्या ये विकास है मेरे लिए? यह मेरे लिए विकास नहीं है, बल्कि हम दोनों भाई अगर एक साथ विकास करते चले जाएं तो वही विकास है। तो जब हम भाई के साथ विकास करेंगे, जब अपने बहन के साथ विकास करेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ विकास करेंगे, तभी हमारा विकास जो है अस्थाई और सतत माना जाएगा।
0: क्या कहेंगे आज के लोगों को, खासकर आज की युवा पीढ़ी को, आप क्या कहेंगे कि आप इस तरह की वातावरण यदि आपको दिखता है तो आपको थोड़ी सी अपने आप में विचार उत्पन्न करना पड़ेगा, आपको एक नए विचारों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, मन में संयम रखना पड़ेगा और हर व्यक्ति को समान रूप से आदर देना होगा।
1: मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि अगर पारिवारिक मूल्यों को बचाना है तो हमें और हमारे युवा पीढ़ी को सबसे पहले है कि अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, सहनशील बनना होगा। जब तक हम सहनशील नहीं बनेंगे तब तक हम पारिवारिक मूल्यों को नहीं बचा सकेंगे और हमारा समाज जो है बिखरता चला जाएगा।
0: पहले बहुत सारी सीख हमें घरों में मिल जाया करती थी, नानी दादी की कहानियाँ होती थी और उस कहानी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते थे, वो अब लुप्त हो गई है।
1: तो यह तो तभी हो सकेगा जब हम अपने नानी दादी के साथ रहें।
0: तो सभी के साथ अच्छे पल गुजारने की कोशिश कीजिए, दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दादा दादी, मामा मामी, अपने सभी सगे संबंधियों के साथ। हम यदि अच्छे रिश्ते रखते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और वो दिन अब नहीं देखने को मिलते हैं जब छुट्टियां होती थी तो लोग अपने दादा और नानी के यहाँ जाते थे।
1: देखिए, मैं बहुत कुछ सीखते थे। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा अगर हम अपने सोशल मीडिया से बस दूर हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारा समाज ज़्यादा स्टेबल होने की स्थिति में आ जाएगी।
0: जी,
1: तो बस थोड़ा अपने मोबाइल और इंटरनेट को थोड़ा दूर रख दीजिए, आपका समाज और परिवार जो है तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ेगा।
0: साथ बैठिए, साथ मिलिए, बातें कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक वक्त का खाना हम साथ खाएं, तो बहुत सारी गलतफहमियां खुद ब खुद ही दूर हो जाती है और फिर हम एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करते हैं। और जब स्वस्थ परिवार का हम निर्माण करते हैं तब भी हमारा देश तरक्की के राह पर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निर्मल कुमार भारती जी, अंडर सेक्रेटरी झालसा, आज इस कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: पारिवारिक विघटन और समाधान, इस विषय पर अभी आप संजीव कुमार लाल से अपर सचिव झालसा के श्री निर्मल कुमार भारती जी की बातचीत सुन रहे थे। श्रोताओं, कल्याणी कार्यक्रम में हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि यह कार्यक्रम आपके दिल तक पहुंचे और आप इसके जरिए अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। और फिलहाल इतनी बातें हो गई हैं तो एक खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिर आगे की बातें आपसे करेंगे।

श्रोताओं, गीत के बाद थोड़ी सी बातें हम आपसे और करना चाहेंगे। अक्सर आप और हम, प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी किसी बातों से कोई बात बिगड़ गई है, या किसी को ठेस पहुंची है, या किसी दिल को तकलीफ हुई है, या परिवार में कोई मनमुटाव आया है, तो कोशिश यह करनी चाहिए कि अगर हमारी बात से कुछ बिगड़ गया है तो उसे हम बना लें, सुधार लें। यह भी एक कला है और इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना करना है कि हमें धैर्य, समझदारी और सही दृष्टिकोण को अपनाना होगा। बिगड़े हुए रिश्तों या परिस्थितियों को संभालने के लिए कूटनीति और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, न कि गुस्से और जिद से। बिगड़ती बात को बनाने के लिए कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर जरूर करना चाहेंगे। सबसे जरूरी यह है कि अगर किसी के साथ हमारी बात बिगड़ गई है, या घर परिवार समाज में भी कहीं कोई बात बिगड़ रही है, तो सामने बैठकर बातें करें। सामने वाले की बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने, ताकि मूल समस्या समझ में आ सके। कहते हैं ना कि अगर संयम से किसी भी बात को या किसी भी रिश्ते को समय दिया जाए या बातचीत किया जाए, तो कितने भी बिगड़े रिश्ते क्यों ना हो, हम सुधार सकते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से बात बिगड़ गई है, तो जीवन में सकारात्मकता लाए। समस्या पर रोने धोने के बजाय, समस्या पर दुख मनाने के बजाय, कोशिश यह करनी चाहिए कि उस समस्या का समाधान हम किस तरह करें। अगर आप किसी खास परिस्थिति में बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है आप संवाद स्थापित करने। बातचीत करना पहला कदम होता है। संवाद स्थापित करने से ये होगा कि हमारे जो रिश्ते हैं, बिगड़ती हुई बात है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है ना कि समझदारी से अगर किसी बात को सुलझा लिया जाए, तो वो समस्या बहुत आसान होती है।

होती है और बात छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाती है, तो इसके लिए बहुत कुछ ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात जो हमारे जीवन में समस्या ला रही है या किसी को हमारी बात से ठेस पहुंची है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे जाकर सॉरी बोले, माफी मांग ले। अगर हमारी गलती है तो माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, माफी मांग ले। साथ ही आप ये भी बताएं कि किन परिस्थितियों में आपने ये बातें उनसे कही है। प्रायः आज के दौर में जब लोग बिल्कुल भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कभी कभी बात बिगड़ जाती है। तो बोलने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल से परिवार दोस्त रिश्ते बनते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी किसी भी बात से किसी को ठेस ना पहुंचे, हमारे रिश्ते ना बिगड़े, हमारी बात ना बिगड़े। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर दोनों ही गलत हैं तो आपस में दोनों एक के साथ बैठकर बातें कर ले, समस्या बिल्कुल ही आसानी से निपट जाएगी। कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी, कोई कहीं तकलीफ नहीं होगी और जो बिगड़ती हुई बात है ना, वो आसानी से बन जाएगी। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सोचा है, आप उस मुकाम पर जरूर पहुंचे। कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल्याणी के इस अंक से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रही संजीव कुमार लाल की।

अभी आप सुन रहे थे कल्याणी, चर्चा थी अपने अच्छे पल को पहचाने और खुश रहें तथा बिगड़ती बात को बनाना भी एक कला है। भेंटवार्ता थी पारिवारिक विघटन और समाधान। भेंटवार्ताकार थे निर्मल कुमार भारती, भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल, वाचन एवं सहयोग था सुनीता कुमारी का, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जोहार रांची।

0: मीडिया वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। जोहार रांची के एक और नए अंक के साथ मैं ऋतुश्री, जोहार साथियों, और श्वेता आपको भी हमारा जोहार नमस्कार।
1: जोहार नमस्कार।

0: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक सुविचार। आज के युग में मनुष्य ने तकनीकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर ली है, इस कारण उसे अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त की है। हमारे पास पहले से बेहतर मोबाइल है, तीव्र गति के साधन है और सुख सुविधाओं के तमाम संसाधन उपलब्ध है, जिनकी पहले हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बुनियादी प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और वह है कि क्या इतनी प्रगति के बाद भी मनुष्य के भीतर की अशांति कम हुई है?
1: ये तो बिल्कुल सही प्रश्न है। क्या हम अपने भीतर से शांत महसूस करते हैं? सच्चाई तो ये है कि आज हम बाहर से जितने चमक दमक वाले दिखते हैं ना, भीतर

0: से उतने ही उलझे हुए हैं। हम बाहर से जितना शांत दिख रहे हैं, जितना प्रसन्न दिख रहे हैं, भीतर से उतने ही अशांत और उतने ही अप्रसन्न खिन्न हैं। तो इसका एक कारण है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है, इसलिए हमें मन को बदलकर देखना चाहिए। और जब हम अपने मन को बदल लेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, तो फिर हम हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, है ना?
1: रहेंगे।

0: जोहर रांची में एक बार फिर स्वागत है आप सबों का दोस्तों। और श्वेता, अब हम बातें करते हैं मौसम की। हाँ, तो ये बता दें कि झारखंड समेत 16 राज्यों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड समेत देश के 16 राज्यों में अगले दो दिन शनिवार और रविवार को बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं कहीं आंधी चलने का भी पूर्वानुमान है। बिहार में 25 से 29 जून तक भारी बारिश और आंधी का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार शनिवार रविवार को झारखंड में रांची समेत 20 जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश के बीच कहीं कहीं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: और साथ ही वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और येलो अलर्ट वाले पलामू समेत 4 जिलों में यह रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मौसम बदलाव के कारण अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। देश के अन्य राज्यों की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य राज्यों में अगले 2-3 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।
0: हाँ, और ये भी बता दें कि 24 घंटों के दौरान मानसून जो है वो कमजोर रहा। रांची मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर रहा है। ये गढ़वा और पलामू के पूरे हिस्सों तक कायम नहीं हो सका है। इसके 28 जून से लेकर 3 से 4 दिनों के दौरान पूरे राज्य में कायम होने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य के कुछ जिलों में बारिश हुई। इसमें पाकुड़ में 27.8 मिलीमीटर और गिरिडीह में 18.0, देवघर में 16.0 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अन्य जगहों पर हल्की बारिश हुई और उमस बनी रही। तो अब जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश हो नहीं रही है। ये एल नीनो का इफेक्ट है और हम चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं ताकि ये जो बारिश हो और हम सब राहत महसूस करें।

0: और अब ये बता दें कि इतिहास में आज क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो 2002 में G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए।
1: 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द।
0: और 2004 में आज ही के दिन अमेरिका और यूरोपीय संघ ने जीपीएस गैलीलियो के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: 2005 में ब्रिटेन ने भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।
0: 2006 में गुएन मिन ट्रेट वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए। और 2007 में जेम्स गार्डन ब्राउन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद का पद संभाला और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने महारानी एलिजाबेथ को अपना त्यागपत्र सौंप दिया।
1: 2008 में भारत व पाकिस्तान ने ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को चालू करने के लिए आ रही रुकावटों को हल किया।
0: और ये भी बताते चलें कि 2015 में भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला लिया। और ये भी बता दें कि आज ही के दिन से हम जो एटीएम का उपयोग करते हैं ना, उसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी।

0: और अब हम ये बताते चलें कि आज किनका जन्मदिन है। 1955 में पूर्णिमा वर्मन जो भारतीय पत्रकार थी, इनका जन्म आज के दिन हुआ था।
1: 1950 में नितिन मुकेश हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध भारतीय गायक हैं।
0: और 1939 में राहुल देव बर्मन जो कि हिंदी फिल्मों के एक सुप्रसिद्ध संगीतकार थे, इनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ था।
1: 1928 में आरडी प्रधान जो पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके थे।
0: 1922 में अकिलन तमिल भाषा के साहित्यकार थे, इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था।
1: 1919 में अमला शंकर मशहूर भारतीय नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर थी।
0: और ये भी बता दें कि आज के दिन ही उड़न परी भारतीय खिलाड़ी जिन्हें हम सब पीटी उषा के नाम से जानते हैं, उनका जन्म आज ही के दिन 1964 ईस्वी में हुआ था।

0: और अब इतिहास में बातें उनकी जिन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कहा। 2008 में सैम मानेकशॉ, जो भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उनका निधन आज के दिन ही हुआ था।
1: 1839 में आज ही के दिन रणजीत सिंह, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा थे, उनका निधन भी आज के दिन ही हुआ था।
0: हाँ हाँ, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे भी हैं श्रोता, जिनकी वीरता, दूरदर्शिता और न्यायप्रियता आज भी हमें प्रेरणा देती है। ऐसा ही नाम था महाराजा रणजीत सिंह का, जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है।
1: 13 नवंबर 1780 को जन्मे महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब की विभिन्न सिख मिसलों को एकजुट कर एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी लाहौर थी और उनका शासन केवल सैन्य शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और सुशासन के लिए भी जाना जाता है।
0: महाराजा रणजीत सिंह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके लिए सभी समुदायों के लोग महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया करते थे। उन्होंने अमृतसर स्थित हरमंदर सिंह साहब को स्वर्ण मंडित कराया, जिसके कारण आज वह दुनिया भर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
1: उनकी सेना आधुनिक प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। अपने शासनकाल में उन्होंने उत्तर पश्चिम से होने वाले विदेशी आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोके रखा और पंजाब में शांति तथा समृद्धि स्थापित की।
0: 27 जून 1839
1: को महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था, लेकिन उनका साहस, नेतृत्व और न्यायप्रियता आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णित है।
0: हाँ, उनकी स्मृति को नमन करते हुए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें वीरता, देश प्रेम और आत्मसम्मान से भर देता है।

0: श्वेता, अभी हम जानकारी ले रहे थे इतिहास के बारे में, और अब हम चलते हैं घूमने।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है घूमना फिरना भी। आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम कुछ पल सुकून के भी बिताने चाहिए, क्यों रितु जी?
0: बिल्कुल, तो आज हम कहाँ चल रहे हैं? आज हम चलेंगे अमरकंटक। हाँ, ये मानसून में खिल उठता है और अभी मानसून चल रहा है, तो एक बार अमरकंटक आप ज़रूर अभी चले जाएं। ये है मांडू, पंचमढ़ी, सांची, खजुराहो के अलावा मध्य प्रदेश में घूमने की एक जगह है। यहाँ हम मानसून के दौरान ही घूमने जा सकते हैं। इसके इलाके में बारिश के मौसम में एक जादुई बदलाव से ये सारे इलाके जो है ना वो गुजरते हैं। घने जंगलों से घिरा एक ऐसा ही शहर है अमरकंटक, जो मानसून में हरे भरे स्वर्ग में बदल जाता है। घुमावदार पहाड़ियाँ, घने जंगल और गिरते झरने न सिर्फ एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं, बल्कि विश्राम और कायाकल्प के लिए एक शांत वातावरण भी पर्यटकों को देते हैं। इसलिए अगर हमें प्रकृति की सुंदरता के बीच एक बार फिर शांतिपूर्ण अनुभव की तलाश में जाना है, तो मानसून में अमरकंटक जरूर जाएं।
1: विंध्य व सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित यह जगह कपिलधारा और दूधधारा जैसे कई झरनों से समृद्ध है, जो देखने लायक है। नर्मदा उद्गम मंदिर और कुलचरी मंदिरों जैसे प्राचीन मंदिरों के माध्यम से यहाँ के इतिहास व वास्तुकला की खोज करें। विभिन्न ट्रैकिंग ट्रेल्स व प्रकृति की सैर के माध्यम से विविध वनस्पतियों और जीवों की खोज कर सकते हैं। हरियाली, धुंध भरे परिदृश्य और झरने के बीच आप यहाँ फोटोग्राफी का रोचक अनुभव भी ले सकते हैं। आजकल बच्चे मोबाइल से फोटो जरूर लेते हैं, घूमने जाते हैं तो मोबाइल से सेल्फी लेना तो बनता है, तो यहाँ आप जरूर सेल्फी ले सकते हैं। वैसे तो अक्टूबर से मार्च यहाँ की यात्रा के लिए आदर्श समय है, लेकिन मानसून की खूबसूरती का नज़ारा देखना चाहते हैं तो जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ आना ठीक रहेगा। अगर आप हवाई जहाज से अमरकंटक जाने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ के लिए सीधी कोई फ्लाइट नहीं है, बल्कि आपको पहले बिलासपुर पहुँचना होगा। वहीं अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन करौंजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पहुँचकर आप टैक्सी ले सकते हैं। अमरकंटक पहुँचने के लिए जहाँ तक बात करें यहाँ रुकने की, तो आपके

0: बजट में यहाँ हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे।
1: हाँ, तो एक बार हमें अमरकंटक जरूर घूमकर आना चाहिए।
0: और सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए।
1: हाँ, और
0: जुलाई महीने भी आ रहे हैं, इसमें तो है कि जुलाई और सितंबर के बीच जाना चाहिए।
1: हाँ, और अमरकंटक जो है ना, ये नदी जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है।

0: और श्वेता, हम घूमना फिरना तभी हमें अच्छा लगेगा जब हम
1: स्वास्थ्य सही रहेगा।
0: बिल्कुल। तो अब इस विषय पे थोड़ी चर्चा कि हमारा जीवन स्वस्थ कैसे रहे। एक जमाना था जब स्वास्थ्य के लिए किसी को कोई खास चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देते थे। आज तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी के लिए भी हमें अधिक ध्यान देना होता है। स्वस्थ जीवन के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण है,

0: अधिकतर लोग शरीर को भोजन का बोझ देने जैसा भोजन करते हैं, जबकि शरीर को संतुलित और हल्का आहार की जरूरत होती है।
1: शारीरिक श्रम स्वाभाविक होना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही खान पान पर ध्यान देने के लिए सचेत करना चाहिए। हमारा भोजन तेजज हो, अधिक से अधिक मोटे अन्न एवं उबले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। हमारे विचार व्यवहार का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने विचार व्यवहार को भी स्वच्छ रखेंगे तो भी हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल। और ये जो जीवन शैली हमारी जो है ना, वो किन कारणों से प्रभावित हो रही है, ये भी हमें जानना चाहिए। तो जीवन शैली अब जो है वो हम खुद तय नहीं करते, बल्कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और खाने पीने की चीज़ें जो है ना, ये तय करती हैं। और लोग शारीरिक गतिविधियों नौकरी के मुताबिक ढाल रहे हैं, इसकी वजह से लोग कहीं हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं तो कहीं डिप्रेशन के। महानगरों की स्थिति तो और भी दयनीय है। जिंदगी में कुछ हासिल करने की चाहत और कामयाबी की हसरत के साथ जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां ये हमें लगातार बढ़ोतरी की ओर ले जा रहे हैं।
1: शरीर आपका है तो ध्यान भी आपको रखना होगा। हम अपने भविष्य के प्रति काफी चिंतित रहते हैं, लेकिन अपने शरीर की चिंता किए बगैर संतुलित भोजन के साथ साथ शारीरिक श्रम को भी महत्व देना पड़ेगा। नियमित व्यायाम करें, टहले, अनावश्यक तनाव न लें, गरिष्ठ भोजन ग्रहण न करें, नशापान न करें। बच्चों और युवाओं का खान पान बड़ी चिंता का विषय है। नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक में प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ग्रहण करते हैं। कुछ हद तक शहरी जीवन शैली में वक्त की कमी भी लोगों को इन पर निर्भर बना दिए में छुपी है ना। उन आदतों को बदले आप स्वतः ही स्वस्थ रहने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।
0: हाँ, और हम अपने विचारों को अच्छा रखें, जीवन को एक हम संतुलित रूप से जिएं और हमेशा आशावान रहें।
1: जी बिल्कुल।

0: तो श्वेता, जिंदगी में इसी तरह की प्रेरणा बनाकर हमें आगे बढ़ना है
1: जी।
0: और अब हमारे कार्यक्रम का वक्त यहीं संपन्न होता है। तो जोहार रांची से ऋतुश्री को दें विदा। नमस्कार, जोहार।
1: इजाजत, जोहार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे आपकी पसंदीदा फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: और आइए अब सुने आपकी पसंदीदा फिल्मी नंगों का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये पहली फरमाइश भेजी है आप सबों ने सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वाली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। आप सब हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय। तुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म लव इन टोक्यो का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में हासरे जयपुरी के बोल है और संगीत है शंकर जय किशन का।

और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तीन देवियां का ये गाना। मजरूह के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत। इस गीत को सुना जाया है आप सबों ने। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरिंगी से भागवत वर्मा।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अब हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, मलविंदर विरक, चातेक विरक और मीका विरक। आप सबने सुना चाहा है फिल्म आरजू का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरजापुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: ग्राम भगबुड़वा पथरिया से नरेन नेता, कुसुम नेता, प्रोनामिका, प्रोनिका और उत्कर्ष नेता, और आप सब हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनीज महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, टपलोल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रुवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी और फर्जीवली अंसारी, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, कौरव नायक, मंजू नायक, चलेश्वर नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सबों ने सुना चाहा है मुकेश की आवाज़ में फिल्म आनंद का ये गाना, गुलजार के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत।
1: मैंने

कोंडाकाटा से नरसिंह मैली, सावन मैली, रॉकी मैली, कविता मैली, हरसमनी मैली और पार्वती मैली, यहीं से सुहानी मैली, संजय सोरेन, राजीव सोरेन, नंदिनी मैली और एनएस मैली, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सबों ने सुना चाहे फिल्म मेरा साया का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। राजा मेहंदी अली खान के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत।

इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो आपकी पसंद पर आधारित था, आपकी पसंद संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनिए बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का सप्रेम नमस्कार। स्वागत है आप सबका। बहनों, आज वीकेंड है तो हमेशा की ही तरह आप बिता सकती हैं फुर्सत के पल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जिसके लिए साधारणतः आपको वक्त नहीं मिलता। आज हम चर्चा भी आपसे इसी विषय पर करेंगे। समय सबसे बलवान होता है, ये हमने बचपन से सुना है और हमें सिखाया भी गया है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो हमें समय का एक एक पल जी भर के जीना चाहिए और साथ ही हमें समय का सम्मान भी करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये एक शाश्वत सच है। धन संपत्ति और अन्य खोई हुई वस्तुएं वापस आ सकती हैं, लेकिन वक्त वापस नहीं लौटता। और समय का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम समय का प्रबंधन करना सीखते हैं। किसी भी काम को टालते रहने से वह कभी पूरा नहीं होता। समय प्रबंधन हर किसी के जीवन में उपयोगी है, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो। हमारी बहनें समय का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से करती हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय में इतने सारे काम करने होते हैं, है ना। और समय प्रबंधन के लिए हमारी दिनचर्या सही होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सही समय पर सोना, सुबह उठना, हर एक काम को सही समय पर करना बेहद ज़रूरी है। हमें सबसे ज़रूरी काम पहले कर लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादा समय के लिए आराम करना, मनोरंजन करना या मनोरंजन को अधिक समय देना, महत्व देना, ये सभी आगे चलकर नुकसानदेह हो सकते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कुछ लोग सिर्फ काम ही करते रह जाते हैं, आराम और मनोरंजन को वे बिल्कुल महत्व नहीं देते और ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हमें समय निकालकर अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से मिलना जुलना चाहिए,

0: के साथ घूमना फिरना चाहिए या उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। तो बहनों, मैं फिर बता दूं, आज शनिवार है, वीकेंड है और आज आप भी आराम कर सकती हैं, कुछ ऐसे काम कर सकती हैं जो आपकी हॉबीज़ हैं उसके लिए भी समय निकाल सकती हैं, और आप अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, करीबी मित्रों से आप बातचीत कर सकती हैं, उनके साथ कहीं जा भी सकती हैं, यानी कि आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकती हैं। और बहनों, मैं बता दूं, आज शनिवार है तो आज हम लेकर आते हैं आपके लिए गीतों भरी कहानी। तो हम कहानी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह!
2: फसा! अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बहनों, अंतराल के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी घर। प्रज्ञा माता पिता की लाडली थी। श्रीमती और श्री सुबोध रंजन ऐसी पुत्री पाकर अपने को धन्य समझते थे। बेटी बचपन से ही तीव्र बुद्धि वाली थी, तभी तो पिता ने उसका नाम प्रज्ञा रखा था। अपने काम में जितनी दक्ष थी, स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। सीधी सरल स्वभाव वाली थी प्रज्ञा। अपनी बेटी की इन्हीं अच्छाइयों को देखकर कभी कभी प्रज्ञा की माँ गीतांजलि देवी चिंता करती थी। उन्हें लगता था कि पता नहीं मेरी बेटी इतनी होनहार है और सीधी साधी भी, विवाह के बाद पता नहीं इसे कैसा घर मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे। और बात बिल्कुल स्वाभाविक थी, लोग अक्सर अपने सबसे सीधे साधे सरल संतान के बारे में ही तो चिंतित रहते हैं। वे जानते हैं कि दुनिया छल कपट से भरी है, यहाँ अच्छे लोगों के लिए बहुत मुसीबतें हैं। प्रज्ञा इन बातों से अनभिज्ञ थी, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई या कामकाज में डूबी रहती। सुबोध रंजन का एक बेटा भी था, यानी प्रज्ञा का छोटा भाई राजेश। उसका आचरण यूं तो ठीक ठाक ही था, बहन को भी सम्मान देता था, उसकी फिक्र भी करता था, लेकिन उसके मन में एक बात कांटे की तरह कभी न कभी चुभ जाती, वो ये कि माता पिता प्रज्ञा को अधिक महत्व देते हैं। प्रज्ञा को भला इन सभी बातों से क्या लेना देना, वो तो हर बात में कहती थी, माँ ये तो बहुत अच्छा है, इसे राजेश को ही लेने दो, उसे पसंद आएगा। उसे अपने छोटे भाई के पसंद का बड़ा ही ख्याल था। प्रज्ञा इस दुनिया से अनजान अपने ही काम में मगन रहती, सबके सुख दुख को समझती थी। उसके इस संवेदनशील और सहिष्णु चरित्र से ही तो लोग प्रभावित थे।

अब समय आया प्रज्ञा के विवाह का। माता पिता ने काफ़ी छानबीन करने के बाद एक लड़के को पसंद किया। प्रज्ञा ने अपने विवाह के फैसले को माँ बाप पर ही छोड़ रखा था। वह सोचती थी कि मम्मी पापा जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। प्रज्ञा का विवाह कुछ ही दिनों में राजकुमार शर्मा के पुत्र विवेक से हो गया। विवेक पढ़ा लिखा समृद्ध परिवार का लड़का था। राजकुमार शर्मा पेशे से वकील थे, लेकिन पुश्तैनी संपत्ति भी उन्हें काफ़ी मिली थी। कुल मिलाकर प्रज्ञा एक अच्छे परिवार की बहू बन गई। प्रज्ञा के विवाह के बाद राजेश की भी शादी की बात चलने लगी। राजेश अपनी बहन से अलग था। उसने साफ कह दिया था, मुझे जब तक लड़की अपनी मर्जी की नहीं मिलेगी मैं शादी करने वाला नहीं हूँ, कृपया मुझ पर कोई दबाव न डालें। श्री सुबोध और गीतांजलि देवी ने इस बात पर पहले से ही हामी भर दी थी। राजेश का विवाह भी कुसुम से हो गया, जो उन्हीं के दूर के रिश्ते में थी। प्रज्ञा की गृहस्थी बड़ी अच्छी चल रही थी। इधर राजेश और कुसुम भी अच्छा जीवन बिता रहे थे। श्रीमती और श्री सुबोध रंजन भगवान का आभार मानते। गीतांजलि देवी कहते नहीं थकती थी कि हम लोग जैसे साधारण लोग के बेटे बेटी की शादी कितने अच्छे तरीके से

हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। एक दिन प्रज्ञा के घर एक चिट्ठी आई। वो विवेक के नाम की थी। प्रज्ञा को पता चला कि विवेक को अपनी कंपनी के तरफ से जापान भेजा जा रहा है। तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और नौकरी में तरक्की भी हो जाएगी। थी तो ये बड़ी खुशी की बात, लेकिन अभी शादी हुए एक ही साल हुआ था। विवेक के माता पिता भी इस बात से काफ़ी खुश नहीं थे, और विवेक का तो जैसे बरसों का सपना पूरा हुआ था। प्रज्ञा भी कुछ नहीं कह पाई। उसे खुशी तो थी, लेकिन कुछ चिंतित भी रहने लगी। कुछ ही दिनों में विवेक जापान चला गया और अपने छोटे भाई विनीत की शादी तक भी नहीं रुक पाया। अब प्रज्ञा को अकेलापन महसूस होने लगा। यूं तो घर के सभी लोग उसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे, विनीत और उसकी पत्नी मधु भी उसे बहुत मानते थे, लेकिन कभी कभी प्रज्ञा को ये लगने लगा था कि सबको बस अपनी ही पड़ी है, मेरी किसको परवाह है। विवेक का फोन या मैसेज अगर देर से आता तो काफ़ी नाराज़ हो जाती। इसी तरह धीरे धीरे परिवार में कुछ गलतफहमियां पैदा होने लगीं, खासकर प्रज्ञा और उसकी देवरानी मधु के बीच। प्रज्ञा के व्यवहार में से न जाने वो चंचलता और मधुरता कहाँ खो गई थी।

एक दिन प्रज्ञा ने कुछ महीनों के लिए अपने मायके जाने का प्रस्ताव रखा। जरूरी भी था क्योंकि उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ससुराल वालों ने इजाज़त दे दी। विवेक ने भी कहा, हाँ प्रज्ञा, कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास चली जाओ, तुम्हारे भैया भाभी भी तुम्हारा इंतज़ार करते होंगे। प्रज्ञा मायके चली गई। उसे लगता था जैसे जिंदगी कितनी अजीब है, इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। प्रज्ञा के मायके में कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक गई। राजेश की पत्नी कुसुम को जैसे हर वक्त ये इंतज़ार रहता था कि प्रज्ञा कब ससुराल वापस जाए। प्रज्ञा इस बात को कुछ कुछ अब समझने भी लगी थी। यूं तो ननद भाभी दोनों सहेलियां से कम न थीं। कभी कभी कुसुम पूछ बैठती, दीदी विवेक जी कब लौट रहे हैं? प्रज्ञा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। सोच में पड़ जाती कि ये घर मेरा भी तो है, या फिर मेरा घर सिर्फ पहले था, अब नहीं। क्यों मुझे ये जवाब देने की जरूरत पड़ती है कि मैं यहाँ से कब जाऊंगी? क्यों ये सवाल मुझसे पूछा जाता है? कुसुम भाभी को क्या हक है मुझसे ये पूछने का? शायद यही दुनिया की रीत है। ओह, ये कैसी रीत है कि अपने ही माता पिता के घर आने के लिए एक तरफ इजाज़त लेनी पड़ती है तो दूसरी तरफ वहाँ ठहरने पर जवाब भी देना पड़ता है। इन्हीं सब बातों के बीच अब कुसुम और प्रज्ञा के बीच कुछ खटास सी पैदा होने लगी। प्रज्ञा मानो दोनों तरफ से पिस गई थी, थक गई थी लोगों के सवालों से। तभी एक दिन उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या मैं हमेशा इन्हीं सवालों में उलझी रहूंगी? हमेशा विवेक से यूं ही पूछती रहूंगी कि तुम कब लौटोगे? सवालों में उलझे रहने से तो कहीं बेहतर है कि मैं जवाब की तलाश शुरू कर दूं। उसे पता चल चुका था कि रिश्ते भी मधुर तभी रह सकते हैं जब आपका अपना कोई वजूद हो, कोई पहचान हो। रिश्ते किसी के जीवन को परिभाषित नहीं करते, बल्कि उन रिश्तों में हमारी क्या अहमियत है, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। प्रज्ञा ने माँ से कहा, माँ मैं सोचती हूँ कि आगे की पढ़ाई फिर से क्यों ना शुरू कर दूँ। माँ ने कहा, बेटी अभी तो 2 साल पहले तेरी शादी हुई है, तुझे तो अभी अपनी गृहस्थी देखनी है, पढ़ाई लिखाई करने की तुझे क्या ज़रूरत है? नहीं माँ, मैंने तय कर लिया है, मैं अब रुकूंगी नहीं, ये था प्रज्ञा का जवाब। हालांकि प्रज्ञा पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लेकिन आगे इस रास्ते पर चलना संघर्षपूर्ण ही था। खैर, संघर्ष से वह बिल्कुल नहीं घबराती थी। उसने ये भी तय कर लिया था कि विश्वविद्यालय के पास ही वह अपनी सहेलियों के साथ रहेगी।

ताकि आने जाने में उसे सुविधा हो। पहले तो उसके पिता ने साफ मना कर दिया, लेकिन प्रज्ञा ने समझाया, पापा इसमें बुराई ही क्या है, आने जाने में जो वक्त बर्बाद होगा उसे मैं पढ़ाई में लगा सकती हूँ। इस तरह उसने पिता को मना लिया। प्रज्ञा की पढ़ाई अच्छी तरह होने लगी। श्री सुबोध रंजन ने बेटी को आर्थिक सहायता देने में कोई कमी नहीं की थी। उन्हें अपनी बेटी की काबिलियत पर पूरा विश्वास था। प्रज्ञा हर शनिवार को अपने घर भी आया करती थी। ससुराल में भी हमेशा फोन करती, सास ससुर का हालचाल पूछती रहती। लेकिन विवेक से उसने पूछना छोड़ दिया था कि वह कब लौटेगा। अब प्रज्ञा अपनी ही पहचान की तलाश में जुटी रहती। उसे अपनी पढ़ाई और अच्छी नौकरी के सपने के अलावा कुछ नहीं सूझता था। उसने सवालों पर ध्यान देना छोड़ दिया था और जवाब ढूंढना सीख लिया था।

तो बहनों, ये थी आज की कहानी घर। हमें उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और ये बिल्कुल सच है कि अगर हम बेवजह के सवालों में ना उलझें

0: उसके बजाय समस्या का समाधान ढूंढें तो हमारा जीवन अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। और आज शनिवार है बहनों, तो आपके पास फुर्सत तो थोड़ा अधिक होगा ही और दिनों के मुकाबले, तो आप अपने हॉबीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे सकती हैं और कहीं जा भी सकती हैं। तो आज संगीत सुनना या बागवानी करना, या आपको अगर घर में कुछ डेकोरेशन के सामान बनाना पसंद है तो ये सब आप ज़रूर कर सकती हैं। इससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव को दूर कर सकती हैं। और जब हम अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देते हैं ना बहनों, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमने कुछ अपनी तरफ से कुछ नया किया, और ये हमारे जीवन से तनाव को कम करने में मदद करता है। और आने वाले सप्ताह के लिए ना, हम एक नए उत्साह से हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और अब बातों बातों में वक्त हो चला है बहनों कि हम आपसे विदा लें। तो चलते चलते आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और अभी के लिए दें इजाज़त अपनी सखी निधि को। नमस्कार।
1: गृहलक्ष्मी।

बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज की गृहलक्ष्मी संपन्न हुई। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए शैक्षिक प्रसारण। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, उपसर्ग और प्रत्यय, परिभाषा और प्रकार और उदाहरण। वार्ताकार है कुमारी रीना प्रसाद। प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

0: लीजिए प्रस्तुत है शैक्षिक प्रसारण। आज इसके अंतर्गत सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय है उपसर्ग और प्रत्यय, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। वार्ताकार हैं कुमारी रीना प्रसाद।
1: सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी भाषा का अभिन्न अंग है। भाषा नदी के जल के समान चलती और बहती रहती है। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के निर्माण में अहम और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। आज की चर्चा का विषय उपसर्ग और प्रत्यय है, तो सबसे पहले हम चार बिंदुओं पर इसकी चर्चा करेंगे। पहला, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा। दूसरा, दोनों की क्या विशेषताएं हैं। तीसरा, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रकार और उदाहरण। और अंततः उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। सबसे पहले उपसर्ग की चर्चा करते हुए, उपसर्ग शब्द दो शब्द से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट रखना और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात निकट रखकर नए शब्दों की सृष्टि करना ही उपसर्ग है। लेकिन पारिभाषिक शब्द में हम कहें तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। जैसे कि एक शब्द है हार, जिसका अर्थ है पराजय या गले की माला, लेकिन इस शब्द के पहले कुछ शब्दांश लगा देने पर यह नया अर्थ विशिष्ट अर्थ देने लगता है। जैसे हार के पहले आ लगा दिया गया आहार, उसका अर्थ हुआ भोजन। हार के पहले प्र लगाया गया प्रहार, अर्थ हो गया चोट। हार के पहले वी लगाया गया विहार, भ्रमण। उसी प्रकार हार से पहले उप लगा दिया गया उपहार, जिसका अर्थ हुआ सौगात। हमने देखा कि हार शब्द मूल शब्द था, लेकिन उसके पूर्व कुछ शब्दांश अलग अलग शब्दांश के जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है, उसका नया अर्थ निकलने लगता है। उपसर्ग की जब हम परिभाषा देते हैं तो उनमें से तीन विशेषताएं सामने निकल कर आती हैं। पहली, उपसर्ग शब्द

शब्दांश है जो मूल शब्द के पहले लगता है। दूसरा, उपसर्ग लगने पर अर्थ में नई विशेषता आ जाती है, जैसे बल के आगे प्र लगा दिया गया, प्रबल। शासन के पहले अनु लगा दिया गया, अनुशासन। उसी प्रकार उपसर्ग लगाने पर कभी कभी मूल शब्द के ठीक विपरीतार्थक शब्द का भी निर्माण हो जाता है, जैसे सत्य शब्द है, सत्य के पहले हमने अ लगा दिया, असत्य हो गया, जो सत्य का ठीक उल्टा है। उसी प्रकार यश के पहले हमने अप लगाया, अपयश। चौथा विषय यह है कि उपसर्ग लगाने पर कभी कभी अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, वह मूल शब्द के अर्थ के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, जैसे शुद्ध के आगे हमने वी लगाया, विशुद्ध। भ्रमण के पहले परी लगाया, परिभ्रमण। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशज उपसर्ग, जिसे आगत भी कहते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि संस्कृत के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं, उसे तत्सम भी कहा जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, वे सारे शब्द तत्सम कहलाते हैं। इसलिए जो उपसर्ग संस्कृत के हैं वे निम्नलिखित हैं, जैसे अव, अव के साथ काश जोड़ दिया, अवकाश। अवसर, अवधि। अति एक उपसर्ग है, अतिशय, अत्याचार। ऐसे संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं, उनमें से कुछ की चर्चा यहाँ की जा रही है, जैसे आ, आ शब्द के साथ गमन जोड़ दिया, आगमन। आ के साथ कार जोड़ दिया गया, आकार। उसी प्रकार एक उपसर्ग है परा, परा के साथ जय जोड़ा, पराजय। परा के साथ भव जोड़ा, पराभव। नी के साथ निवारण, निपात। तो संस्कृत के उपसर्गों की चर्चा करने में, 22 उपसर्गों की चर्चा करने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए कुछ उदाहरण हमने दिए हैं। उसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग हमारे पास कहे जाते हैं कि 10 हैं, लेकिन प्रचलित अर्थों में उनकी संख्या उनसे कई बढ़ भी जाती है। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अन, अन प्लस पढ़, अनपढ़। अन प्लस मोल, अनमोल। ये अन उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द है। उसी प्रकार अन उपसर्ग है, मोल मूल शब्द है। भर एक उपसर्ग है, जैसे भर पूर, भर पेट, भर सक। बिन उपसर्ग है, बिन देखे, बिन बोले। तीसरा उपसर्ग जो हिंदी में उपयोग में आता है वह है विदेशज उपसर्ग। विदेशज वो शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में लिए गए हैं। भाषा के निर्माण के प्रवाह में अनेक भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं। संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। और मुख्य रूप से जो उपसर्ग हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं वह अरबी, फारसी के ही होते हैं, कभी कभी अंग्रेजी के भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हर, हर से हर रोज, हर घड़ी, हर दफा। खुश, खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। ना से नालायक, नाजायज। हम, हमदर्द, हम सफर, हम उम्र। बद, बदतमीज, बदबू, इत्यादि। तो हमने देखा कि उपसर्ग जो है हमारे तीन प्रकार के हुए, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषाओं के, जिसे विदेशज भी कहा जाता है। हिंदी में कई ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे असुरक्षित, अ प्लस सु प्लस रक्षित। यहाँ अ भी उपसर्ग है, सु भी उपसर्ग है, रक्षित मूल शब्द है। उसी प्रकार निराकरण, निर प्लस आ प्लस करण। निर भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, करण भी उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमने देखा कि शब्दांश है, पहले लगता है और नए शब्दों का निर्माण करता है। तीन प्रकार के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और देशज और या आगत उपसर्ग।
उसी प्रकार प्रत्यय की जब हम चर्चा करेंगे तो प्रत्यय भी शब्द निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है और प्रत्यय उपसर्ग के ठीक उल्टे शब्द के अंत में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में, मूल शब्द के आरंभ में जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। प्रत्यय की परिभाषा यदि हम दें तो वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाता है। जैसे देव प्लस ई देवी, तेली प्लस इन तेलिन। हिंदी में प्रत्ययों की संख्या, हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में आने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, यानी वह शब्द जो क्रिया से बना हो और उसके अंत में यदि कोई शब्दांश लगाया जाता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया हम जानते हैं कि क्रिया का अर्थ होता है काम करना, जैसे संज्ञा का, संज्ञा मतलब नाम, क्रिया मतलब काम। तो क्रिया के अंत में जो शब्द हम जोड़ते हैं, या शब्द नहीं कह सकते हैं, शब्दांश जोड़ते हैं, तो वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं और उनसे जिस शब्द का निर्माण होते हैं होता है उस शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे पीना प्लस वाला पीने वाला, पढ़ना प्लस वाला पढ़ने वाला। उसी प्रकार जानना प्लस हार जाननहार, मिलना प्लस सार मिलनसार, लिख प्लस आ लिखा, खा प्लस या खाया, खाता प्लस खा प्लस ता खाता। उसी प्रकार दूसरा जो प्रकार है वह कहलाता है तद्धित प्रत्यय। क्रिया से भिन्न जो शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उनके अंत में जो शब्दांश लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनसे जो शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द का निर्माण होता है, उसे कहते हैं तद्धितान। जैसे प्रभु शब्द के साथ हमने ता जोड़ा, नया शब्द बना प्रभुता। बच्चा शब्द के साथ पन जोड़ा, नया शब्द बना बचपन। ताजा प्लस गी ताजगी। तो हिंदी में जो भी शब्द सर्वनाम है, विशेषण है या संज्ञा है, उनके अंत में जो शब्दांश जुड़ते हैं और एक नया अर्थ लेकर आते हैं, वे नए शब्द के साथ प्रत्यय का योग होता है। हमने प्रत्यय की चर्चा की, हमने उपसर्ग की चर्चा की। अब दोनों के बीच क्या अंतर है या कैसे हम जाने कि दोनों अलग अलग अर्थ लेकर है, हम लोग उसकी चर्चा भी कर लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो मूल शब्द के पूर्व या पहले लगता है और प्रत्यय वह शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में लगता है। दूसरा, उपसर्ग लगने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और कभी कभी वह मूल शब्द के का विलोम भी हो जाता है। जैसे ज्ञानी के आगे हमने अ लगा दिया अज्ञानी, होश के आगे हमने वी लगा दिया बेहोश, लायक के आगे ना लगाया नालायक। प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के अर्थ में अल्प परिवर्तन होता है, वह अधिकांशतः मूल शब्द के अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमता है, जैसे लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना। तीसरा अंतर हम कह सकते हैं कि उपसर्ग का अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे अ शब्द लगाया तो अनिषेध का है अज्ञानी, जिसे ज्ञान नहीं है, लेकिन अपवादों को छोड़ दें तो प्रत्यय का कोई अलग विशेष अर्थ नहीं होता है। वो शब्द के साथ जुड़कर शब्द में एक नया परिवर्तन लाते हैं, लेकिन बहुत विशेष अंतर उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा की। हमने देखा कि शब्द निर्माण होता है तो उसमें आगे लगाने से भी नए शब्द बनते हैं और शब्दों के पीछे भी शब्दांश लगाने से नए शब्द बनते हैं। यदि हम लोग परीक्षा में आने वाले जो
विषय होते हैं उसमें अधिकांश कोई उपसर्ग दिया रहता है और उससे कई शब्द बनाने के लिए कहा जाता है। तो यह अभ्यास के द्वारा हम लोग उपसर्ग लेकर उससे नए नए शब्दों का गठन करें, पढ़ें। और उसी प्रकार प्रत्यय भी दिया होता है और प्रत्यय से नए शब्द बनाने होते हैं। कभी कभी शब्द दिया जाता है और उसमें से अलग प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाता है और उपसर्ग अलग करने के लिए कहा जाता है। तो हमने इसकी विशद चर्चा की है। आशा करते

0: हूँ आप लोगों को यह विषय समझ में आया होगा। धन्यवाद।
1: शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था उपसर्ग और प्रत्यय, परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। वार्ताकार थी कुमारी रीना प्रसाद। कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का था।

अभी हम सुन रहे थे शैक्षिक प्रसारण, हम सुन रहे थे वार्ता, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। वार्ताकार थी कुमारी रीना प्रसाद, प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का और प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। आज का शैक्षिक प्रसारण संपन्न हुआ।

आइए सुनिए फिल्म संगीत. सबसे पहले सुनते हैं फिल्म जोधा अकबर का ये गाना जावेद अली के स्वर में. बोलो को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है AR रहमान ने.

0: और अब इसी के साथ फिल्म संगीत संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100%

0: डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. During the visit, Prime Minister Modi will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Meanwhile, Seychelles has backed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Ford said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power.
2: Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage.
1: Punjab police has busted another cross-border illegal arms smuggling network in Amritsar and apprehended 4 accused today. Police have recovered 10 sophisticated pistols along with live cartridges from their possession. This is the second major arms recovery in Amritsar within the last few days. According to police, in both cases, the arrested accused were acting on the directions of a foreign-based smuggler and were receiving illegal weapon consignments through cross-border routes for onward supply to criminal elements. Further investigation is underway. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurates cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Vice President C.P. Radhakrishnan says the strength of any economy across the world lies in the contribution of its MSME sector. Addressing an event on MSME Day 2026 in New Delhi, he said, in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of first-generation entrepreneurs. The Vice President noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high-quality standards. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force. He said this hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a social media post, Mr. Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue and warned that violence would receive a military response. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Konkan, Goa, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Mahi and in some parts of the northeast India. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in their final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। विश्व एमएसएमई दिवस आज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। कहा सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की। रामगढ़ सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत पर प्रशासन गंभीर। डीसी और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। एनएचएआई अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से की चर्चा। महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर साहेबगंज में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। और रांची में 3 दिवसीय झारखंड फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 67 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। राज्य की संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं की दिखेगी झलक। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व एमएसएमई दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश को आत्मनिर्भरता की ओर लगातार आगे ले जाने वाले सभी उद्यमियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुति क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत रोजगार जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर गरीब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गिरडी के भंडारीडीह की रहने वाली रजिया इस्लाम का कहना है कि गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलने से जिंदगी आसान हो गई है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
5: मेरा नाम रजिया इस्लाम। कोयला लकड़ी जलाते थे, अब जब से गैस मिला तब से खाना बना के दे देते हैं, टिफिन जल्दी जल्दी करके, अब वहाँ से धक्का से बचते हैं, बीमारी से बचते हैं। घर दिया है, गैस दिया है, अनाज मिलता है, फ्री में खाने पीने की सुविधा है। सरकार को धन्यवाद देते हैं, ये सब कुछ मिल गया।
4: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
6: जब यहाँ के बच्चों का हक, यहाँ के बच्चों का अधिकार को जब छीन रहे हैं, लुटा रही है सरकार, तो मुझे लगता है कि उससे अपने आप को सरकार नहीं बच सकती।

0: हमारे पास आज भी वो सारे दस्तावेज हैं। विधानसभा में भी मैंने विषय को उठाया थे कि रिम्स में या झारखंड सरकार में कोई सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
1: इधर भाजपा के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता का सरकार के काम पर विश्वास बढ़ गया है, जिससे भाजपा जानबूझकर राजनीति के तहत खामियां निकाल रही है।
2: हर जिला के सदर हॉस्पिटल हो या रेफर अपने लोगों को भेजकर वहां का खामियां निकालता है। तो मैं डॉक्टर और सीएस को कहा हूँ कि आप अपना एकदम मुस्तैदी के साथ रहिए, और स्वार्थ को लेकर अगर राजनीतिक मुद्दा अगर बनाता है तो उसको बहिष्कार दीजिए ना। लोगों को विश्वास बढ़ गया है, आदमी काम करता है, मजदूरी करता है, तो मैं कहा तो मिलना चाहिए ना।
1: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक में राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि कम से कम 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की गई है, ताकि अधिक नागरिक लाभ उठा सकें। इस बैठक में 13 से 19 जुलाई तक चीन का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टूर आयोजित करने और जल्द ही राज्य स्तरीय जॉब फेयर शुरू करने की जानकारी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, संताल परगना में 10% होल्डिंग टैक्स वृद्धि और मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी पर भी चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत बारलोंग क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु पर जिला प्रशासन ने संवेदना प्रकट की। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रामगढ़ बोकारो की तकनीकी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्घटना के कारणों की बारीकी से आकलन किया गया। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। BCCL अब खदान के गंदे पानी को प्यूरिफायर कर पीने योग्य बनाएगी और इसे कोल नीर के नाम से बॉटलिंग कर बाजार में उतारेगी। इसके लिए पुटकी बिलहरी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर से करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से BCCL के पहले कोल नीर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। BCCL CMD मनोज अग्रवाल ने बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोयला खदानों से निकलने वाले माइन वाटर को अत्याधुनिक RO तकनीकी से शुद्ध कर पानी पीने योग्य बनाया जाएगा।
3: ये जल को सेलिंग करके यहाँ बनेगा, 30 जून तक ये चालू हो जाएगा। इसके लिए जो ये कार्य यहाँ हो रहा है उस तरह का एक प्रथम कार्य पूरे BCCL में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली पूरे CIL का वन ऑफ दी बेस्ट और फर्स्ट प्लांट होगा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि माइन वाटर का इसमें यूटिलाइज किया गया है।
1: हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। बरकट्टा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक अवैध शराब जब्त की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अवैध अंग्रेजी शराब की खेप की बिहार में तस्करी करने की योजना थी। उत्पाद विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी है। सिमडेगा जिले में पुलिस की दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अवैध गांजा तस्करी के मामले में एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
4: छापामारी निरीक्षण के बाद लगातार तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर अज्ञात महिला का शव पहचान ललित देवी के पिता विश्वनाथ भाई साकिन पलेगिरा जिला सिमडेगा के रूप में भी है। आरोप मृतिका का मोबाइल चप्पल अभी का फोन बरामद हुआ है। अनुसंधान के क्रम में घटना में संलिप्त आरोपी मोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया।
1: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। मेरा युवा भारत साहेबगंज के तत्वावधान में महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती के अवसर पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान तथा राष्ट्र प्रेम की भावना से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति अभियान के तहत यूथ क्लब के सदस्य को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया गया। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में झारखंड फिल्म महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर गोपाल पाठक और कुलपति प्रोफेसर जगन्नाथ चेकलिंगम ने किया। साथ ही महोत्सव स्मारिका चित्र पटल का लोकार्पण भी हुआ। देश भर में मिली 84 प्रविष्टियों में से चुनी गई 67 फिल्मों का 3 दिवसीय महोत्सव में प्रदर्शन होगा, जिनमें झारखंड की संस्कृति, प्रकृति और स्थानीय प्रतिभाओं की झलक दिखेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व एमएसएमई दिवस आज। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी उद्यमियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सरकार उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की। रामगढ़ सड़क हादसा में 8 लोगों की मौत पर प्रशासन गंभीर। डीसी और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। एनएचएआई अधिकारियों के साथ सुरक्षा उपायों पर विस्तार से की चर्चा। महान साहित्यकार और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर साहेबगंज में प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं ने लिया नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प। और रांची में 3 दिवसीय झारखंड फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। 67 फिल्मों का होगा प्रदर्शन। राज्य की संस्कृति और स्थानीय प्रतिभाओं की दिखेगी झलक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम सुनेंगे शोभा गुड्डू को। इनसे सबसे पहले सुनते हैं मिश्र पहाड़ी में ठुमरी, बोल है छोड़ो छोड़ो डगरिया।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे हैं शोभा गोटू को। आइए सुने राग मांझ खमाज में ये ठुमरी, बोल है अब कैसे धरूं तीर।

शोभा गुट्टू की आवाज में अभी हम सुन रहे थे ये ठुमरी राग मांझ खमाज में। और अब इसी के साथ हमारा आज का उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी समाप्त हुआ।

मिताली सिंह की स्वर में अभी हम ये गजल सुन रहे थे। इसे लिखा था मलिक गुमनाम ने। आइए सुनिए मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल नसीम अजमेरी की लिखी हुई।

0: And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।

0: यूके एग्रीमेंट इज अ टेम्पलेट।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
2: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
2: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 MHz यानी 549 KHz और FM 110.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम जय भारती, लेकिन उसके पहले ये शौर्य गाथा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आइए सुने फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम जय भारती। सबसे पहले सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म बोस अनफॉरगेटन हीरो का ये गाना। इसे लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है AR रहमान ने।

आइए सुने श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में फिल्म बर्फी का ये गाना। गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे, संगीतकार प्रीतम।

माय नेम इज खान। आइए सुने इस फिल्म का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म कसूर का ये गाना। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। बोलों को लिखा है समीर ने और उन बोलों को सुरों में पिरोया है नदीम श्रवण ने।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी बैठक में राज्य सरकार से भवन नियमितीकरण योजना की अवधि कम से कम 6 माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को सरल बनाने की मांग की गई है ताकि अधिक नागरिक लाभ उठा सकें। इस बैठक में 13 से 19 जुलाई तक चीन का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टूर आयोजित करने और जल्द ही राज्य स्तरीय जॉब फेयर शुरू करने की जानकारी दी गई। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, संथाल परगना में 10% होल्डिंग टैक्स वृद्धि और मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का आग्रह किया। हजारीबाग के ओकनी तालाब के प्रदूषित होने के कारण जल जीव मर रहे हैं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने तालाब का निरीक्षण करते हुए कहा कि सफाई टीम को ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का निर्देश दिया गया है।
2: लोकल लोगों द्वारा यहाँ दिया गया शिकायत कि यहाँ सिंघाड़ा फल लगाया जा रहा था जिसमें कि मछलियाँ का भी हो रहा था पालन, तो मछली काफी संख्या में यहाँ डेड पाए गए हैं। उस चीज को लेकर यहाँ दुर्गंध फैला हुआ था, तो नगर निगम को जैसी शिकायत मिली तो नगर निगम ने यहाँ के देखा, औचक निरीक्षण भी किया। तो साथ ही हम लोग सफाई टीम को ये डायरेक्शन दिए हैं कि यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए और साफ सफाई मेंटेन करे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में भारत की उस सोच को रेखांकित किया गया है जिसके तहत वैश्विक दक्षिण को सुरक्षित, टिकाऊ और समान ऊर्जा भविष्य के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत ऊर्जा व्यवस्था केवल घरेलू नीतियों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी बनती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने को लेकर टाटा स्टील फाउंडेशन नोवामुंडी द्वारा पहल की गई है। टाटा स्टील नोवामुंडी कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के अधिकारी उदय प्रकाश सिंह ने बताया कि यह पहल दिव्यांग बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ेगी। देवघर श्रावणी मेले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने बासुकीनाथ देवघर मार्ग को दुरुस्त और सुविधाजनक बनाने की पहल तेज कर दी है। एनएचएआई के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से बताया गया कि इस मार्ग पर 45 किलोमीटर से अधिक लंबी फोरलेन परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे लाखों श्रद्धालुओं और आम यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। धनबाद कोर्ट कैंपस में अधिवक्ता संघ की ओर से आज सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता उदय भट्ट ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कोर्ट कैंपस में शेड का निर्माण कराया गया था। उसी समय से हर वर्ष सुंदर पाठ का आयोजन किया जा रहा है।
3: विगत 2 वर्ष से हम लोग इस कैंपस में सुंदर कांड का आयोजन कर रहे हैं। अमरेंद्र कुमार सहाय और सचिव जितेंद्र कुमार कुनी के सौजन्य से यहाँ पर कैंपस तैयार हुआ था। उसके बाद से लगातार हम लोग ये करते आ रहे हैं। सुंदर कांड के पाठ के बाद भोग वितरण होगा, खीर और खिचड़ी का व्यवस्था है सभी भक्तों के लिए।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला

0: कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई ना कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
1: आइए सुनिए फिल्म संगीत।

अनजान के बोलों को एक बार फिर सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रांची मेलोडीज। सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में गुलशन बावरा की ये रचना, आर डी बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम है राम तेरे कितने नाम।

आयु सिने फिल्म त्रिशूल का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, माफ़ कीजिएगा, ये गाना फिल्म कभी कभी का है। बोलो को लिखा है साहिर ने, धुन तैयार की है खयाम ने।

और आइए अब सुने फिल्म बड़े दिल वाला का ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही अब आज की रांची मेलोडी संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सर

वाहन चालक मिथिलेश कुमार ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। हजारीबाग के ओकनी तालाब के प्रदूषित होने के कारण जलजीव मर रहे हैं। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है। सहायक नगर आयुक्त विपिन कुमार ने तालाब का निरीक्षण करते हुए कहा कि सफाई टीम को ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का निर्देश दिया गया है। और देवघर श्रावणी मेले को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बासुकीनाथ देवघर मार्ग को दुरुस्त और सुविधाजनक बनाने की पहल तेज कर दी है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं, आइए सुने कल्याणी। आज की कल्याणी में हम सुनेंगे ये चर्चा, अपने अच्छे पल को पहचाने और खुश रहें। एक भेंट वार्ता होगी, पारिवारिक विघटन और समाधान। भेंट वार्ताकार हैं झालसा के अपर सचिव निर्मल कुमार भारती और इनसे हमारी मुलाकात करवाएंगे संजीव कुमार लाल। एक और चर्चा हम सुनेंगे, बिगड़ती बात को बनाना भी एक कला है। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

नमस्कार, कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुनीता। श्रोताओं, हमारी कोशिश होती है इस कार्यक्रम में अपने समाज, अपने आसपास, अपने लोगों के साथ जो कुछ भी बातें होती है उस पे हम आपसे बातें करें, कुछ चर्चा करें, कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में प्रायः हर कोई हमेशा यही सोचता है कि हम कैसे कुछ ऐसा करें जिससे हम सब खुश रहें। खुशियाँ पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत धन दौलत हो, बहुत पैसे हो या फिर बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, तभी आप खुश रहेंगे। खुशी का राज बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने छोटे छोटे पलों को पहचानने जिसमें हमारा वर्तमान जीवन छिपा है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे पलों को पहचानते हैं तो यकीन मानिए हम बहुत खुश रह सकते हैं। सच्ची संतुष्टि और खुशी पाने के लिए आप बहुत सारी बातें हैं जिसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। पल अच्छे बुरे हमेशा आते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छे पल जो हमारे लिए हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, हम उनमें अपना जीवन ऐसे जिए कि आगे आने वाला अगर कोई ऐसा पल है जहां हमें परेशानी हो सकती है तो उन अच्छे पलों के सहारे हम उस कठिन परिस्थितियों को पार कर सके। छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं। हर दिन रात को सोने से पहले तीन अच्छी बातों या पलों को याद करें जो आपके साथ हुए हैं। पूरे दिन में अगर कुछ अच्छी चीजें आपने की है या आपके साथ किसी ने की है तो सोने के पहले उन्हें थैंक्स जरूर बोलें, उनके प्रति कृतज्ञता जरूर निभाएं और साथ ही साथ ईश्वर को भी याद करें कि हमें उन्होंने ये पल दिया है जो हमारे लिए बेहद खुशी का रहा है। साथ ही खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। आपकी खुशियाँ, आपका जीवन बिल्कुल आपका अपना है और आपका सफर बिल्कुल अनोखा है, ये बात याद रखें। किसी को देखकर उसके पीछे ना भागें बल्कि अपने जो गुण हैं उन्हें पहचानें और उन गुणों को निखार कर खुशियों के साथ अपने जीवन के सफर को आगे बढ़ाएं। अक्सर देखा गया है कि हम आज को छोड़कर भविष्य की चिंता करते हैं, यानी फ्यूचर प्लानिंग में ही रहते हैं कि आने वाले समय में हम ये कर लेंगे, हमारे साथ ये हो तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में फ्यूचर को लेकर चलती रहती हैं। इससे तो अच्छा है कि भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझने के बजाय जो आज आपके पास मोमेंट है, यानी जो क्षण है, पल है, उससे प्यार करना सीखे, उन पलों में जीना सीखिए। उन पल में आपके लिए क्या अच्छा है ये जानने की कोशिश करिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए। देखिए, खुशियाँ आपके चारों ओर बिखरी नजर आएंगी और आप खुश रहेंगे। हम में से हर किसी ने अनुभव किया है कि जब हम पॉजिटिविटी अनुभव

0: करते हैं तो हम बेहद खुश रहते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो नेगेटिविटी को अपने आसपास ना आने दें, नकारात्मकता के जो भी भाव है उन्हें हम अपने मन से निकाल दें और जो पॉजिटिविटी है यानी सकारात्मकता है उसे अनुभव करें और उसे खुलकर अपने जीवन में स्वीकार करें, तभी हम शांत मन से जीवन को जी पाएंगे और खुशियाँ हमारे लिए होंगी। साथ ही साथ ऐसी बातें जो हमारे दिल को छूती हैं, दिल की भावनाओं में गहराई तक उतरती हैं, ऐसा कोई गहन विचार अनुभव भी हो सकता है जो हमारे मन को सुकून और प्रेरणा देता है, जिससे मन की शांति या सीख मिलती है। हमेशा यह विश्वास रखें कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। कुछ लोग कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ईगो के कारण बहुमूल्य रिश्ते भी खो देते हैं, तो ऐसी चीजों से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे पल हैं उनमें हम जिए और उनसे प्रेरणा लें। साथ ही कोशिश यह करें कि हमारी ये कोशिश किसी और के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। किसी को संतावना देना, कोई गहरा सत्य समझाना भी दिल को छू लेने वाली बातें हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे विचार हमें अंदर से झकझोर देते हैं, हम कभी उदासी या तन्हाई में घिर जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन बातों से खुद को बाहर निकालें और कोशिश ये करें कि हम खुशियों के साथ अच्छे से अपना जीवन जी पाए। अच्छे बुरे पल हमेशा आते हैं जीवन में, तो उन पलों को संजो कर, संभाल कर, अपना कर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में खुशियां बिखेरे। जीवन के बेहतरीन पल वो होते हैं जब हमारा मन शांत और सकारात्मकता होता है। खुश रहने और अच्छे पलों को पहचानने के लिए वर्तमान में जीना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढें, खुद की तुलना किसी से ना करें। अपने आप से जुड़ें, देखें वर्तमान में कौन सी खुशी आप महसूस कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों में आप अपनी बहुत बड़ी खुशियां ढूंढ सकते हैं। सुबह की धूप, किसी की मुस्कान, चाय की चुस्की जैसे छोटे छोटे साधारण पल है ना, उसमें भी हमें खुशियां मिलती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अतीत के पछतावे को भूलकर, भविष्य की चिंता को छोड़कर आज में जिए और खुश रहें। लोगों की तारीफ करें, दयालुता दिखाएं, लोगों की तारीफ करें, दयालुता दिखाएं और सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को भर लें। कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो हमें पीछे ढकेल सकती है। ऐसा तब होता है जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलकर खुद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। जो काम आपको अच्छा लगता है वो जरूर करें और खुशियों के साथ अच्छे पल में जिए। कोशिश करें आपके जीवन का हर पल खुशियों भरा हो। श्रोताओं, ये तो सही में बहुत जरूरी है कि हम अपने अच्छे पलों को पहचान कर उसमें खुश रहने की कोशिश करें। साथ ही साथ जरूरी है कि परिवार में भी खुशियां बिखेरे रहे। परिवार में खुशियां इसलिए भी जरूरी है कि आज के वर्तमान दौर में अक्सर हमने ये देखा है कि परिवार टूटते जा रहे हैं। पहले जहां संयुक्त परिवार होता था, आज उसने एकल परिवार का रूप ले लिया है। दिन प्रतिदिन परिवार में विघटन होता जा रहा है, जो कि आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों होता है पारिवारिक विघटन और इसके समाधान क्या है, इस विषय पर भी सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपर सचिव झालसा के निर्मल कुमार भारती जी को, जिनसे हम बातें करेंगे पारिवारिक विघटन और समाधान। उनसे बातें कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों, परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है और इस परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसमें माता पिता, दादा दादी और बच्चे, चाचा चाची सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आजकल की वर्तमान स्थिति में हम एकल परिवार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं, एकल परिवार में आ गए हैं जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा लगभग खत्म हो चुकी है और इस न्यूक्लियर फैमिली में बहुत सारी परेशानियां भी जन्म लेने लग गई है। जब परिवार का निर्माण होता है तो एक सभी लोग उसमें जुटते हैं और बड़ा खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन यही परिवार जब विघटन के कगार पर आ जाता है तो इससे सबकी क्षति होती है। परिवार बनता है, शादी ब्याह होते हैं और कुछ दिनों के बाद बहुत सारी संकटें आने लग जाती हैं और फिर आप जानते हैं आजकल तलाक का दौर चल पड़ा है। लोग अर्जी दाखिल कर जाते हैं और परिवार अलग हो जाता है और इसमें परिवार संवेदना का शिकार हो जाता है। अवसाद से घिर जाता है और फिर हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो आखिर ये पारिवारिक विघटन क्यों हो रहा है, क्या कारण है और इसका समाधान हम कैसे निकालें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं

0: झालसा के अंडर सेक्रेटरी श्री निर्मल कुमार भारती जी। भारती जी स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: भारती जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवार में तनाव, विघटन, अवसाद बहुत देखने को मिल रहा है, क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं?
1: देखिए, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर अग्रसर हो चुके हैं। भारत में जो कि संयुक्त परिवार के लिए जानी जाती थी हमारी पारिवारिक व्यवस्था, आज एकल परिवार के रूप में हम लोग आने लगे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि रोजी रोजगार के तलाश में लोग एक जगह से दूसरे जगह भटकने लगे हैं। आज न सिर्फ हमारा देश, हमारा राज्य, बल्कि समूची दुनिया ही सिकुड़ चुकी है और पूरी दुनिया इतनी नज़दीक हो गई है कि यहाँ से सात समंदर पार भी अगर हमें जाना है तो 24 घंटे 26 घंटे में हम पहुँच जा रहे हैं। इसी वजह से लोग जो है अपने जन्मभूमि से, अपने स्थान से दूर होने लगे, अपने सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों को दरकिनार करके रोजी कमाने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। और यह मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कारण है पारिवारिक विघटन का। दूसरा कारण क्या है कि अगर आप कोर्ट कचहरी में देखें और ये देखें, तो सबसे मुख्य कारण है कि जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, तो उनमें मानवीय संवेदना के जगह पर अपना अधिकार पाने की इच्छा शक्ति जो है ये प्रबल हो जाती है। यहाँ लोग भूल जाते हैं कि समाज के प्रति और संयुक्त परिवार के प्रति उसके क्या कर्तव्य थे, बल्कि लालच में पड़कर वह संपत्ति को अधिक से अधिक भाग अपने पास रखने के लिए अग्रसर होने लगते हैं और इस तरह से कानूनी समस्याएं जन्म होती है। जो परिवार की मिलजुल कर रहता था, वहाँ पर हम संपत्ति अधिक से अधिक अर्जित करने के चक्कर में पारिवारिक मूल्य त्यागते हैं और पारिवारिक विघटन होता है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि तलाक के मामले भी बढ़ने लगे हैं, इसके पीछे एकल परिवार ही है, क्योंकि जब लोग एकल परिवार में रहते हैं तो वहाँ पति पत्नी और बच्चे ही हैं। कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी के जो मेंटल स्टेटस होता है वह अंतर लिए हुए होता है। कई बार उम्र में फासला होता है, कई बार पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो एक दूसरे के संवेदनाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और परिवार जो होता था, हमारा संयुक्त परिवार जो होता था, वह सेफ्टी वाल्व के तरह काम करता था। पति अगर अवसाद में है, चिंता में है, परेशानी में है, तो परिवार के दूसरे लोग उसे कम कंट्रोल करते थे ताकि पति पत्नी में, बच्चों में आपस में सामंजस्य बना रहे। पत्नी अगर टेंशन में रहती थी तो परिवार के दूसरे लोग उसे सहयोग करते थे। अब दूसरे लोग सहयोग करने के लिए नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और इससे तलाक और दूसरी कानूनी समस्याएं आती हैं। बच्चों में संस्कार घटते चले जाते हैं। हम अपने दादा दादी, चाचा चाची के गोद में पले बढ़े लोग हैं और आज जो है हमारे बच्चे उस सब चीज से महरूम होते जा रहे हैं। तो उसका नतीजा यह होता है कि बच्चे में जो संस्कार आने चाहिए वह नहीं आ पाता है और पारिवारिक विघटन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। यही सब मुख्य कारण है मेरे हिसाब से।
0: हम समय की रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक सामंजस्य स्थापित करने में हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। दूसरे को सम्मान देना, उसका ख्याल रखना, उसकी भावनाओं को कद करना, ये जहाँ हम भूल जाएंगे, इससे यदि हम किनारा कर लेंगे तो फिर समस्याएं धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है और फिर वो विघटन या टकराव का रूप धारण कर लेता है। फिर जब समस्याएं विकराल होने लगती है, जटिलताएं आने लगती है, तो फिर कानूनी समस्या आ जाती है, लोग कानून का सहारा लेते हैं। और सिर्फ कानून के सहारे से ही हम इसका बचाव नहीं कर सकते, हमें अपनी मानवीय संवेदनाओं को वापस लाना होगा और एक सोच और समझ के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। निर्मल जी, समस्याएं वहां उत्पन्न होती है, कई जगह समस्याएं वहां उत्पन्न होती है जब इस रिश्ते में तीसरा व्यक्ति कूद पड़ता है। वो कहीं ना कहीं उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अपनी बात वहां रखने की कोशिश करता है, परिवार का तीसरा व्यक्ति आ जाता है और मामले में आग लगाने की कोशिश करने लग जाता है। ये आजकल काफी देखने को मिल जा रहा है।
1: देखिए, खास करके पारिवारिक मामलों में, जहां पर कि पति पत्नी के बीच में, जब पति पत्नी एकल परिवार के रूप में रह रहे हों और वहां पर इंटरफेरेंस पत्नी के मायके वालों का या पति के परिवार वालों का होता है, जो लोग कि वहां नहीं रह रहे हैं और चूंकि वे अपनी बहू के साथ नहीं रहे हैं, वे अपने दामाद के साथ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उनकी भावनाओं को समझे बिना अपनी बेटी को या अपने बेटे को, अपने भाई को या अपनी बहन को जब अपने हिसाब से उनके अंदर विचारों का पुट करने लगते हैं, तो वैसे में जो

0: पति पत्नी के बीच आपस का रिश्ता खराब होता है, लेकिन जब यही हम संयुक्त परिवार में रहते थे तो यही लोग वे होते थे जो कि परिवार को बचाने का काम करते थे। एक्चुअली वे झगड़ा लगाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि बस अपने विचारों को अगले के विचारों को जाने बिना डालते हैं, इसीलिए पारिवारिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है।
1: जी, जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो जाहिर सी बात है बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, समाज में भी गलत संदेश जाता है, तो क्या क्या इसका दुष्प्रभाव हमारे परिवार पर देखने को मिल जाता है?
0: जैसा कि आपने कहा कि बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है, देखिए जब पति पत्नी दोनों कामकाजी हों और घर में शांति का माहौल नहीं रहे तो ऐसे में बच्चे अपने पारिवारिक मूल्यों से दूर होते चले जाते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो बच्चे होते हैं वे गलत संगत में पड़ जाते हैं। माता पिता दोनों घर में नहीं है और जब घर में है तो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे जो है कई बार अपने उम्र से ज्यादा उम्र के बच्चों के साथ, ज्यादा उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं और उनका बचपन समाप्त हो जाता है। फिर कई बार क्या होता है कि इसके चलते हुए अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं, उनमें असंवेदनशीलता की भावना आ जाती है, वे बचपन से अवसादग्रस्त रहने लगते हैं, डर की भावना आ जाती है, और कुल मिलाकर इस तरह से राष्ट्र को एक स्वस्थ मनुष्य जो कि आज का बच्चा बड़ा होकर बनेगा वह नहीं मिल पाता है।
1: लोग अवसादित हो जाते हैं और परिवार का विकास अवरुद्ध हो जाता है, परिवार का विकास वहीं का वहीं रह जाता है। इस समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए निर्मल जी? कैसे एक सामंजस्य स्थापित किया जाए, कैसे एक दूसरे के भावनाओं को कद्र किया जाए और कैसे बच्चों में एक संस्कार के बीज हम डालें?
0: देखिए हम उस देश के निवासी हैं जहां पर कि हमारे पौराणिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि भगवान राम अपनी पत्नी का हरण को से निकालने के लिए समुद्र पार लंका चले गए थे। आज हम अपनी पत्नी को समझ नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें थोड़ा पीछे मुड़ना होगा, और जैसा कि हम कहे, आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप यह जाने कि जब आपकी रफ्तार बहुत तेज होगी तो आपके जूते घिसेंगे, और यह जूता घिसना कहने का मतलब यह है कि आपके पारिवारिक मूल्यों का ह्रास होगा। तो हम अपनी विकास की रफ्तार में इतनी तेजी से ना दौड़े कि हम अपने पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ दें, बल्कि अपने पारिवारिक मूल्यों के साथ हम अपना विकास करते चलें, और जो हमारा संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, उसे यथासंभव लेते हुए हम आगे बढ़े, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके।
1: जी, हमारे कहावत भी है वसुधैव कुटुंबकम, यदि इस अवधारणा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे संस्कारों के साथ यदि हम एक जीवन यापन करते हैं और थोड़ा सा हम यदि विराम देते हैं अपनी रफ्तार भरी जिंदगी में, तो फिर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी।
0: विराम तो बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन है क्या, हम अंधे दौड़ में इस तरह से पागल ना हो जाएं कि हम अपने पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ते चले जाएं। और दुनिया को तो हम कुटुंब बाद में बनाएं, पहले अपने कुटुंब को ही अपने साथ लेकर विकास के लिए चले। अगर मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे, हमारा इनकम हो गया है और बगल में हमारा भाई इतना नहीं कमा पा रहा है कि उसके घर का चूल्हा जल रहा है, तो क्या ये विकास है मेरे लिए? यह मेरे लिए विकास नहीं है, बल्कि हम दोनों भाई अगर एक साथ विकास करते चले जाएं तो वही विकास है। तो जब हम भाई के साथ विकास करेंगे, जब अपने बहन के साथ विकास करेंगे, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ विकास करेंगे, तभी हमारा विकास जो है अस्थाई और सतत माना जाएगा।
1: क्या कहेंगे आज के लोगों को, खासकर आज की युवा पीढ़ी को, आप क्या कहेंगे कि आप इस तरह की वातावरण यदि आपको दिखता है तो आपको थोड़ी सी अपने आप में विचार उत्पन्न करना पड़ेगा, आपको एक नए विचारों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, मन में संयम रखना पड़ेगा और हर व्यक्ति को समान रूप से आदर देना होगा?
0: मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि अगर पारिवारिक मूल्यों को बचाना है तो हमें और हमारे युवा पीढ़ी को सबसे पहले है कि अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, सहनशील बनना होगा। जब तक हम सहनशील नहीं बनेंगे तब तक हम पारिवारिक मूल्यों को नहीं बचा सकेंगे और हमारा समाज जो है बिखरता चला जाएगा।
1: पहले बहुत सारी सीख हमें घरों में मिल जाया करती थी, नानी दादी की कहानियाँ होती थी और उस कहानी के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते थे, वो अब लुप्त हो गई है।
0: तो यह तो तभी हो सकेगा जब हम अपने नानी दादी के साथ रहें।
1: तो सभी के साथ अच्छे पल गुजारने की कोशिश कीजिए, दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दादा दादी, मामा मामी, अपने सभी सगों संबंधियों के साथ। हम यदि अच्छे रिश्ते रखते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और वो दिन अब नहीं देखने को मिलते हैं जब छुट्टियां होती थी तो लोग अपने दादा और नानी के।

0: जाते थे।
1: देखिए मैं बहुत कुछ सीखते थे। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा अगर हम अपने सोशल मीडिया से बस दूर हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारा समाज ज्यादा स्टेबल होने की स्थिति में आ जाएगी
0: जी।
1: तो बस थोड़ा अपने मोबाइल और इंटरनेट को थोड़ा दूर रख दीजिए, आपका समाज और परिवार जो है तरक्की के रास्ते पर निकल पड़ेगा।
0: साथ बैठिए, साथ मिलिए, बातें कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक वक्त का खाना हम साथ खाएं, तो बहुत सारी गलतफहमियां खुद ब खुद ही दूर हो जाती है और फिर हम एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करते हैं। और जब स्वस्थ परिवार का हम निर्माण करते हैं तभी हमारा देश तरक्की के राह पर आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निर्मल कुमार भारती जी, अंडर सेक्रेटरी झालसा, आज आप इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: पारिवारिक विघटन और समाधान, इस विषय पर अभी आप संजीव कुमार लाल से अपर सचिव झालसा के श्री निर्मल कुमार भारती जी की बातचीत सुन रहे थे। श्रोताओं, कल्याणी कार्यक्रम में हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि यह कार्यक्रम आपके दिल तक पहुंचे और आप इसके जरिए अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। और फिलहाल इतनी बातें हो गई हैं तो एक खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिर आगे की बातें आपसे करेंगे।

0: श्रोताओं, गीत के बाद थोड़ी सी बातें हम आपसे और करना चाहेंगे। अक्सर आप और हम, प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी किसी बातों से कोई बात बिगड़ गई है, या किसी को ठेस पहुंची है, या किसी दिल को तकलीफ हुई है, या परिवार में कोई मनमुटाव आया है, तो कोशिश यह करनी चाहिए कि अगर हमारी बात से कुछ बिगड़ गया है तो उसे हम बना लें, सुधार लें। यह भी एक कला है और इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ इतना करना है कि हमें धैर्य, समझदारी और सही दृष्टिकोण को अपनाना होगा। बिगड़े हुए रिश्तों या परिस्थितियों को संभालने के लिए कूटनीति और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है, न कि गुस्से और जिद से। बिगड़ती बात को बनाने के लिए कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर जरूर करना चाहेंगे। सबसे जरूरी यह है कि अगर किसी के साथ हमारी बात बिगड़ गई है, या घर परिवार समाज में भी कहीं कोई बात बिगड़ रही है, तो सामने बैठकर बातें करें। सामने वाले की बात को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुने, ताकि मूल समस्या समझ में आ सके। कहते हैं ना कि अगर संयम से किसी भी बात को या किसी भी रिश्ते को समय दिया जाए या बातचीत किया जाए, तो कितने भी बिगड़े रिश्ते क्यों ना हो, हम सुधार सकते हैं। और एक जरूरी बात यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से बात बिगड़ गई है, तो जीवन में सकारात्मकता लाए। समस्या पर रोने धोने के बजाय, समस्या पर दुख मनाने के बजाय, कोशिश यह करनी चाहिए कि उस समस्या का समाधान हम किस तरह करें। अगर आप किसी खास परिस्थिति में बिगड़ी हुई बात को बनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है आप संवाद स्थापित करने। बातचीत करना पहला कदम होता है। संवाद स्थापित करने से ये होगा कि हमारे जो रिश्ते हैं, बिगड़ती हुई बात है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है ना कि समझदारी से अगर किसी बात को सुलझा लिया जाए तो वो समस्या बहुत आसान होती है। और बात छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाती है, तो इसके लिए बहुत कुछ ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बात जो हमारे जीवन में समस्या ला रही है, या किसी को हमारी बात से ठेस पहुंची है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे जाकर सॉरी बोले, माफी मांग ले। अगर हमारी गलती है तो माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, माफी मांग ले। साथ ही आप ये भी बताएं कि किन परिस्थितियों में आपने ये बातें उनसे कही है। प्रायः आज के दौर में जब लोग बिल्कुल भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कभी कभी बात बिगड़ जाती है। तो बोलने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल से परिवार, दोस्त, रिश्ते बनते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे किसी भी बात से किसी को ठेस ना पहुंचे, हमारे रिश्ते ना बिगड़े, हमारी बात ना बिगड़े। कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर दोनों ही गलत हैं, तो आपस में दोनों एक के साथ बैठकर बातें कर ले, समस्या बिल्कुल ही आसानी से निपट जाएगी। कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी, कोई कहीं तकलीफ नहीं होगी, और जो बिगड़ती हुई बात है ना, वो आसानी से बन जाएगी। तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सोचा है, आप उस मुकाम पर जरूर पहुंचे। कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल्याणी के इस अंक से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रही संजीव कुमार लाल की।
1: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की थी। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें।

अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। संध्या 5 बजे और संध्या 6 बजे आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और संध्या 7 बजे का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का। पांच बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी। युवाणी में आज के लिए चर्चा का विषय है इतिहास में आज का दिन। आप सुनेंगे रोचक तथ्य, समसामयिकी और फिल्म संगीत। श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक संध्या 5:30 पर। कार्यक्रम में आज के लिए चर्चा का विषय है सामूहिक योग से सामाजिक समरसता का क्षमा करेंगे सामाजिक समरसता और उत्तम स्वास्थ्य। मेहनत की कमाई सुरक्षित पाई पाई, श्रमिक भाइयों के लिए आर्थिक योजना का महत्व। छोटे उद्योग बड़ी उड़ान, एमएसएमई सेक्टर में नवाचार और रोजगार। आप सुनेंगे वार्ता सशक्त श्रमिक समृद्ध एमएसएमई, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। वार्ताकार हैं किरण कुमारी सिन्हा। किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:02 पर। कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना महापात्रा जानकारी देंगी लेमन ग्रास की खेती और मूल्य संवर्धन के अवसर के संबंध में। 6:32 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया, कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी जल सुरक्षा भविष्य की रक्षा। सात बजकर 15 पर हो लोक गीत, कलाकार होंगे कृष्णा हुमरम और साथी। 7:20 से आप सुनेंगे क्रमशः नागपुरी, उरांव, मुंडारी, हो और संथाली भाषा में क्षेत्रीय समाचार। समाचार ध्वनि चित्र, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 7:45। फिल्म संगीत एक बार फिर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा में रात्रि 8 बजे। 8:30 पर सुर्खियों में, 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती आप सुना करते हैं आज के दिन यानी शनिवार को रात्रि 9:30 पर। 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म कर्ज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म शान में आशा भोसले और पंकज उधास को। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव वर्मन का।

दीवाने। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आगे सुनते हैं। फिल्म नसीब का ये गीत। गायक कलाकार है लता मंगेशकर, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत पैलाल का।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म डॉन में।

0: फिल्म डॉन के इस गीत के साथ ही आज का सांझ सरगम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति इन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत BLO को लौटा दें। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास अठावले आज मीडिया से संवाद करेंगे। उनकी प्रेस वार्ता शाम 5:45 बजे मोराबादी स्थित राजकीय अतिथि गृह में होगी। आज रांची एयरपोर्ट पर श्री अठावले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड के मजदूरों, महिलाओं, नौजवान, किसान और बेरोजगार के लिए वे काम करेंगे। पलामू व्यवहार न्यायालय परिसर में आज मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सुलह समझौते के आधार पर 55 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं 15,15,580 रुपए पर समझौता हुआ। लोक अदालत में उत्पाद विभाग को 2,57,750 रुपए और वन विभाग को 1,40,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। देवघर में कल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर आज खूंटी थाना के निकट

0: हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। और आज भी हम आप सबों के लिए लेकर आए ढेर सारी जानकारियां और साथ ही प्यारे प्यारे गीत भी। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे। और इस आधे घंटे के सफर में आप लोगों के साथ हूँ मैं उदय,
1: और मैं श्वेता।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला। दोस्तों, जब भी देश की आर्थिक प्रगति की बात होती है तो अक्सर बड़े उद्योग का नाम सामने आता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश की असली ताकत लाखों छोटे छोटे उद्योगों में छिपी है। यही उद्योग रोजगार पैदा करते हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं और देश के विकास को गति देते हैं।
1: बिल्कुल, MSME का अर्थ है ऐसे छोटे और मध्य व्यवसाय जो सीमित पूंजी से शुरू होकर बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार देते हैं, चाहे वह सिलाई कढ़ाई का काम हो, फर्नीचर का निर्माण, खाद प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, डेयरी, मोबाइल रिपेयरिंग या फिर नई तकनीक पर आधारित स्टार्टअप, ये सभी MSME के अंतर्गत आते हैं।
0: भारत में करोड़ों लोग प्रद्यात और अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि MSME को रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। खास बात यह है कि यह क्षेत्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से विकास का अवसर प्रदान करता है।
1: बिल्कुल, आज सरकार सभी MSME को बढ़ावा देने के लिए आसान ऋण, डिजिटल प्लेटफॉर्म कोर्स करा रहे हैं, विकास और कई योजनाओं के माध्यम से सहायता भी कर रहे हैं। इससे युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा मिल रही है।
0: MSME का सबसे बड़ा लाभ यह है कि कम निवेश में भी अच्छा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इससे स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलती है और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के को भी मजबूती मिलती है।
1: बिल्कुल, हालांकि इस क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। वित्त की उपलब्धताओं, आधुनिक तकनीक, बाजार तक पहुंच और बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसे समस्याओं का सामना कई उद्यमों का करना पड़ता है, लेकिन सही योजना, प्रशिक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोगों से इन चुनौतियों पर काबू भी पाया जा सकता है।
0: दोस्तों, यदि आपके पास कोई नया विचार है, कोई हुनर है या कुछ नया करने का जज्बा है तो MSME आपके सपनों को साकार करने का एक मजबूत माध्यम बन सकता है। एक छोटा सा व्यवसाय न केवल आपके परिवार को आर्थिक स्थिति बदल सकता है बल्कि कई लोगों की मदद भी कर सकता है।
1: बिल्कुल, आइए हम सभी स्थानीय उद्योगों को अपनाएं, छोटे उद्यमों का समर्थन करें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। इन सभी बातों के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गाने के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे युवानी कार्यक्रम में। अब हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और बातें करते हैं इतिहास में आज का दिन। अब हम जानेंगे इतिहास में आज के दिन, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। 27 जून 1838 को प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षावादी वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। उन्होंने वंदे मातरम की रचना की, जो आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी साहित्य की रचनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी।
1: बिल्कुल, अब विश्व इतिहास की ओर चलते हैं। 27 जून 1915 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सदस्य देशों से दक्षिण कोरिया की सहायता करने का आग्रह किया। यह निर्णय कोरिया युद्ध के शुरुआती दौर में लिया गया था और विश्व राजनीति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था।
0: 1977 में डिजिबॉटी ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से हर वर्ष 27 जून को वहां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और 1985 में रूट 66 डीकमिशनिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। कभी अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध सड़कों में गिने जाने वाले इस मार्ग ने परिवहन और पर्यटक के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: खेल जगत की बात करें तो 27 जून को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और खिलाड़ियों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह दिन खेल प्रेमियों के लिए भी खास माना जाता है।
1: बिल्कुल, इतिहास केवल बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन भी होता है।
0: जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें अपने पूर्वजों के संघर्ष और त्याग उपलब्धियों से सीखने का अवसर मिलता है।
1: बिल्कुल, इतिहासकार केवल पुरस्कारों से नहीं बल्कि सिक्कों, शिलालेखों, पुरातत्व अवशेषों और प्राचीन इमारतों से भी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त है। ये तो हुई हमारी इतिहास की बातें। इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे अद्भुत और अनोखे तथ्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारी दुनिया रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है।
1: बिल्कुल, पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या आकाशगंगा के तारों से अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन पेड़ हैं, जबकि हमारी आकाशगंगा में अनुमानित 100 से 400 अरब तारे हैं, यानी हमारे ग्रह पर पेड़ों की संख्या तारों से भी अधिक है।
0: जिराफ का जीभ लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। वह अपनी लंबी जीभ की मदद से ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को आसानी से खा सकता है। उसकी जीभ का रंग गहरा नीला या बैंगनी होता है, जो उसे तेज धूप से बचाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल, वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य और केले के डीएनए का एक हिस्सा होता है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों एक जैसे हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि सभी जीवों में कुछ मूलभूत जैविक तत्व समान होते हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ इतनी विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह हजारों प्रकार की समुद्री प्रजातियों का घर है और प्राकृतिक आश्रयों में से एक मानी जाती है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जीवित संरचना है।
1: बिल्कुल, तितलियां अपने पैरों से स्वाद पहचानती है। जी हाँ दोस्तों, तितलियों के स्वाद पहचानने वाले अंग उनके पैरों में होते हैं। वे जिस पत्ते पर बैठती है उसी समय यह पहचान लेती है कि वह आपके लिए उपयुक्त है, उनके लिए उपयुक्त है या नहीं।
0: हंसने से शरीर में तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यही कारण है कि डॉक्टर्स भी खुश रहने और खुलकर हंसने की सलाह देते हैं।
1: सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेती है।
0: दोस्तों, इसी जानकारियों के साथ अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे आपसे।

0: दोस्तों आज 27 जून को हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मना रहे हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर होने वाले कुल व्यवसायों में से 90% से अधिक व्यवसाय एमएसएमई ही हैं?
1: बिल्कुल, यदि हम भारत की बात करें तो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों ही हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत स्तर है। यह क्षेत्र देश के औद्योगिक उत्पादनों और सबसे अधिक रोजगार के जज्बों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
0: दोस्तों आइए इस अवसर पर हम उन सभी परिश्रमी उद्योगियों, कारीगरों और श्रमिकों के प्रयासों की सराहना करें जो देश को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार द्वारा और वित्तीय संस्थानों द्वारा छोटे छोटे उद्योगों को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हमें मिलकर इन योजनाओं का लाभ उठाना है और देश की प्रगति में अपना योगदान देना है। दोस्तों आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात नई जानकारी और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मैं श्वेता
0: और मैं उदय, हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

इस समय आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: करें योग, रहे निरोग। जी हाँ, अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी योग को अपने जीवन में उतारें और एक खुशहाल जिंदगी का स्वागत कीजिए। नमस्कार श्रमिक साथियों, कार्यक्रम श्रमिक लोग के गुलदस्ते को लेकर मैं आपके दोस्त मीनाक्षी हाजिर हूँ। और पता है, मेरे साथ एक प्यारी सी आवाज, और ये आवाज है आरती की। कहो आरती, कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीनाक्षी, और आपको और श्रमिक साथियों को प्यार भरा नमस्कार कहती हूँ। लेकिन ये बताइए मीनाक्षी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हमने 21 जून को मना लिया, लेकिन आप आज योग की बातें कर रही है, थोड़ा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: अरे आरती, इसमें समझने और समझाने की कोई बात ही नहीं है। श्रमिक साथियों, योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। योग सिर्फ एक दिन के लिए जरूरी नहीं आरती, बल्कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हर दिन हमें करना चाहिए।
1: बिल्कुल, ये आपने बात बहुत पते की है। और इसके साथ ही मीनाक्षी, मुझे लगता है योग सामूहिकता का भी प्रतीक है।
0: बिल्कुल,
1: ये सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है, क्योंकि जब हम एक साथ मिलकर योग करते हैं ना, तब न धर्म आड़े आता है, न जाति, न ही गरीबी और न ही अमीरी।
0: बिल्कुल,
1: योग का मतलब ही है जोड़ना।
0: बिल्कुल आरती, देखो मेरे साथ साथ अब तुम भी योग का ही गुणगान करने लगे ना। योग की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए श्रमिक साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था।
1: और श्रमिक साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व भर के 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उद्घोषित किया गया।
0: और आज विश्व के 200 से ज्यादा देश अब योग से जुड़ चुके हैं। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन के साथ लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, तो हर दिन कम से कम आधे घंटे भी योग जरूर करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि अक्सर होता है ना मीनाक्षी की हम योग करने की बात जब करते हैं तो सोचते कल से करेंगे, और कल हमारे जीवन में कभी नहीं आता।
0: आलस बहुत खराब होता है, ये टालने वाली जो प्रवृत्ति होती है ना,
1: और हम लंबी लंबी कतार लेके बैठ जाते हैं डॉक्टर।

0: के पास, तो ये बिल्कुल गलत है।
1: मीनाक्षी,
0: योग जहाँ स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है ना, मुझे लगता है हमारे श्रमिक साथियों के लिए अपने कौशल का विकास करना भी बेहद जरूरी है।
1: समझ गई अब, मतलब स्वास्थ्य से सीधे कौशल विकास पर हमारे। जी हाँ श्रमिक साथियों, कौशल विकास का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी हुनर है उसे और तराशा जाए। आप जिस काम से जुड़े हैं उस काम के बारे में सभी तकनीकी जानकारी रखें, मशीनों की जानकारी रखें और अपने आप को बहुत कुशल बना लें।
0: बिल्कुल, बात आपने आज बहुत ही पते की बात करी, मैं देख रही हूं। जी हाँ श्रमिक साथियों, अगर आप अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो यकीन मानिए आप ज्यादा अच्छा काम करेंगे और आपके काम करने का जो है ना वो उसे पूरा सम्मान भी मिलेगा और आपको भी बहुत कम्फर्ट लगेगा। पता है मीनाक्षी, श्रमिकों के कौशल विकास के लिए युवाओं के जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी।
1: जी हाँ श्रमिक साथियों, स्किल इंडिया मिशन से जुड़कर देश के करोड़ों युवाओं ने कुशल कारीगर बनकर अपने जीवन को संवारने का काम किया है।
0: और हम आपको बताना चाहेंगे कि स्किल इंडिया मिशन के तहत ये जो ट्रेड में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है,
1: बिल्कुल,
0: और अगर आप भी युवा हैं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे साथियों कि स्किल इंडिया मिशन को से उनसे जरूर जुड़िए और अपने आप को जो मजदूर से है उसे कुशल कारीगर बनाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एक सम्मानजनक जीवन आप जिए। बिल्कुल आरती, फिर एक सुनहरा भविष्य आपका स्वागत करेगा। कुशल भारत, कौशल भारत।
0: बिल्कुल, और इस लंबी बातचीत और इस लंबे भाषण के बाद अगर हम स्वागत करें एक प्यारे से गीत का तो कैसा रहेगा।
1: अरे वाह, तुम्हारे स्नेह इरादे पर मेरी हमेशा हामी रहेगी, तो बिना देर के एक प्यारा सा गीत बजा ही दो ना।
0: चलो

0: वार्ती बस इसी तरह कार्यक्रम में तुम गीत संगीत का ध्यान रखा करो ताकि शाम थोड़ी सुरमई हो जाए। क्यों?
1: मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ मीनाक्षी, लेकिन इस गीत संगीत के बीच ना समय हमारे पास बहुत कम रहता, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि छोटे और मझोले उद्योग भारत के लाखों लोगों की लाइफ लाइन है
0: बिल्कुल,
1: और हमारे देश के औद्योगिक विकास की नींव भी है।
0: बिल्कुल श्रमिक साथियों, एमएसएमई सेक्टर सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व भर के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में आज के दिन यानी 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाने की घोषणा की और आज पूरी दुनिया छोटे और मध्यम उद्योग के महत्व को समझ रही है और इनके विकास में बहुत पूंजी लगा रही है और बहुत काम कर रही है।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, इस वर्ष एमएसएमई दिवस का जो थीम है ना वो एमएसएमई में नई तकनीक एआई संचालित तकनीक को शामिल करने की बात कर रहा है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं साथियों कि आने वाला समय नवाचार तकनीक और एआई का ही है।
0: बिल्कुल, एमएसएमई के महत्व औद्योगिक विकास के साथ ही राष्ट्र विकास में इसकी भूमिका पर विशेष जानकारियों को समेटे हमारे कार्यक्रम का अगला सेगमेंट है सशक्त श्रमिक समृद्ध एमएसएमई, और इस विषय पर अपनी बातों को हमारे साथ रख रही हैं किरण कुमारी सिन्हा।
2: मजबूत मजदूर ही मजबूत भारत की नींव होती है। चार श्रम संहिताओं के लागू होने से एमएसएमई के श्रमिकों को मिला है सम्मान, सुरक्षा और न्याय का भरोसा। सीखे हुनर, बनाए भविष्य, आत्मनिर्भर बने, सम्मान से जिए। भारत के पूर्ण विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो जीडीपी का लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन का 45% और कुल निर्यात का 45% से अधिक योगदान है। एमएसएमई का दुनिया भर में 90% कारोबार है और 60-70% का रोजगार है, जिसमें 50% जीडीपी में योगदान है। एमएसएमई हर जगह समाज के रीढ़ की तरह स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं और आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं। विशेष रूप से कामकाजी, गरीबों, महिलाओं और युवाओं की कमजोर स्थितियों में रहने वाले समूहों के बीच लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर बात करें भारत की, तो देश के विकास का एक प्रमुख स्तंभ है एमएसएमई। सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% और देश के निर्यात में लगभग 45% से अधिक का योगदान एमएसएमई का है। दुनिया भर में एमएसएमई के महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2017 में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस घोषित किया था। अब आइए बात करें कि एमएसएमई है क्या। एमएसएमई का शाब्दिक अर्थ है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। सभी छोटे, मध्यम और सूक्ष्म स्तर के व्यवसायों को संदर्भित करता है एमएसएमई। यह वर्गीकरण व्यवसाय, निवेश और कारोबार पर निर्भर करता है। सूक्ष्म उद्यम माइक्रो इंटरप्राइजेज में निवेश के लिए 1 करोड़ तक की लागत हो सकती है। एमएसएमई कारोबारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई तरह से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। लघु उद्योग क्षेत्र को देखते हुए सरकारी बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक भी यानी एनबीएफसी बैंक भी कम ब्याज की दर पर बिजनेस लोन प्रदान कर रही है, लेकिन इन सरकारी बिजनेस लोन का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। एमएसएमई उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के बाद भारत सरकार की तरफ से कर्ज और सब्सिडी की सुविधा भी दी जाती है। एमएसएमई के कारोबारियों को कम ब्याज पर लोन भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जीएसटी में छूट भी दी जाती है और इन्हें कई सारे टैक्स बेनिफिट भी है। इसके अलावा बिजली बिल में भी छूट दी जाती है। इसके बाद व्यापारी विदेशी एक्सपो में भाग ले सकते हैं। एमएसएमई से जुड़ने के बाद कई सरकारी स्कीम्स का फायदा भी मिल सकता है। साथ ही सरकारी टेंडर खरीदने में भी आसानी होती है। भारत सरकार के आधिकारिक उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है। सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कोई भी सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापारी के आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होती है। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन .government.in पर जाकर फ्री में करा सकते हैं। एमएसएमई सशक्त श्रमिक प्रगति की रीढ़ होती। मजदूरों और कामगारों का कौशल विकास और स्किल्ड वर्कफोर्स उत्पादन की गुणवत्ता और गति को बढ़ाता है। समृद्ध एमएसएमई भारत की आर्थिक विकास का इंजन है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और निर्यात के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। चार संहिताओं, लेबर कोड्स और आर्थिक योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ तक के लोन का प्रावधान के माध्यम से सरकार देश के कारीगरों को सशक्त और सुरक्षित कर रही है। इन योजनाओं और सुधारों से श्रमिकों व छोटे उद्यमियों को मिलने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार है। समय पर वेतन और सुरक्षा। नए लेबर कोड्स के तहत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारंटी, सुरक्षित कार्यस्थल और ओवरटाइम पर दुगना वेतन सुनिश्चित किया गया है। आर्थिक सहायता। कारीगरों को अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए 10,000 से 10 लाख तक का लोन, निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वोकल फॉर लोकल। स्थानीय कारीगरों को बाजार में मजबूत अवसर देने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को विशेष फंड और सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। घरेलू स्तर पर कच्चे माल और उत्पादों का निर्माण करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसकी भूमिका सबसे आगे है। कम पूंजी में भी दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करते हैं, जिससे गरीबी दूर होती है और आर्थिक संतुलन बना रहता है। न्यूनतम वेतन से लेकर समय पर भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा दी गई है। ये सुधार श्रमिकों को केंद्र में रखकर बनाए गए हैं, क्योंकि श्रमिक सशक्त होंगे तभी आत्मनिर्भर भारत सशक्त होगा। एमएसएमई ने श्रमिकों के लिए चार श्रम संहिताएं रखी हैं। एमएसएमई सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत होंगे। कवर्ड एम्प्लॉय की संख्या के आधार पर की गई है। सभी वर्कर के लिए न्यूनतम वेज की गारंटी है। टाइमली पेमेंट ऑफ वेज सुनिश्चित हुआ है। वर्कर्स को स्वच्छ कार्यस्थल, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर और पर्याप्त रोशनी में काम करने की सुविधा प्रदान की गई है। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर, डबल ओवर टाइम वेज और पेड लीव का प्रावधान एम्प्लॉयज की संख्या के आधार पर मिलती है। इसके तहत अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे हेल्प टू डोर फाउंडेशन, हर हाथ हुनर हर हाथ रोजगार। इस तरह के पूरे भारतवर्ष में स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की शुरुआत जो मेक इन फ्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग, नवाचार और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। इसी के फलस्वरूप आज भारत सशक्त और विकसित भारत बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी कहना है एमएसएमई के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देकर एवं आत्मनिर्भरता के संकल्प को अपनाकर ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। इसी तरह स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती, धूप बत्ती निर्माण, साबुन सर्फ निर्माण, अचार पापड़ चिप्स निर्माण, प्रिंटिंग मशीन प्रशिक्षण, दोना पत मशीन प्रशिक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए 20 सदस्यों का समूह बनाया जाता है, फिर काउंसलिंग के बाद भर्ती का प्रावधान है। उसके बाद 30 दिन के प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक भी इन्हें ऋण उपलब्ध कराती है। ट्रेनर को भी 4,500 का मानदेय रहता है। इस दिन की अवधि में उन्हें प्रशिक्षण पूरा करना होता है। महिला ई हार्ट के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सशक्त श्रमिक और समृद्ध एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। एमएसएमई के माध्यम से सरकार ने अनेक सुधार भी किए हैं, साथ ही सहायक सार्वजनिक स्वतंत्रता नीति सुधार, घरेलू विनिर्माण कंपनियों को बढ़ावा दे रही है ताकि विदेशी कंपनियों को देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करे, तभी भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मार्ग में गति मिलेगी।
1: सचमुच मीनाक्षी, किरण जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और हमारा जो राज्य झारखंड है ना, जहाँ मानव संसाधन ज्यादा है, खनिज पदार्थ बहुत आयात में है, और यहाँ हम पूंजी में छोटे उद्योग लगाना हमें लाभकारी होगा, और हमारी जो सरकार भी लघु उद्यमियों को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दे रही है। और मीनाक्षी, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, तो एमएसएमई इसके लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग है, जिससे कि वो उसमें आसानी से लोन मिल जाते हैं। आप अपना जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे सबमिट
0: जमा कर दीजिए, और जिला उद्योग केंद्र हर जगह, हर जिले में है, जिला उद्योग केंद्र है, आप वहाँ पर अपना जो भी आप जिस भी चीज का कारखाना लगाना चाहते हैं। और लेकिन मुझे लगता है आरती कि किसी भी चीज की फैक्ट्री लगाने के पहले या उद्योग स्थापित करने के पहले जो भी लोग हैं उनको पूरा मार्केट सर्वे जरूर करना चाहिए ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, अगर वो जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे, जो सामान बनाएंगे, वो कहाँ बेचेंगे, उसके लिए उनको लेबर कहाँ से मिलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। भले ही उद्योग छोटे होते हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट होते
1: हैं। और ये भी एक बात है कि अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप अपने हुनर को भी पहचान दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हमने देखा है कि अभी कुछ ही दिनों पहले देखा था कि वो मोटे अनाज को बहुत अच्छे से, जो रागी ज्वार बाजरा, इसको अच्छे से अपने घर में छोटी सी मशीन उन्होंने लगाया है और उसे पीस के एकदम सामने में पीस के दे रही है,
0: बिल्कुल फ्रेश।
1: हाँ। तो इससे क्या हुआ कि एक तो उनका भी उद्योग ये चल पड़ा है, और हमें भी एकदम फ्रेश चीजें मिल रही हैं,
0: और लेने वालों को भी संतुष्टि होती है कि जो चीज वो ले रहे हैं वो अच्छी है, शुद्ध है, जो कि बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपनी कला को भी आगे

0: बढ़ा लेते हैं ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: कढ़ाई है, बुनाई है, कुछ लोग बुटीक खोल लेते
1: हाँ,
0: हैं,
1: मोतियों का काम है, बांस का काम है,
0: बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, बहुत सारे हमारा माटी कला बोर्ड इसमें सहायता करता है, जो लोग मिट्टी की कलाकृतियां बनाना चाहते हैं जो कि आजकल फैशन में भी है, तो बहुत सारे ऐसे काम है श्रमिक साथियों जिसे आप लघु या मध्यम कुटीर उद्योगों के रूप में विकसित कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सी पूंजी और थोड़ी सी मेहनत से।
1: और ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश में नहीं विदेशों में इसकी बहुत ज्यादा मांग है,
0: बहुत ज्यादा,
1: तो साथियों आप इसे करें और शुरुआत तो करें तो फिर आगे भी होता चला जाएगा।
0: हाँ, दी भाई क्या बात है, आज तुम्हारे भाषण का सिलसिला थोड़ा ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, थोड़े शाम का भी ध्यान रखा करो, श्रमिक साथियों के मनोरंजन का ध्यान रखना भी हमारे लिए जरूरी होता है ना।
1: मैं समझ गई कि भाई अपने श्रमिक साथियों को गीत सुनवाना है, तो जल्दी से सुनते ये गीत।

0: मीनाक्षी, थोड़ा समय बचा, अगर आप कहें तो एक और सॉन्ग प्ले कर।
1: अरे नहीं नहीं आरती, इस समय मुझे अपने श्रमिक साथियों से एक जरूरी बात करनी है। वो ये है कि आप सभी आपके आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से जरूर जुड़िए श्रमिक साथी।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के लिए आपके पास है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि एक अंशदायी पेंशन स्कीम है और 18 से 40 वर्ष तक की आयु तक आपको कुछ पैसे जमा करने होते हैं। जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाती है ना, तो हर महीने आपको नई नई जो 3000 है
1: हर महीने
0: मिलते हैं।
1: 3000 कम से कम 3000 मिलेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे श्रमिक साथियों कि अटल पेंशन योजना है जिसमें कम प्रीमियम पर 1000 से लेकर 5000 तक का मासिक पेंशन का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी कई योजनाएं आपके लिए हमारी सरकार संचालित कर रही है।
0: बस हम आपसे यही कहना चाहें कि इन योजनाओं की जानकारी रखिए और इनसे जुड़िए और खुशहाल जिंदगी के साथ आगे बढ़िए।
1: बिल्कुल, और एक और बात हम कहना चाहते हैं कि हमसे जरूर मिलते रहिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, लेकिन आज यही दीजिए अपनी दोस्त मीनाक्षी
0: और आरती को इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: इस समय आप सुन रहे थे श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोग, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत बीएलओ को लौटा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा रांची के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई पहल की जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में कल से 3 दिनों तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्यभर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित है। इस दौरान 0 से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। रांची की विशेष पॉक्सो अदालत ने 2 नाबालिग मौसेरी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी सुशील उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला वर्ष 2024 में रांची के मांडर थाना क्षेत्र में हुई वारदात के मामले में सुनाया गया। और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला कार्यक्रम उप कारागार खूंटी में और दूसरा बाल देखरेख संस्थान सीसीआई हुटार में हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कार्यक्रम में किसान भाई बहन बनकर स्वागत है संध्या बहन
1: और मनीष भाई भट्ट से जोहार।
0: बता देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और प्रस्तुति है संजीव कुमार लालकर।
0: तो मनीष भाई पहले जानिला आज हमरे मन का जानकारी करब इकर बारे में है नी।
1: हाँ हाँ तो देखो भाई बहन मन आज कर कार्यक्रम में जे हमरे मन राउर मन ले के आई है उकर में सबसे पहले आज हमरे आधुनिक खेती कर बारे में चर्चा करब। उकर पाछे आज कर बात में हमरे बहुस्तरीय फल कर बागवानी कैसे कर सकीला इकर बारे में हमरे जानकारी एगो भेंटवार्ता सुनब। एकर पाछे एगो कृषि गीत कुरमाली में सुनब अजीत कुमार महतो और संगी मन कर गावल। तले नई उम्र कर नई फसल में आज हमरे सफल किसान दिलीप शर्मा से करल गोइठ के सुनब।
0: हाँ तो मनीष भाई आजकल तो खेती तो सालों भर होवेला है ने।
1: हाँ हाँ
0: तो इकर में अगर आधुनिक तरीका से खेती करल जाए तो बगरा लाभ भेटे किसान भाई बहन मन के है नी।
1: हाँ हाँ आधुनिक तरीका से खेती कर ले है का कि कम ठाव में कम कचिया में हमरे बगरा फसल उगाई सकीला।
0: हाँ,
1: और बढ़िया
0: हाँ।
1: से खेती बाड़ी कर सकीला। पानी हूँ कम लगेला आधुनिक तरीका से खेती कर ले पानी कम है तो
0: खाद
1: उकर में
0: बीज बढ़िया
1: हाँ
0: लेक है उपज बगरा हुई तो हमरे कर किसान भाई बहन मन कर आमदनी बगरा हुई है नी।
1: आमदनी बगरा हुई तो हमरे कर देश समृद्ध हुई हमरे कर
0: हाँ
1: किसान भाई बहन मन समृद्ध हो गए गांव घर समृद्ध हुई का।
0: हाँ सही कहा थी। तो आधुनिक खेती के अपनायक है नी।
1: हाँ हाँ
0: तो चलो अब कार्यक्रम कर और करीला आज की बात संगे है नी।
1: हाँ हाँ
0: जानकारी कर बहुस्तरीय फल बागवानी कर बारे में बतात हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार और इनकर से बतियाए हैं संजीव कुमार लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों अब जो समय आ रहा है वो है बहुस्तरीय फल बागवानी का। कौन कौन से बागवानी की आप फसल लगाएं और किस प्रकार हम इसकी देख रेख करें ये समय की मांग है आज की। तो कैसे हम बहुस्तरीय फल की बागवानी अपने खेतों में करें, बागवानी को किस प्रकार हम विस्तारित करें और समय इसका कौन सा रहेगा और कौन कौन सी बातों का हम इस पर ख्याल रखें, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। रविंद्र जी स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: रविंद्र जी सबसे पहले जानने की कोशिश करें हमारे किसान साथी जाने कि बहुस्तरीय फल बागवानी क्या है।
3: जी

0: अलग अलग ऊंचाई एवं प्रकृति वाले फलदार पौधों और अन्य सहायक फसलों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि उनमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसके लिए किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता, प्रतियोगिता नहीं होती, और उसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को अलग अलग समय पे पकने वाले फल की बिक्री करके अच्छी आमदनी सुनिश्चित करने का बहुत ही अच्छा मौका भी मिलता है।
1: जी, तो कौन कौन सी फल हम लगाएं इसमें? और बहुत सारी जमीन है, ढलुआ है, ऊंचाई वाली जमीनें हैं, समतल जमीनें हैं, इनका भी हम ख्याल रखें।
0: जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है हमारी फल बाग लगाने की, उसमें किसी एक ही फल को हम लगाते हैं। अब अगर हम इसमें आम का उदाहरण लेते हैं तो आम की जो बागवानी सामान्य रूप से की जाती है वो 10x10 मीटर पे की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि दो कतारों के बीच में, दो पौधों के बीच में बहुत ज़्यादा हमारा स्थान शेष बचा रहता है जिसमें खरपतवार उगती है और जिसका उपयोग समुचित तरीके से नहीं हो पाता है। परंतु यदि हम इसी 10x10 का जो हमारा स्पेस है, इसमें जो बीच का खाली स्थान बचा है, हम ऐसी किसी फसल को, जैसे अमरूद का उदाहरण लेते हैं, अमरूद हुआ या नींबू हुआ, अगर इसको हम शामिल करते हैं तो ये 5-6 मीटर की दूरी पे ही समायोजित किया जा सकता है। यानी आम के बीच में आपने अमरूद लगा दिया, अब इसके बीच में भी अगर हम देखते हैं तो फिर से पुनः 5 मीटर की हमारे पास जगह उपलब्ध होती है। तो हम किसी ऐसे पौधे का क्यों ना चुनाव करें जो कि इस जगह में भी व्यवस्थित तरीके से लग जाए। तो इसके लिए हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं पपीता को। अब इन तीनों को ही अगर हम समझते हैं तो अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए बागवानी कर रहे हैं तो आम में हमें 4वें वर्ष से फलन लेने के लिए कहा जाता है या वैज्ञानिक अनुशंसा है, ताकि पौधा अपना वृद्धि विकास सही तरीके से कर सके और फिर वो फलन में आए। अगर हम अमरूद की बात करते हैं तो 18 महीने यानी 1.5 साल बाद अच्छा फलन हमें उससे प्राप्त होने लगता है, और वही अगर हम पपीते की बात करते हैं तो उसी साल से हमें इसमें फलन प्राप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आम की एकल बागवानी की जाए और अगर हम बहुस्तरीय बागवानी इस तरीके से समायोजित करते हैं तो हमें एक ही क्षेत्रफल में हम 3 अपने फलों की बागवानी कर सकते हैं और पहले ही साल से हम उससे फलन प्राप्त करते हैं।
1: मतलब आपने आम भी लगा लिया, अमरूद भी लगा लिया, पपीता भी लगा लिया, एक साथ आप बहुत सारी फसलों को आप तैयार कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि आम को बनने में ज्यादातर वक्त लगता है। आपने बताया कि वैज्ञानिक अनुशंसा है 4 वर्ष, और अमरूद है, पपीता है, ये सब जल्दी तैयार हो जाती है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो एक साथ अपने बाग में बहुत सारी आप फसल को तैयार कर सकते हैं और आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी।
0: जी,
1: तो समय कौन सा रहता है ये सब की तैयारी का?
0: अभी का जो हमारा समय चल रहा है वो बहुत ही उपयुक्त समय होता है किसी भी नए बाग की तैयारी के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसमें एक फसल को ना लेते हुए विभिन्न फसलों को आप इसमें समायोजित कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आप इसके बीच में भी जो स्थान बचता है उसमें आप सब्जी की खेती भी कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में हमारे जो पौधे होते हैं वो उनके जो लंबाई होती है वो छोटी होती है, और इसमें प्रकाश जब तक हमारी भूमि तक पहुंचता रह रहा है तब तक हम कोई ना कोई फसल को उगा सकते हैं। जब हम इतनी सारी फसलों को इस प्रकार से समायोजित कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान देना है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक वर्षीय फसल को ले रहे हैं, जैसे आपने पपीता की बात की या आपका अमरूद हुआ या आपका आम हुआ, तो इसमें शुरुआत में पौधे छोटे होते हैं, उनमें उनकी जल मांग अधिक होती है, देखरेख की अधिक आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गड्ढे जो खोदने का समय है वो अभी का समय सबसे अच्छा है, सबसे उपयुक्त है। इसमें आप जो आम के पौधे हैं, अगर आप गुलाब खास हुआ, हिमसागर हुआ या मालदा हुआ, लंगड़ा हुआ, इस तरह की प्रजातियों का चयन करते हैं तो 3x3 फिट के गड्ढे की खुदाई करें और उसमें फिर आप खाद की और पोषक तत्वों की जो विभिन्न मात्रा होती है गोबर की खाद की, उसको डाल के आप गड्ढे को भरें और उसके बाद रोपाई करें। इसके साथ ही साथ जो अमरूद की बागवानी है उसमें आपको 2-2.5 फीट का गड्ढा खोदना है, पपीता जो है उसमें 2 फीट के गड्ढे की साइज पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप जब उसमें अभी के समय में लगाते हैं तो आपको आगे उससे अच्छी आमदनी सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। कुछ बातों का विशेष ध्यान दीजिए कि शुरुआत में हम जो भी अगर इसमें सब्जी फसल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पपीता लगाने के बाद भी बीच में 2 मीटर करीब जो स्थान है वो शेष बचता है, तो आपको ये करना चाहिए कि आप दलहनी फसल का चुनाव करें। जैसे अगर हम खरीफ मौसम की बात करें तो लोबिया जैसी दलहनी फसलों का आप चुनाव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ना सिर्फ इसकी जो अपनी क्षमता होती है भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की, इससे हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, बल्कि हमारी जो दीर्घकालीन फसलें हैं, जैसे मुख्य फसल के रूप में आम है, पूरक फसल के रूप में अमरूद है, और हमारी अंतर्वर्ती फसल के रूप में सब्जी और पपीते का हमने चयन किया है, तो इनकी वृद्धि और विकास में भी वो सहायता करेंगे।

0: इसको एक बोल सकते हैं डॉक्टर साहब समेकित,
1: जी आप कह सकते हैं, लेकिन जो कि इसमें हमारा जो विभिन्न तरह के पौधे हम लेते हैं अलग अलग ऊंचाइयों के, तो मुख्य रूप से चूंकि अलग अलग ऊंचाई के पौधे होते हैं इसलिए बहु स्तर इसको बोलते हैं, यानी एक से अधिक ऊंचाई या एक से अधिक स्तर के विभिन्न प्रकार के फलों को एक में समायोजित करना।
0: जी, क्योंकि आम की जो वो वृक्ष होती है वो काफी बड़ी होती है, पपीता की हाइट थोड़ी सी कम होती है, अमरूद उतनी ज्यादा बढ़ावार उसकी नहीं रहती है, ज्यादा बड़ा ज्यादा ऊंचा तक नहीं जाता है, और ऐसे में बहुस्तरीय आप फल बागवानी करते हैं तो एक साथ बहुत सारा आप कार्य कर पाते हैं और बगीचे का सीमांकन भी करवा लें।
1: जी बिल्कुल, बगीचे के लिए यहाँ आपको अपनी झारखंड राज्य में अगर हम बात करते हैं तो जानवरों से बहुत ज़्यादा क्षति होने की संभावना होती है, इसके लिए आप सबसे पहले गड्ढा खुदाई के पहले ही घेराबंदी करवा दें। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आप ये जो परंपरागत हमने एक फसलों का नाम लिया है आम के साथ ही साथ आप आम की जगह पर लीची का चुनाव कर सकते हैं, लीची भी उतनी ही दूरी पर लगेगी। अगर हम इसमें बात करते हैं पूरक फसल के रूप में तो लीची के साथ आप अमरूद के साथ ही साथ जो अंतर्वर्ती फसल है उसमें अदरक की खेती भी कर सकते हैं, हल्दी की खेती भी कर सकते हैं, ओल की खेती भी कर सकते हैं। बल्कि आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि जो हमारे पुराने बाग हैं उसमें अदरक, हल्दी, ओल, कच्चू जो बीज का स्थान बचा हुआ है पेड़ों के बीच में उसको बहुत अच्छी तरीके से इनकी खेती के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे फल हैं जैसे कटहल हुआ, बेल हुआ, चीकू हुआ, इन सब के हमारे विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा बहुत अच्छी प्रजातियां भी विकसित की गई हैं। मुख्य फसल के रूप में आप इनको ले सकते हैं, यानी जहां आप आम ले रहे हैं वहां चीकू, बेल या कटहल को लिया जा सकता है। जहां हमने उदाहरण दिया अमरूद का, वहां पे अमरूद, नींबू, शरीफा या मुनगा बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर ये पौधा है। इसके अलावा इनके बीच में जो स्थान बच रहा है उसमें अदरक, हल्दी, ओल जैसा हमने पहले बताया। तो इस प्रकार से आप अलग अलग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप या मार्केट को ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर कोई प्रसंस्करण इकाई है उस हिसाब से आप फलों का चुनाव करें, तो आप निश्चित तौर पर एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार विभिन्न जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करते हुए आप विभिन्न प्रकार के फलों की खेती कर सकते हैं।
0: मतलब एक समय में आप बहुत सारी फसलों की खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी, और नए वैज्ञानिक सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाते हैं और वैज्ञानिक सलाह आप लेते हैं तो आप बढ़िया तरीके से बागवानी का कार्य कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: एक समय सारी चीजें हो जा रही हैं आपकी।
1: इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उतने ही श्रम में अगर आप इस तरीके से सोचें कि आप इन सभी फसलों को अलग अलग क्षेत्र में उगा रहे हैं तो आपको उतना ही श्रम हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में करना पड़ेगा, अपने हर एक प्रक्षेत्र में, प्लॉट में करना पड़ेगा। लेकिन आपने इन्हीं सारी फसलों को एक साथ बिना इनकी जो दूरी तय दूरी है उससे छेड़छाड़ किए हुए, बिना इनकी वृद्धि और विकास से समझौता किए हुए, बिना इनकी उपज से समझौता किए हुए आपने इन सभी को समायोजित किया और इन सभी की ग्रोथ एक दूसरे को बिना किसी भी प्रकार से प्रभावित किए हुए बढ़ रही है और आपको अतिरिक्त आमदनी दे रही है उतने ही श्रम में।
0: जी, तो किसान साथियों, वैज्ञानिक सोच, नई तकनीक के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपकी पैदावार अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, बढ़वार उसकी अच्छी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी रांची, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुस्तरीय फल बागवानी कैसे करें इस पर आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो हमरे जानकारी कर ली बहुस्तरीय फल बागवानी के बारे में, बतात रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार और इनकर से बतियाल हैं संजीव कुमार लाल।
3: तो भाई बहन मान चलो आगे हमरे मन नवा उमर कर नाव फसल में आज एगो किसान दिलीप वर्मा से जे आम कर बागवानी करे ना करल गोइट के सुनीला, इनकर से गोठियाई हैं अरविंद कुमार मिश्र।
4: भाई बहन मन जोहार, देखो रोज दिना हमरे मन नवा नवा किसान भाई मन से भेंट करवाते रहिला। आज भी एक ठो अनुभवी किसान हैं और इनकर से हमरे मन बीच बीच में भेंट करते रहिला और इनकर अनुभव कर लाभ लेते रहिला। तो चलो इनकर से आज हमरे मन भेंट करब और इनकर जे खेती बाड़ी है ये का एखन करत हैं अपन खेती बाड़ी में, का नवा प्रयोग इनकर चलत है सेकर बारे में हमरे मन आज विस्तार से बातचीत करब। तो सबसे पहले हमरे मन अपन कार्यक्रम में इनकर स्वागत करी रहा। भाई जोहार।
5: जोहार।
4: रो नाम का होलक?

0: हमर नाम दिलीप कुमार शर्मा है, खूंटी जिला अंतर्गत बिकवादा ग्राम कर निवासी है।
1: बहुत बढ़िया शर्मा जी, रोरे खूंटी जिला कर रहे वाला ही। और देखो खूंटी जिला प्रकृति से भरल पूरल और खेती किसानी से भरल पूरल जिला है, वहाँ एक ले एक किसान है और जेकर में रोरे भी ही। तो सबसे पहले जाने खोजब की रोर पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो पाई रहे?
0: मैथमेटिक्स में ऑनर्स कई रही, ग्रेजुएशन कई रही।
1: बहुत बढ़िया,
0: सेंट जेवियर्स कॉलेज से।
1: अलबत अलबत बहुत बढ़िया, मतलब पढ़ाई लिखाई भी जबर उड़े कई रही। और एखन पढ़ाई लिखाई करके अब खेती बाड़ी कर?
0: हाँ, अब खेती बाड़ी कर रही, पिछले 20 साल से खेती बाड़ी में।
1: वाह, 20 साल का लंबा अनुभव रोड की खेती बाड़ी में हो चुकी है। तो जैसन कि रोरे बातचीत में बताली हमके कि रोरे नाना रकम कर खेती बाड़ी भी करीला, बागवानी भी करीला और जैविक खाद कर भी रोठीना पूरा व्यवस्था है नहीं?
0: हाँ, जैविक खेती होला, ऑर्गेनिक खेती कर रही, विशेष फोकस उकरे में है हमार।
1: हाँ, हाँ। तो इकर में कैसा लागत है जैविक खेती करके?
0: नहीं, जैविक खेती बहुत सुंदर चीज है, केमिकल खाए खाए के हमरे कर शरीर एकदम रोगग्रस्त हो जाते है। तो उकर जे बांचे के लिए बस एक उपाय है, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, और उखे हम अपनाए कर कोशिश कर रही भरपूर अपन तरफ से।
1: कितना साल से रोरे जैविक खेती कर थे?
0: जैविक खेती कर 5-7 साल शुरू करल हो गए, लेकिन अब विशेष समय दे थी और कुछ कुछ नया नया करते जा थी जैविक खेती में।
1: बहुत बढ़िया। तो रोरे अंतर देखा थी, जैसे रोरे तो आप 20 साल से खेती कर थी, तो रोर के पारंपरिक जो खेती रहे पहले से दादा पर्यावरण से जे रोरे देखते आवती से भी खेती रोरे देखा थी, और एखन जे रोरे नवा तकनीक अपनाए ले ही जैविक खेती, तो दोनों में फर्क देखा थी रोरे?
0: अब पहले खेती प्राकृतिक खेती जे रहे, जेके हमरे कर बाप दादा मन करत रहे, प्राकृतिक खेती रहे, और बीच में केमिकल कर काफी प्रयोग होय के लागलक, जेकर से धरती कर सेहत एकदम खराब होते गेलक, माने काफी शोषित कर देली हमरे केमिकल खाद डाल डाल के और धरती के कमजोर कर दे। उखे अब फिर से पुनर्जागरण करे कर वास्ते अब जैविक खेती मेरे विशेष फोकस है, गौ पालन कर रहे थे और गाय कर गोबर दूध तो मिला थे, गोबर और गौमूत्र का विशेष प्रयोग होते।
1: बहुत बढ़िया, इकर बारे में रोर से हम बात करब, लेकिन हम एखन खास रोर के हम आज आमंत्रित कर रही बागवानी वास्ते। रोरे अपन बागवानी भी हमके देखाली और नाना रकम कर गच्छ वृक्ष रोरे लगा ही, तो उकर बारे में जाने खोजब शर्मा जी की बागवानी में एखन रोठीना काका है, कौन कौन पौधा लगा ही एखन तक?
0: बागवानी का काम हम कम से कम 30 साल पहले शुरू कर रही।
1: अरे बाप रे, माने खेती बाड़ी से पहले?
0: पहले,
1: अच्छा।
0: 30 साल से बागवानी में जुड़ल है, आम गाछ विशेष करके, जखन कहीं आम कर उतना मन ही नहीं रहे, सेखन से हम आम गाछ लगाई, अभी तो काफी फल देते आम गाछ।
1: हाँ।
0: और बहुत अच्छा वैरायटी का आम सब है, मीठा भी है और पौष्टिक भी है, और
1: हाँ।
0: पूरा जैविक खाद के मिला थे।
1: तो ये बताओ कि कौन कौन किस्म का रोरे बागवानी कर रही आम कर?
0: लंगड़ा मालदा जो सफेदा का है ना वो है, हिमसागर है, आम्रपाली तो बहुत कम एक दो ठो गाछ है, ज्यादा करके अच्छा वेराइटी का आम है, किशन भोग करके आम है जे 1 kg तक कर एक ठो है।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, गच तो बहुत बड़का भेजा हो।
0: हाँ, गच काफी बड़ा हो जाए है और फल भी अच्छा देते हर साल, उनको थोड़ा सा सेवा सुश्रूषा हो तो फल ठीक देते।
1: तो कैसे रोरे उकर सेवा सुश्रूषा करीला गच है, तो लगातार उकर में देख रेख तो करते रहना है?
0: हाँ, देख रेख मन हो, बीच में एक आध बार उकर में केमिकल वाला दवा भी डाले पड़ जाए जरूरी, क्योंकि उकर कीड़ा मन जो है से बड़ा जिद्दी कीड़ा रहे ना, अष्टपर्ण वाला जो दवा बनैला उकर से मानक निक हो जाए।
1: हाँ।
0: तो एक आध बार केमिकल कर स्प्रे अखन अगस्त महीना में फल निकलल बादे,
1: अच्छा।
0: अगला साल कर फल लाने के वास्ते उके व्यवहार करे
1: पहले से तैयारी।
0: पहले करे का और कर में थोड़ा सा फिर कंपोस्ट खाद वगैरह वृक्ष कर 10 फीट का डायमीटर में दैल देखो ला,
1: पहले कोड़ा देवे।
0: हाँ, हाँ, कोड़ा करके गड्ढा बनाए के रिंग बनाए के गाछ से, और उकर में कंपोस्ट खाद डाल दिला, ताकि उके नया जड़ जब कट जाएला तो उकर से अच्छा नया जड़ निकले ला।
1: हाँ, हाँ।
0: और उकरे से
1: पौष्टिकता भी और सेहत बनल रहे,
0: सेहत बनल रहे ला।
1: तो लगभग एक ठो गच से रोर के कितना आमदनी हुई जात होवे, कितना फायदा रोर के हुई जाला? सर
0: गच में 5 क्विंटल तक फल आ जाएला।
1: अच्छा,
0: 5 क्विंटल तक फल आवत है, और देहात में तो इसे घर से आई के उके 35-35 रुपया केजी कर दर से
1: जमा में।
0: हाँ,
1: जमा
0: में सबके लिए।
1: और टोटल कितना गच है रोठीना आम कर?

0: आमके 30 गाछ है। आम्रपाली एगो ऐसन गाछ है जे हर साल कुछ न कुछ फरेला, ओकर विशेषता, लेकिन ओकर क्वालिटी बहुत अच्छा नखे, ओकर रेट उट बहुत सही नहीं मिलेला।
1: तो इस सालाना फल देवेला कि एक ठो गाछ है कि बारहमसिया भी सुनीला एक ठो आम आवेला?
0: बारहमसिया भी एक तरह का आम है जे एक एक गाछ हमर भी है।
1: अच्छा।
0: अभी मंजर उंजर आगवा थे कभी, और बीच में दो बार फल देला।
1: तो एखन मंजर आवत है तो फरी कहिए?
0: हाँ, तो बस फल छोटा छोटा लग चुकलक उकर में टिकोरा।
1: अच्छा।
0: तो लग गया, तो एखन के बाढ़े में 2 महीना लगी।
1: बहुत बढ़िया।
0: अभी आम उम खत्म हो जाए तब निकली।
1: अच्छा। और बागवानी में एकर अलावे और क्या है आम कर अलावे?
0: आम कर अलावे लीची लगा है, 2-4 पेड़, 6 पेड़ लीची है, काजू 2 गाछ है।
1: बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर।
0: चीकू लगाई थी, मैंने हर तरह का गाछ है, एक दो दो नारियल लागल है।
1: अच्छा।
0: तो सब लागल
1: आ, सब तैयार हो वाले?
0: हाँ, सब फल उल देते।
1: तो अभी लीची बेच ली?
0: हाँ, लीची बेच रही, लेकिन बहुत अच्छा रेट उट नहीं मिल लग लीची हमरे उके असल रखवाली करे बहुत अच्छा से नहीं पा रही।
1: अच्छा।
0: कलमी गाछ कर ये है कि वो बहुत बड़ा नहीं होला, मवेशी भी उके हर जा कर सके ना अगर उकर बाउंड्री न खेल।
1: अच्छा, इकर पौधा मन कहाँ से ले रही सरकार बटले कुछ मदद रोड मन के मिल रहे की?
0: नहीं, अभी तो सरकार पूरा फोकस कर रहे है बागवानी में, हर किसान के एक एक एकड़ में दे थे, लेकिन वो मन एक ठो गलती कर रहे थे कि बहुत घना गाछ लगाई देते।
1: अच्छा।
0: माने वो 15 फीट आसपास, लेकिन हमार अपन अनुभव कहला कि कम से कम 30 फीट दूरी लाइन से लाइन और एक गाछ का दूसर गाछ का होना चाहिए,
1: ताकि फैले के लिए बहुत ठाव मिले।
0: फैले और उसका पूरा धूप चारों तरफ से मिले उसमें। अभी तो हम देख रहे हैं हमारा करीब वही 20-22 फीट का दूरी पर लगल है, वो सब एक दूसर से सट गया।
1: अच्छा।
0: पूरा, और ऊपर से ही गैर फायदा है कि यहाँ का कीड़ा वहाँ, वहाँ का कीड़ा वहाँ, सब तरफ चल जाता है, तो उसमें
1: दूरी रही।
0: हाँ, दूरी रहना चाहिए, सूर्य का प्रकाश हर गाछ में पूरी तरह मिलना चाहिए, तब होने उकर सब मंजर और फल हर साल अच्छा
1: बढ़िया रही। एकदम बहुत सही कहले रोरे, ये सब तकनीक के जरूर किसान मन के अपनाए चाहिए और इकरे से किसान मन आगे बढ़वा। आम है चाहे लीची है, तो इकर हर साल देख रेख करते रहना बहुत जरूरी है नी?
0: हाँ, बीच में तो देखो पोषण नहीं दिले फिर फल कहाँ से आवी, फल आवी भी तो कमजोर हुई, छोटा हुई फल, और हर साल अगर पोषण मिलत है, आहार मिलत है, तो फिर फल का साइज भी अच्छा हुई, कलर भी अच्छा हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई।
1: बहुत बढ़िया। तो देखो शर्मा जी, एक धाव रोठीना हम जाए रही तो देख रहे कि रोरे केला कर भी बहुत बढ़िया रोठीना हम बागवानी देख रहे, तो केला एखन लागल है कि
0: नहीं? केला खत्म कर दे, 2 साल तक अच्छा फसल देलक।
1: अच्छा।
0: तीसरा साल थोड़ा सा साइज में छोटा हो गया तो के सब निकलाए दे।
1: अच्छा, बहुत किसान देखते खुट्टी आसपास कर में विदेशी आम कर भी अब पौधा लगाते हैं, तो रोठीना भी है क्या जिसे कर में मिया जाकी आम कर है, बहुत चर्चा एखन है ऊपर हुआ थे।
0: एक दो बगल बगल में लगा है, एक ठो हुटार में एक किसान है इलियास बारला करके, वो भी एक आध पौधा लगाए हैं, और तोरपा के नजदीक में भी एक तो किसान लगाए हैं वो सब, लेकिन सुने हैं जाके देखे नहीं है उसका कहाई है सो अभी तक।
1: अच्छा शर्मा जी, देखो हमरे मन ठीना समय तो बहुत कम है, रोर से हमरे मन बहुत सारा चीज जाने कर कोशिश करब, आगे फिर कभी रूर के बुलाब हमरे मन, तो अपन कार्यक्रम में रोर से विस्तृत जानकारी लेवब, रोर जे जैविक खेती रोरे करत थी उकर में का का नवा प्रयोग मन रोरे मन करत थी सेकर बारे में जानब। जाते जाते हमरे मन कर जे सुनुविया किसान है उनके का रोरे संदेश देवे खुजीला?
0: किसान के तो फसल कर साथ साथ बागवानी में भी ध्यान देखे, बागवानी में ध्यान देने से एक तो एक्स्ट्रा इनकम भी हुई और पर्यावरण कर रक्षा हुई, इसलिए हर किसान को कम से कम हर साल एक आध गाछ तैयार करे कर माने प्रण करे के चाहिए, ताकि बागवानी के साथे माने ऊपर से पर्यावरण भी अच्छा रही, हाँ, सुंदर रही और हमरे के शुद्ध हवा पानी सब मिलते रही।
1: सुपट कह ली। तो शर्मा जी रोरे अपन अनुभव के बता ली, बागवानी रोरे बहुत बढ़िया से करत थी, जैविक तरीका से रोरे खेती बाड़ी कर काम करत थी, अपन अनुभव के हमरे मन से बांट ली रोरे, इकर ले बहुत बहुत धन्यवाद, अपन इतना कीमती समय के दिली कर ले भी बहुत बहुत धन्यवाद, लगे तब जोहार।
0: जोहार।
2: तो ये रहे किसान भाई दिलीप शर्मा जे आम बागवानी कर बारे में बताले बतियात रहे अरविंद कुमार मिश्रा।
3: तो भाई बहन मन, हमरे मन के हूँ दिलीप शर्मा तेर, आम कर खेती बटे ध्यान देवे चाहिए और कचिया कमाए चाहिए।
2: सही कहा थे।
3: आम कर बागवानी करके हमरे अपन जीवन के समृद्ध कर सकीला और अपन दिनचर्या के हूँ बिजी रख सकीला।
2: हाँ सही कहती। अब चलो एगो कृषि गीत हमरे मन सुन लेला है नी, यह कुरमाली में अजित कुमार महतो और संगी मन कर गावल।
4: अरे दस गे हिते बंगो अरे दे

0: अजित कुमार महतो और संगी मनकर गावल ये कुरमाली कृषि गीत कर संगे है किसानवाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरा एला बताए देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।
2: इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी दुनिया।

0: एक दम फिर से सुनवैया भाई बहन मन कर कार्यक्रम में स्वागत है। संध्या बहन
1: और मनीष भाई भट्ट से जोहार।
0: तो भाई बताओ का हाल चाल है।
1: मोर हाल समाचार तो नगदे नगद है। रावरे बताओ रावर कर हाल समाचार कैसन है।
0: ओ कहब कि गर्मी से बेहाल भाई। मौसम तो बनायला पानी आवे कर लेकिन दो बूंद टपकाए के चल जायला।
1: तो देखो भाई बहन मन जे एखन बरखा पानी हुआ थे उखे बचाए बटे हूँ एखने ध्यान देवे के। काले की जे बरखा पानी होएला से बेरा हमरे ऐसने ध्यान नहीं देवेला और गर्मी में पानी ले तड़प चलीला।
0: सही
1: तो एखन पानी बटे पानी बचाए बटे ध्यान देव भले हमरे आपन कैल के हूँ सुरक्षित कर सकी।
0: हाँ एखने एखन बरसात शुरू होए के लायक है तो हमरे मन के पानी के जमा करे कर उपाय कर ले
1: उपाय करे के चाहिए। हाँ, हाँ। से हमरे मन पानी के बेसी जे सोखता मन है उसन उसन बनाई के चाहे जे छत में पानी है जे नीचे आवेला उके बचाई के पाइप से नीचे जमीन भीतर घुसाई के ढेर कने ऐसा उपाय करके हमरे पानी के बचाई सकेला।
0: हाँ, हाँ।
1: और जे नदी तालाब मन है वो मन कर पानी के हूँ मतलब गंदा नहीं करके हमरे मन अपन पानी कर बढ़िया एकदम फ्रेश पानी रख सकेला। काले कि जे पानी है वो कम पिए के लायक पानी हमरे कर धरती में कम है।
0: वो रिचार्ज हुई
1: हाँ,
0: अगर
1: हाँ।
0: हमरे बचाव तो और ये बचाल पानी हमरे मन के भविष्य में काम दे तो जितना जरूरत है उतने खर्चा करे है
1: एकदम। और एक से हमरे कर गांव घर हूँ सुंदर दिसी नदी तालाब पोखरा मन रही होले कितना बेस दिसेल का।
0: सही कहा थी। तो भाई अब कार्यक्रम के आगे बढ़ेला और करीला खोरठा लोकगीत सुनीला हमरे मन सोहित कुमार महतो और संगी मनकर गावल।
1: चलो तब सुन लेवीला।

0: नागपुरी लोकगीत सुन ली बसीर अंसारी और संगी मनकर गावल और मनीष भाई देखो एक संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरा है बताए देवीला कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर
1: तो एक संगे मनीष भाई
0: और संध्या बहन के विदा देव
1: जोहार।

इस समय आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करगेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ में युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया प्रशिक्षण। डिजिटल क्रिएटर्स से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने की अपील। राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाईचारगी के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, देशभक्ति और अमन का दिया संदेश। और राजधानी रांची सहित राज्यभर में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियोरोधी खुराक देने का है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का सपना आर्थिक न्याय, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक सशक्त भारत का निर्माण करना था। श्री अठावले आज रामगढ़ के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं को बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भारत के छात्र कई देशों में शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं
2: और शिक्षा में हमें बहुत बड़ी प्रगति हम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में अपने अनेक स्टूडेंट जाते हैं। मेरे मंत्रालय का सोशल जस्टिस का एक ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, उसमें 600-650 स्टूडेंट से स्टूडेंट के एप्लीकेशन मेरे पास आते हैं और अनेक स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए अमरीका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, अनेक देशों में वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं।
1: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि गैर भारतीय या नागरिकता त्याग चुके व्यक्ति एन्यूमरेशन फॉर्म बिना भरे तुरंत BLO को लौटा दें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्टेट लेवल क्रिएटर्स मीट 2026 में ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े 70 डिजिटल क्रिएटर्स को SIR का महत्व समझाते हुए सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंचाने को कहा, ताकि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम सूची से न छूटे और एक भी अप

0: 2026 तक हमारे बीएलओ हर घर में जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। इसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन भी रेशनलाइज कर रहे हैं, जिसमें कुछ पोलिंग स्टेशन के बढ़ने की संभावना है।
1: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड कंबाइंड प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 19 जुलाई की जगह 26 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा रांची के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई पहल की जा रही है।
2: इस नए जमाने में पुराने अपने विधियों के द्वारा पुराने हमारे उसमें हम अपने लोगों की जरूरत कैसे पूरा करें, बड़ी संख्या जनसंख्या है उसको कैसे हम इसको करें ताकि हम शुद्ध भी खाएं और हमारा पेट भी भर जाए सबका।
1: राजधानी रांची में मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदायों ने ताजिया और अलम का जुलूस निकाला, जिसमें मेन रोड सहित अन्य स्थानों से गमे हुसैन में हजारों अजादार शामिल हुए। जुलूस में लोगों ने मातम करते हुए इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की कुर्बानी को याद किया। वहीं एक ताजिया को फाइटर जेट के मॉडल में बनाकर उसमें सैनिक वेश में युवकों को बिठाकर देशभक्ति और अमन का संदेश दिया गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल से 3 दिनों तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य भर के 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य निर्धारित है। रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने बताया कि रांची में 5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने के लिए 3,893 बूथ बनाए गए हैं। श्री कुमार ने रांची सदर अस्पताल में 15 प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना करते हुए कहा कि लोगों को पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
3: मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि 2 साल के बाद हो रहा है जो पल्स पोलियो का कार्यक्रम है, 2 साल के गैप के बाद हो रहा है, क्योंकि अब उतनी जरूरत नहीं रही लेकिन अभी जरूरत महसूस की गई है कि नहीं 2 साल के बाद अभी होना जरूरी है, तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए सारे रथ रवाना किए गए।
1: देवघर में स्वास्थ्य निदेशक शशि प्रकाश झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो रोधी खुराक पिलाएं और अभियान को सफल बनाएं।
4: याद रखें कि 2011 से कोई मामला हमारे भारत में नहीं आया है पोलियो का, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कभी भी ये रिपीट ना हो, इसके लिए ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी बच्चों को दवा नहीं दी जाएगी, तो इतने मात्रा में जो दवा की व्यवस्था और पूरी सारी व्यवस्था की गई है बेकार हो जाएगी।
1: उधर पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 3,97,521 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य है। वहीं सरायकेला खरसावां जिले में 2.25 लाख से अधिक बच्चों को खुराक दी जाएगी। हजारीबाग जिले के बरकटा थाना की पुलिस ने एक होटल के पास अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। बरही CDPO राधा प्रेम किशोर ने बताया कि ट्रक से 935 कार्टन शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। पुलिस ट्रक चालक उत्तराखंड निवासी दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मौसम विभाग ने झारखंड में 30 जून से मॉनसून के दोबारा सक्रिय होने का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान 30 जून और 1 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने

0: विचार मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रामगढ़ में युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमंडलीय आयुक्तों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर दिया प्रशिक्षण। डिजिटल क्रिएटर्स से मतदाताओं तक जानकारी पहुंचाने की अपील। राजधानी रांची सहित राज्यभर में भाईचारगी के साथ निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, देशभक्ति और अमन का दिया संदेश। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में कल से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। 61 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का है लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: भारत से बाहर रहकर धनबाद समेत पूरे राज्य में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के गिरोह के खिलाफ जिले की पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है। बीते गुरुवार को पुलिस ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र से गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद रिजवान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। धनबाद के ग्रामीण एसपी मोहम्मद सियाकूब ने बताया कि आने वाले दिनों में रेलवे टेंडर से जुड़े ठेकेदारों को प्रिंस खान गिरोह के नाम पर डराकर रंगदारी वसूलने की योजना बनाई जा रही थी।
2: पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच गए हैं, पहुंच के समय पर घेराबंदी करके वहां विधिवत प्रॉपर तरीके से रेड किया गया है। उस रेड में हमको दो पिस्टल और 33 राउंड्स लाइव राउंड्स गोली बरामद हुआ है और साथ में इनका जो यूज हुआ मोबाइल सैमसंग का मोबाइल वो भी मिला है। तो ये चार आइटम सीज करते हुए इनको विधिवत वहां पर अरेस्ट किए गए हैं और पूछताछ करने के क्रम में का जो सूचना है उसको ये एक्सेप्ट किए हैं, एक्सेप्ट करते हुए मतलब प्रतिकारोक्ति बयान दिए हैं और पूछताछ के क्रम में ये भी पता चला है। तो ये जो इकट्ठा कर रहे हैं ये जो आर्म्स वगैरह है ये अफजल अमन जो है प्रिंस खान तो संगठित अपराध गिरोह का एक सक्रिय सदस्य है, उनके इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं।
1: धनबाद में इन दिनों आस्था के पर्व भोक्ता पूजा के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे। कल निर्जला एकादशी के अवसर पर पूर्वी टुंडी प्रखंड के बामनाबाद गांव में 4 दिवसीय भोक्ता पूजा का समापन हुआ। हजारों लोग इस पूजा में जुटे और अपने शरीर में कील और कांटे आदि चुभोकर भगवान की आराधना करते हुए अपने संयम का परिचय दिया। मुख्य पुजारी मनोज बनर्जी ने बताया कि बाबा धर्मराज के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है।
3: पहले यहाँ मेला उला बहुत लगता था, राजा आके यहाँ मेला में बैठे मेला का सब परिचालना कराता था। देखिए ये हमारा दादू जी पूजा करके गया है, उसके बाद बाबू जी, अभी हाँ मनोज बनर्जी अभी पूजा कर रहा है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर धनबाद भाजपा जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम में बीते दिनों राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है।
4: जो जन सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत के संगम को हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल रहा, जहां 2014 के पहले भ्रष्टाचार चरम पे पॉलिसी पैरालिसिस थी, देश की जनता निराश थी कि इस देश में कुछ नहीं होना। ऐसे समय में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले को बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेकर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया में किसी के पास क्षमता है।
1: बहरहाल इन कार्यक्रमों के आयोजन से भाजपा मुख्य रूप से प्रबुद्ध नागरिकों और शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को पार्टी से गहरे तौर पर जोड़ने की कोशिश में है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिल सके। दीपक, आकाशवाणी।

0: समाचार धनबाद।
1: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.4 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीत। आज आप सुन सकेंगे हो लोकगीत। कलाकार हैं कृष्णा हेम्ब्रम और साथी।

0: इस समय आप सुन रहे थे कृष्णा हेमरम और साथियों से हो लोकगीत। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आप सुन सकेंगे क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय समाचार, जिसमें आप क्रमशः नागपुरी, कुरुख, मुंडारी, हो और संताली भाषा में समाचार सुनेंगे।
1: ई आकाशवाणी रांची अब रोरे मन राकेश कुमार मिश्रा से नागपुरी में हफ्तावार समाचार सुनो। नई दिल्ली का राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह कर दूसर चरण कर आयोजन करल गेलक, जेकर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 65 नामी हस्ती मन के पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर लें। ई मौका में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के मरणोपरांत लोक कार्य कर क्षेत्र में खास योगदान ले पद्म भूषण से सम्मानित करल गेलक। ई सर्वोच्च पुरस्कार के दिशोम गुरु कर पत्नी रूपी सोरेन राष्ट्रपति से झोंकलें। गृहमंत्री अमित शाह नशा कर खिलाफ एकजुट होई के लड़े के लिए आह्वान कर रहे हैं। श्री शाह ई बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर माने NCORD कर 10वां हाई लेवल मीटिंग के संबोधित करतखन कहलें।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची संसदीय क्षेत्र कर कांके में सड़क निर्माण कर काम कर शिलान्यास करने 4,54,00,000 रुपया कर लागत से पातगाई से बंटोली तक सड़क बनाल जाए। श्री सेठ कहलें कि इस सड़क क्षेत्र ले आविक जाए के लिए आसान बनाए के संगे संग विकास के नवा गति दे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची कर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कर 46वां स्थापना दिवस समारोह के संबोधित करत खन कहलें कि विश्वविद्यालय झारखंड कर किसान मनक आस और ग्रामीण विकास कर एक ठो महत्वपूर्ण केंद्र है के। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 जून के रांची कर प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर जमा 262 पद मन में नवा बहाल भेल अभ्यर्थी मन के नियुक्ति चिट्ठी बांटलें। समारोह के संबोधित करत खन मुख्यमंत्री कहलें कि ई जरूरी कदम से राज्य कर चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था के बड़ मजबूती मिली। राज्य सरकार हर महीना देवे वाला कलाकार पेंशन योजना के मंजूरी दे दे है, जेकर तहत लायक कलाकार मन से आवेदन मांगल जाए। ई योजना कर तहत राज्य कर बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार और 100 दिनक लिए दिव्यांग कलाकार मन के 4,000 रुपया हर महीना सम्मान राशि सोझा उमन कर बैंक खाता में भेजल जाए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी के देवघर से जोड़े कर प्रस्ताव के सैद्धांतिक मंजूरी दे दे है। दिसंबर तक ये 3 शहर मन ले देवघर से सोझा उड़ान शुरू भई। रांची कर शौर्य सभागार में नशीला चीज मन कर गलत उपयोग कर खिलाफ चलाल गेल 15 दिन कर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान कर समाप्त भेलक। ई मौका में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कहलें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर अगुवाई में राज्य सरकार नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड का निर्माण ले संकल्पित है। एडमिशन और टेंडर घोटाला में CID का टीम बटले पूछताछ करल जाए के बाद रिम्स कर निदेशक डॉक्टर राजकुमार इस्तीफा दे दे हैं। रिम्स कर सर्जरी विभाग कर सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा के अगला आदेश तक कार्यकारी निदेशक कर अतिरिक्त प्रभार सौंपल जाए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर तहत स्वास्थ्य सेवा मन में बेस प्रदर्शन करेले झारखंड के 2 ठो श्रेणी में नामी स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करल जाए है। पहला पुरस्कार जच्चा बच्चा का डिजिटल देख रेख कर मदद से रेफरल दर में 50% बढ़ती पक्का करेले मिल है और दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य जागरूकता गाड़ी मनकर जरिए जन जागरूकता और ट्रेनिंग कार्यक्रम मनकर सफल संचालन ले देवल गेलक। दुमका कर प्रसिद्ध पर्यटन ठाव मसान जोड़कर नामी इको कॉटेज प्रोजेक्ट के ई बरिस कर नामी नेशनल स्कॉच अवार्ड से सम्मानित करल गेल है। दुमका कर बुवन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक नई दिल्ली में आयोजित एक ठो समारोह में ई राष्ट्रीय पुरस्कार के झोंकलें। राजधानी रांची कर दिल्ली पब्लिक स्कूल कर कॉमर्स स्ट्रीम कर छात्रा ओनी केजरीवाल CBSE 12वीं कर परीक्षा में 500 में गोटा 500 अंक पाए के नेशनल लेवल में पहला ठाव हासिल कर रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी कर UGC नेट June 2026 परीक्षा 22 जून से शुरू भेजा है। ई राष्ट्रीय स्तर कर पात्रता परीक्षा CBT मोड में ई महीना कर 30 तारीख तक रोज 2 पाली में लेवल जाए। जैक शैक्षणिक प्रमाण पत्र मन में गलती कर सुधार ले, आवेदन कर आखिरी तारीख बढ़ाए के 30 सितंबर 2026 कर दे। पहले इकर आखिरी तारीख 30 जून 2026 तक रहे। खूंटी जिला से पुलिस एगो अभियान बेरा नक्सली कमांडर संगे 7 अपराधी मन के गिरफ्तार कर है। जिला कर पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग बता लें कि इलाका में सर्च अभियान जारी है। 12वां रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड कर खिलाड़ी मन गजब कर प्रदर्शन कर 18 पदक जीतना, इकर में 4 स्वर्ण 5 रजत और 9 कांस्य पदक है। हॉकी इंडिया आवे वाला यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप पर राष्ट्रीय कोचिंग शिविर ले खिलाड़ी मन लिस्ट जारी कर दे है। झारखंड कर 5 बेटी मन पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी, नीलम टोपनो और खिली कुमारी के महिला वर्ग में ट्रेनिंग ले आमंत्रित करल जाया है। इकर संगे आकाशवाणी रांची से नागपुरी में हफ्तवार समाचार सिरालक जोहार।
3: ईद आकाशवाणी रांची ही के अक्कू निम निर्मलक खलखोती कुरुक नु हफ्ता खबर में ना। नई दिल्ली तर राष्ट्रपति भवन नु नागरिक अलंकरण समारोह ही दूसरा चरण आयोजित मंजा। ई चड्डे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 65 विशिष्ट हस्तिर गे पद्म पुरस्कार ते सम्मानित नंजा। ई बेड़ा मैया दिशुम गुरु शिबु सोरेनस ही मुजरका होखा द नलक ही पहटा नो विशिष्ट योगदान गे पद्म भूषण ते सम्मानित नंतारा केरा। इस सर्वोच्च पुरस्कार दिशुम गुरु ही मुक्कारु रूपी सोरेन गे राष्ट्रपति ते होचर। गृह मंत्री अमित शाह नशा ही बिरदो ओन जुट मनर लड़ना ही आह्वान नंजकस रस। सर शाह ई कथा नई दिल्ली नु नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD ही 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक नु संबोधित नंते हुए नंजस।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
3: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठस रांची संसदीय पट्टा तक कांके नु डहरे कमना नलक ही ओरे नंजस। 4,54,00,000 ढीबा ही लागत ते पतगाई ती बंटोली गुटी डहरे कमतार ओकालो। से सेठस बाचस का ई डहरे पट्टा ता काना बरना नु द कमना संगम विकासन पुना गति चिओ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवारेस रांची ता बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ही 46वां स्थापना दिवस समारोहन संबोधित नंते बाचस का विश्वविद्यालय झारखंड तक किसानेर ही आशा और पद्दा विकास ही महत्वपूर्ण केंद्र ही के। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 जून उल्ला रांची तक प्रोजेक्ट भवन सभागार नु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तक जमा 262 पद नु नवनियुक्त अभ्यर्थी गे नियुक्ति अथवा चिच्चस। समारोहन संबोधित नंतम मुख्यमंत्री बाचस का इस महत्वपूर्ण कदम ते राज्य तक चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था गे कोहा मजबूत हखरो। राज्य सरकार मासिक से निवृत्तिका यानी कलाकार पेंशन योजना मंजूरी ची चिचकी रही। एका तू पात्र कलाकारेर ती आवेदन नेतार की रही। ई योजना ही चड्डे राज्य ता बुजुर्ग गंभीर रूपे ती बीमार और स्थायी रूपे ती दिव्यांग कलाकारेर गे 4,000 ढीबा हुर्मी महीना सम्मान राशि सीधा आर ही बैंक खाता नु तैतार ओकालो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय अहमदाबाद हैदराबाद और गुवाहाटी देवघर ती जोड़ना ही प्रस्तावन सैद्धांतिक मंजूरी ची चिचकी रही। दिसंबर गुटी इबड़ा तीनों शहर गे देवघर ती सीधा उड़ान ओरे मनो। रांची ता शौर्य सभागर नु मादक पदार्थ ही दुरुपयोग ही बिरदो चलाबाज का आबो 15 दिवसीय राज्य व्यापी जागरूक अभियान ही समापन मंजा। ई बेड़ा मैया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बाचस का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनस ही नेतृत्व नु राज्य सरकार नशा मुक्त और स्वास्थ्य झारखंड कम आगे प्रतिबद्ध रही। एडमिशन और टेंडर घोटाला नु CID ही टीम तरती पूछताछ ही होखा। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार इस्तीफा चिचिचकस रस। रिम्स त सर्जरी विभाग ही वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा सिंबर उ आदेश गुटी कार्यकारी निदेशक ही अतिरिक्त प्रभार चिचकर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ही चड्डे स्वास्थ्य सेवा नु बेहतर प्रदर्शन गे झारखंड 2 श्रेणी नु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड ती सम्मानित नंतारका किरका रही। पहला पुरस्कार जच्चा बच्चा ही डिजिटल निगरानी ही माध्यम ती रेफरल दर नु 50% बढ़ावाना सुनिश्चित नाना गे हखिरकी रही। एका से का दूसरा पुरस्कार स्वास्थ्य जागरूकता वाहन ही चड्डे जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम ही सफल संचालन के चितारा किरा। दुमका ता प्रसिद्ध पर्यटन अड्डा मसान जोर ता चर्चित इको कॉटेज प्रोजेक्टन ई बरिस प्रतिष्ठित नेशनल स्कोट अवार्ड ती सम्मानित नंतारा किरा। दुमका ता वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक नई दिल्ली नु मंच का उन्टा समारोह नु ई राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण नंजस। राजधानी रांची ता दिल्ली पब्लिक स्कूल ही कॉमर्स स्ट्रीम ता छात्रा आवनी केजरीवाल CBSE कक्षा 12वीं ही परीक्षा नु 500 अंक उन्द्रार की राष्ट्रीय स्तर नु शीर्ष अड्डा उचकिरी। आकाशवाणी रांची तिकुड़ुक नु हफ्ता खबर मुंजरा
4: निया आकाशवाणी रांची तना होड़ो जगत ते बीदा ठाउरी रिया खबर को लोते आई बसंती मुंडा। नई दिल्ली रिया राष्ट्रपति भवन रे नागरिक अलंकरण नेग रिया दूसरा चरण हो बजना। नई दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तकिन आपी हिसी मोड़े गुणान होड़ो को पद्म माइन पोटम तेकिन माइन केट को नई दिल्ली दिसुम गुरु शिबु सोरेन तकिन के बोंगा बाईजान तायम ते होड़ो को तलारे बुगिन कामी ओड़ो गोनुंगान देंगा ओम मेन ते पद्म भूषण तेकिन माइन गरंग जना। नया पद्म पोटोम दिसुम गुरु तकिना ओड़ा होड़ो रूपी सोरेन तकिन राष्ट्रपति तकिना ती तेकिन तेला केदा। गृहमंत्री अमित शाह तकिन बुलेन रिया खिलाफ मिदेन क्याते ओपुता रिया अकिन आड़ंकाजी केदा। श्री शाह तकिन नया जगह नई दिल्ली रे नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD रिया गेलिया मारंगान दुनुब रेकिन जगरतन तयकेना।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
4: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तकिन रांची संसदीय क्षेत्र रेया कांके रे सांडका बाबाई कामीरा एटे दिरिकिन दोड़ुम केदा। उपुन करोड़ बार हिसी गे लुपुन लाख टका रेया खर्चा ते पातगाई तेयात बंटोली सांते सांडका रा बाबाई हो बावा। श्री सेठ तकिन किन काजी केदा ची नया सांडक क्षेत्र सेनो हिजू को राबालान बाइलो ते उबारेन तेया मेद नवा चांडांगे नामेया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तकिन रांची रे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रेया तीनिगु बार हिसी तुरिसिरमा होबाजान रेया जामा नेगरे किन जगार किदाची विश्वविद्यालय झारखंड रे चासातन कुआ भरसा ओड़ो हाथु दिसुम उबार राजारुरन टायातना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तकिन 24 जून हुलग रांची रेया प्रोजेक्ट भवन सभागार रे स्वास्थ्य ओड़ो परिवार कल्याण विभाग रेन सामजमा बारसाय आपी हिसी बारिया पद को मेनते नवाते सलाकन अभ्यर्थी को के नियुक्ति सकम किन उमाकेत कुआ जामान नेगरे जगर तांडो मुख्यमंत्री तकिन किन काजी के दाची गोनुंगान चांडांग ते राइज रे रानुन ते या जुगुतु को ओड़ो सोबोसीता को पूरा आगे पोक्तो बायुआ। राज्य सरकार मासिक निवृत्तिका माने कलाकार पेंशनी योजना के मंजूरी ओमतिदा। नया रे नामदारी कलाकार कुआ ते दरखास्त आसिया कना। नया योजना सागते राइज रे बुजुर्ग को रोग को ते सदावतान को और दिव्यांग कलाकार को मेनते उपुन 1000 टका चांडू उपरते माइन टका सोज अकुआ बैंक खाता रे कुलोआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय अहमदाबाद हैदराबाद और गुवाहाटी के देवघर लो जोड़े काजी जोगाओ के कागज रे मंजूरी ओम केदा। दिसंबर लो ने आपिया शहर को मेनते देवघर ते सोज जाज आपिर एटेगुआ। रांची रिया सोर सभागार रे बुलेन जिनिस कोरा एदकान कामी रे आगू रे विरुद्ध सेसेंतान गेलुपुन मारे गोटा राइज रे सेसेंतान एनेयन अभियान रे चनबा हो बजना। नई दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी तकिन किन काजी किदा ची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तकिना अनायार ते राज्य सरकार बुनुल चाबा और स्वास्थ्य झारखंड बाई मेनते केटे मोने मेनई। एडमिशन और टेंडर घोटाला रे सीआईडी रेन टीम को तेकुली कुपुली तायम ते रिम्स रेन डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार इस्तिपाए ओमकेदा रिम्स रेन सर्जरी विभाग रेन मारांग प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा तकिन के आयर रा आदेश सानते कामी चलाओ डायरेक्टर अतिरिक्त प्रभार को उमतिया राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी रिया एजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 जून तेत एटेकना ने राष्ट्रीय स्तर रिया पात्रता परीक्षा कंप्यूटर ते होबा टेस्ट सीबीटी मोड रे नया चांडू रिया 30 तारीख की सानते जनाओ बार पाली रे होबावा झारखंड अधिविद परिषद जेक सागत ते शैक्षणिक प्रमाण पत्र को रे गलती सुधराव में ते दरखास्त रा टुंडू तारीख की आयर किया 33 सितंबर 2026 सानते रिकतेदा सीधा निया मेंते टुंडू तारीख की 30 जून 2026 तारीख ना हॉकी इंडिया आगामी यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप रे राष्ट्रीय कोचिंग शिविर मेंते इनु हरिय को सूची उदुप केदा झारखंड रेन मोड़िया होनकुड़ी पुष्पा मांझी संदीपा कुमारी श्रुति कुमारी नीलम तोपनो ओड़ो खिली कुमारी तक प्रशिक्षण मेंते को सलाह करना कोड़ा होन गोट रे प्रशिक्षण मेंते आशीष तानी पूर्ति गा सा नाला होबा करना नीलोते के मीदा ठहरी रे खबर को चाबा जाना जोर
5: निया आकाशवाणी रांची तना नाम यहाँ ट्रेकोबर हो हयम तलाल सिंह बोयपाई तिकिंग सिविल मचाए थे वो आयुमिया नमा दिल्ली रे राष्ट्रपति भवन रे नागरिक अलंकार समारोह रिया दूसर चरण हो वाले ताइने नैन कुरुडू रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिकिंग ताड़ा तिड़ी ते पे हिसी मोणे माइनेन होड़ो कुआ पद्म पुरस्कार ते सम्मानित हो भजना नैन रसिक रे दिसुम गुरु शिव सोरेन तिकिंग जिनी जीवन रे माइनेन कामी को नाते गोना तायम रेयो पद्म भूषण तिकिंग सम्मानित जेने नेन माइनेन पुरस्कार दिसुम गुरु तिकिंग जीवन जोड़ी रूपी सोरेन तिकिंग राष्ट्रपति तड़ाए तिड़ी तिकिंग तिलाके ताहिने गृहमंत्री अमित शाह तिकिंग बुनुल को अकिला प्रे मिट गुटी केनते लड़ाई रिया एला धारा किंग हुलिये किडा हिरले शाह तिकिंग नेना नमा दिल्ली रे नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मेनकन NCORD रिया दसवें शीर्ष स्तरीय दुनु रेकिंग जोर जगार के तहिने
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
5: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तिकिंग रांची स्तरीय टाइट कांके सड़क बनाई पनाईटी रिया किंग उंकुड़ू के तहिने उपुन करोड़ बर हिस्से गेलपुन लाख टाका रिया दिंगते पतगई ते बंटोली जोकारे बयो रिया पोक्ता जना हिरले सेठ तिकिंग जगार किरा ची नेन सड़पते होड़को हुजु सेनोरे सुगड़ बयो लो बेरेट बिरेट रिया नामा होरा को तेरसना राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तिकिंग रांची रिया विश्व कृषि विश्वविद्यालय रे बरहिसी तुरुई दाणा रिया स्थापना दिवस समारोह रे जोहार जगरे लोक जगर किडा ची विश्वविद्यालय झारखंड रेन किसण को आसोरा आंडो हातु दिसुम विकास रिया माइनेन केंद्रा कुं मेनकेट ताइने मुणदुन हेमंत सोरेन तिकिंग 24 जून मुसिंग रांची रिया प्रोजेक्ट भवन सभागार रे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग रिया बर सो पे हिसी बर ये पद लगे नामा नियुक्ति पटुए को के नियुक्ति सकाम किंग संपाव केट को ताइने समारोह रे जवार जगरे लो मोड़ द्वंति किंग जगार किडा ची नेन माइनेन चांडांग ते राइज रिया चिकित्सा प्रबंधन आडो तुमुल व्यवस्था करे इटिंग मोजतो बाइने राज्य सरकार पाए मासिक निवृत्तिका मेनकन कलाकार पेंशन योजना रिया मंजूरी एम जना इना लगी इनुंग कुलायकार को आयते आवेदन सकम आसी किने नैन योजना लेखाते राज्य रेन बुढ़े बुढ़ी को मारंग हासु रोगा आंडो सदाए लगी लांगड़ा लुलयन कोलाय को मुतित चांडो उपुन 1000 टका माइन मान लेखाते सीधे आकुआ बैंक खातारे बेटन रिया किंग जगार केडा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय पायते अहमदाबाद हैदराबाद आंडो गुवाहाटी इमान को देवघर लो जोड़ाउन रिया प्रस्ताव रे मंजूरी एम जना आडो दिसंबर जोकारे नेन आपिये शहर को लागि देवगारे ते आपिर उंकुडु अयबिना रांची रिया सौरे सभागार रे बुनुल गिनिस कोयते बंचाओ विरुद्ध रे गेल मोणे मा जोंग सेसन लेन राइज गोटा जागरूकता अभियान रे अपनाईटी चबाजना नेन रसिकरे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी तिकिंग जगरकिडा चिमुण दुन हेमंत सोरेन तिकिंग अनायर रे राइज सरकार नशा मुक्त ओंडो स्वास्थ्य झारखंड बनाई लागि इटिंग म्यादी मिना किंगे एडमिशन और टेंडर घोटाला रे सीआईडी टीम को पाए ते कोनो जोगप तयम रिम्स गोमके डॉक्टर राजकुमार तिकिया इस्तीफा एम जना आडो रिम्स सर्जरी विभाग रे तहामा प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा के हुजु आंदेजोंग पनाईटी गोमके रिया जिमेकिंग संपाव जना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लेकाते स्वास्थ्य सेवा पनाईटी को रे बुगिन अनुदुप लगी झारखंड बार रकम ते माइनेन स्कॉच अवार्ड तिकिंग सम्मानित जने पहला पुरस्कार दो हन होपन को डिजिटल नेलन लेकाते रेफरल और दर रे बार ही सिगल प्रतिशत तिनरसा पोक्ता जन लगे ते नाम जना आंडो दूसर पुरस्कार दो स्वास्थ्य जागरूकता आंडो इन लेकाते जागरूकता नितिर पिंतिर ट्रेनिंग क्रूडरु को रिकेन लगे ते नामयन ताइने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी रिया यूजीसी नेट जून 2026 रिया परीक्षा 22 जून ते एयम जना नेना राष्ट्रीय स्तर रे होवन पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड लेकाते नेन चांडू रिया 30 तारीख जोकरे बर पाली रे दिमसी होवन तना झारखंड आदिवासी जेक पाए ते शैक्षणिक पत्रा कोरिया गलित सुधार लगे आवेदन रे अंतिम डेट 30 सितंबर 2026 जोका मिना नेला ओते आकाशवाणी रांची ते मियाट रे खबर चबाजना जोहार
6: नवा आकाशवाणी रांची का नानित अपे शकुंतला बेसरा से खोन हफ्ते के संथाली खबर पे अंजुमा नई दिल्ली रे राष्ट्रपति भवन रे नागरिक अलंकरण समारोह रिया दूसर धाव सपड़ा का नवा अक्तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो 65 विशिष्ट होड़ को पद्म पुरस्कार ते मानोत के कोय नवा अक्तो दिसम गुरु शिबू सोरेन दो बोंगाताला पोरे लोक कार्य रे भगी आर मारंग इनेम खातिर ते पद्म भूषण ते को मानोत के दिया नवा पुरस्कार दो दिसम गुरु रिन ओड़ा होड़ रूपी सोरेन राष्ट्रपति होते ते न्याम के आए गृह मंत्री अमित शाह दो निसे बाबत मित कते लड़े बाबत ते मेन के आ श्री शाह दो नवा कथा नई दिल्ली रिया नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर रे माने एनसीओआरडी रिया गेल अनांगन दुपुड़ रे रोड के आए
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए
6: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दो रांची संसदीय क्षेत्र रे सड़क बनाव लगी कमी उढ़ाव की आनारे 4,54,00,000 टका रे लागत ते पतगाई खोन बनटोली हबी सड़क बनाव रे श्री संजय सेठ लई के आजे नौ सड़क ते हिजुक कन होड़को को अलगा आ और विकास हुआ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दो रांची रे मेना बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रिया 46 थापन महा रे लई के दाय जे विश्वविद्यालय झारखंड रे चसी को आशा और ग्रामीण विकास रे मानोतान केंद्र कना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो 24 जून हेलो रांची प्रोजेक्ट भवन सभागार रे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रे 262 पद रे बाछो नकान को नियुक्त सका में एमा को हर मेन के आ ना पोनोत रे चिकित्सा प्रबंधक ढांचागत व्यवस्था नुआते केटेजो आ पोनोत सरकार दो मासिक निर्वृत्तिका कलाकार पेंशन मजदूरी मंजूरी एम के आ नवा लेकाते बुजुर्ग हाड़ा बुढ़ी होड़ रुआ कान होड़ आ दिव्यांग कलाकार को 3,000 टका कते चांदो पिछी आकुआ खाता रे को कूला रांची रिया सौर्य सभागार रे बबुल जिनिस को व्यवहार इदी कते चला कान गेलमोड़े महावान राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चबायना नवा अक्तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मेन केदा जे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अयुरते पोनत सरकार नशा मुक्त और स्वस्थ झारखंड बनाव रे कुरुमुटु मेनाया एडमिशन और टेंडर घोटाला रे सीआईडी टीम होते ते पूछताछ परे रिम्स निदेशक डॉक्टर राम कुमार दो इस्तीफा एम के आ रिम्स रिन सर्जरी विभाग रिन मारंग प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा दो अगला आदेश हबी कार्यकारी निदेशक रिया अतिरिक्त प्रभार को एम का दिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन होते ते स्वास्थ्य सेवा रे भगी उदु लगी ते झारखंड बरिया श्रेणी रे प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड ते को मानोत के दिया मीत दो जच्चा बच्चा को डिजिटल निगरानी दरायते रेफरल आर दर रे 50% वृद्धि ठोको लगी और दूसर सिर्फ दो स्वस्थ जागरूकता वाहन होते ते जन जागरूकता और प्रशिक्षण कमी होरा को भगीते चला लगी को चला दिया राजधानी रांची रिया दिल्ली पब्लिक स्कूल रिन कॉमर्स रिन पठुआ अवनी केजरीवाल दो सीबीएसई 12 चनाच परीक्षा रे 500 खना 500 नंबर रे न्याम के ते राष्ट्रीय स्तर रे चेतन ठावे हामेट के आ राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी रिया यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 जून खोन इहोपेना नोआ दो राष्ट्रीय स्तर रिया पत्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड रे नोआ चांदो 30 तारीख हबी दिनम गे बार पहिल रे हुयुआ जेक तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र रे सुधर लगित आवेदन रिया मुचद महित बढ़ाव कते 30 सितंबर 2026 लैके आ लहा दो नोआ दो 30 जून मुचद हबी ठोको लेन ताहेकना खूंटी टोठा खोन पुलिस तो मित अभियान रे नक्सली कमांडर सांते ए अपराधी को साप अका कोआ जिला रिन पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग लय केदा जे आड़े पासे रे सर्च अभियान नितो हो हुयु कान गया बारावी रैंकिंग ओपन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप रे झारखंड रिन खेलोंडियो को भगी उदु ते 18 पदक को हामेट किया नारे पुनिय स्वर्ण मोड़े गोटे रजत आर आरे गोटे कस्य मेना आ हॉकी इंडिया दो आगामी युद्ध हॉकी एशियन चैंपियनशिप लगित राष्ट्रीय कोचिंग शिविर रिन खेलोंडिया को सूची जारी किया है झारखंड रिन मोड़े गोटांग बिटी गिद्र पुष्पा माझी संदीपा कुमारी श्रुति कुमारी नीलम तोपनो आर खिली कुमारी दो महिला वर्ग प्रशिक्षण लगी को नेता का कोआ कोड़ा गिद्र लगी दो आशीष तानी पूर्ति बाछन हुए कना केंद्रीय नागरिक उड़ियान मंत्रालय दो अहमदाबाद हैदराबाद और गुवाहाटी दो देवघर सा प्रस्ताव मंजूर कियाते आकाशवाणी रांची खोन हफ्ते के खबर मुचाद एना सामान को जोहार
0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम समाचार ध्वनि चित्र।
7: प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र।

0: इस अंक में विश्व सिकल सेल दिवस, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 और झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के खांडवा जिले के ओमकारेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच और उपचार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2023 में राष्ट्रीय मिशन के शुभारंभ के समय निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों में से एक बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।
1: अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास। इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। नवजात शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी विश्व में अनुबंधित रोगों की जांच परख की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के 7 करोड़ से भी अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुका है। इनमें से अधिकांश लोग जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड भी दिया गया है। सिकल सेल से जुड़े चुनौती को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और पिछले कुछ वर्षों में एक समग्र दृष्टि से हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। लगभग 3 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को लॉन्च किया था। इस पहल के पीछे न केवल सरकार का गंभीर प्रयास का दृढ़ संकल्प था, बल्कि इस चुनौती से जुड़े हर आयाम का समुचित रेस्पॉन्स देने की दूरदर्शी सोच भी थी।
0: विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल रांची में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर डॉक्टर अभिषेक रंजन ने कहा कि सही उपचार और जागरूकता के माध्यम से सिकल सेल का उन्मूलन संभव है।
2: जो कार्यक्रम था वो हमारे राज्य सरकार की ओर से आयोजित किया गया था, सिकल सेल नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम पे। उसका प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि हम अपने राज्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम को हम लोग उसको और इंटेंसिफाई कर सकें, क्या फैसिलिटीज हमारे मरीजों को मिल रही है, उनका क्या हक है, उसके बारे में हम लोग एक अवेयरनेस बता सकें हमारे राज्य के नागरिकों को। सही सब भी आई हुई थी, हमारा मेन पर्पज था कि हम लोग उसको ट्रेन कर सकें, उनको बता सकें कि पेशेंट को क्या क्या दवा अवेलेबल हैं, क्या क्या दवा उनको अवेलेबल कराना है, वैक्सीनेशन का क्या रोल है, बीमारी क्या गंभीरता है और राज्य सरकार का क्या उसमें योगदान है और उस हमारे प्रोग्राम को किस तरह से हम लोग पूरे राज्य में उसको सुचारू रूप से हम लोग।
0: नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम से पहले कुछ युवाओं से बातचीत भी की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योग और युवाओं के बीच एक मजबूत सेतु है।
3: इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। तो आम तौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलते। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है।
0: झारखंड समेत देश भर में योग के प्रति उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। खूंटी जिले के माहेल स्थित योगाभ्यास केंद्र में योग प्रशिक्षक नमत नाग ने बताया कि प्रतिदिन योगाभ्यास करने से व्यक्ति की जीवन शैली स्वस्थ बनी रहती है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर घर योग पहुंचे और सभी स्वस्थ रहे, क्योंकि आज के समय में योग की बहुत सारा महत्व है, क्योंकि अगर आज योग अगर है तो हम स्वस्थ हैं, नहीं तो आजकल के जो भी वातावरण है अशुद्ध है, और उसे हम कैसे शुद्ध करें और स्वस्थ में अपने स्वस्थ में परिवर्तन करें, उसके लिए हमें योग की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। और आज प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर एक घर योग पहुंचे, और लगभग हम उस कार्य पर लगे हुए हैं कि हर घर तक योग पहुंचे और सभी स्वस्थ रहें।
0: झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में एक दंपत्ति पिछले 22 वर्षों से लगातार योग का प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्होंने योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर न केवल स्वयं को स्वस्थ रखा है, बल्कि समाज में भी योग के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया है।
5: निःशुल्क सेवा दी है और आगे लगातार चलते रहेगी, और हम लोग प्रत्येक दिन योग का माध्यम से सभी को जागरूक किए हैं, और लगभग आज कोडरमा जिला में माने सरकारी टीचर से लेकर के प्राइवेट तक सभी का आम जनता से लेकर के 10,000 से ऊपर हम लोग योग शिक्षक बना चुके हैं।
6: दिनचर्या जो है मॉर्निंग में सुबह 3 बजे उठना, उठ के घरेलू कार्य को करते हुए फिर बाहर नियमित योग शिविर में जाना, एक नया योग कक्षा लगाना ताकि वहाँ भी एक नियमित कक्षा स्थापित करना, ये हमारा रेगुलर 20 साल से 22 साल से प्रयास चल रहा है और ये सार्थक भी हो रहा है। आज आप देख रहे हैं जगह जगह लोग योग कर रहे हैं।
0: योगाभ्यास के लिए आए लोगों ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक जीवन शैली का भी आधार है।
6: योग ही मेरा शरीर है, जब तक योग नहीं करेंगे तब तक मेरा शरीर अच्छा नहीं रहेगा। बॉडी हल्का होता है, या कपालभाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इससे बहुत बेनिफिट है।
7: बहुत सारे लोग विभिन्न गतिविधियों में संलग्न हैं, उससे निजात पाने के लिए सबसे बड़ा योग ही है।
0: वहीं उपराजधानी दुमका में योग अब केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि जन अभियान का रूप ले चुका है। योग महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। महिलाओं का कहना है कि नियमित योगाभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा में भी वृद्धि हुई है।
8: ये महिलाओं की ही क्लास है और ज्यादातर महिलाएं इसमें जो है 30+ में ही रहती है। बच्चों की भी क्लास होती है लेकिन ये मुख्यतः महिलाओं की क्लास है।
9: मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी, मुझे बीच बीच में फिजियोथेरेपी जाना पड़ता था हर 15-20 दिन में, लेकिन योगा क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे एक दिन भी वहाँ जाना नहीं पड़ा।
10: मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, मुझे डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने उतरने या नीचे बैठने मना कर दिया था, लेकिन योगा से मुझे बहुत फायदा है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से सीढ़ी चढ़ती उतरती हूँ, नीचे भी बैठती हूँ।
11: मुझे हार्ट की बीमारी है लेकिन अब बहुत ज़्यादा आराम है योगा करने से।
12: मेरे बैक भी गैप था हड्डी में, मुझे डॉक्टर ने झुकने तक मना कर दिया था, मैं यहाँ आके स्वस्थ हूँ।
13: मेरे को तो बहुत ही फायदा है, जैसे मेरे कमर में बहुत दर्द था ये है कमर का दर्द है, जैसे मेरे घुटनों में दर्द था वो भी नहीं है, और यहाँ आके मन इतना खुश हो जाता कि घर पे टाइम होते ही लगता मैं वहाँ जाऊँ।
0: जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित खालसा मध्य विद्यालय में स्कूली बच्चों के लिए विशेष योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
14: हम सालों भर 365 दिन योग दिवस ही मनाते हैं और लोगों में योग के प्रति जागरूकता और लोग योग को अपनाकर अपना जीवन को कैसे संवारें, अपने जीवन जीने की कला कैसे सीखें, इसके लिए हम लोग सालों भर कार्य करते हैं।
15: मेरे यहाँ पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा की पढ़ाई होती है, क्लास में हमेशा फिजिकल एक्टिविटी के तहत योग का आयोजन किया जाता है।
0: रांची के मोरहाबादी मैदान में 16 से 18 जून तक झारखंड कृषि उत्पाद एवं व्यापार मेला 2026 भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय मेले में राज्य भर के किसानों ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, बीज, उर्वरक और लाभकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि मेला किसानों को आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने का महत्वपूर्ण मंच है।
16: हम सभी लोगों को इस कृषि पद्धति पर गर्व होना चाहिए और सबसे अधिक गर्व कृषि व्यापार मेला, जिस तरीके से समय काल बीत रहा है, हमारे कृषक वर्तमान में जो कंपटीशन की व्यवस्था है उसमें अपने आप को कैसे खड़ा कर पाए, इसका एक छोटा सा रूप इस मेले में उतारने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। देश दुनिया में किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से और नए तकनीक के साथ हम अपने किसानों को मजबूत कर पाए, इसका ये एक छोटा सा प्रयास।
0: वहीं इस अवसर पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि इस 3 दिवसीय मेले का उद्देश्य किसानों और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर उन्हें सशक्त बनाना है।
17: देश भर से ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, शोधकर्ता, बीज उत्पादक, उर्वरक उत्पादक, कृषि यंत्र और निर्माता कंपनी, एफपीओ, एसएजी और सभी किसानों का एक साझा समागम आज झारखंड में रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पे हो, और आज यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी जो आए हुए हैं वो अपने अनुभवों को, अपने समस्याओं को, अपने आवश्यकताओं को यहाँ पे साझा करेंगे और वो हर एक संभव प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा कि उन विचारों को, उन विमर्शों को अभिलेखित किया जाए ताकि आने वाले भविष्य के समय में उन अभिलेखों को यहाँ पे झारखंड राज्य में किसानों के लिए नई योजनाओं को और नई नीति का निर्धारण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सके।
0: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 प्रसारित किया जाता है। संपादक महविश रहमान, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।

मीडियम वेव 546.4 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, कार्यक्रम है रजनीगंधा। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म दाग में किशोर कुमार को। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यायलाल का।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म महबूब की मेहंदी में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यायलाल का है।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं हसरत जयपुरी की शब्द रचना शंकर जयकिशन के बनाए धुन पर। फिल्म जंगली के लिए इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आगे सुनते हैं फिल्म अनपढ़ में लता मंगेशकर को। शब्द रचना रजा मेहदी अली खां की है, संगीत मदन मोहन का।

फिल्म अनपढ़ के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया।
1: नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूं विशाल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी ने उनका स्वागत किया और एक शीर्ष वार्ता वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो कि ऐसा पहला मौका किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यह सेशल्स की पिछले 12 साल में दूसरी यात्रा है। इससे पहले सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए थे। भारत और सेशल्स के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और दोनों ही देश 50 वर्ष भी मना रहे हैं अपने राजनयिक संबंधों को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे न केवल भारत और सेशल्स के संबंधों की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के महत्व की भी, खासतौर पे जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसके चलते, और भारत के लिए सेशल्स कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स के लिए भारत की क्या अहमियत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हम सेशल्स की बात करते हैं, और मैं सीधा वहीं से शुरुआत करूंगा, वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं उसमें कई और पहलू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नई दिल्ली से रवाना हुए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपनी बात रखी थी। कहा था महासागर जिसकी हम बात करते हैं मिस्टर सज्जनहार, तो महासागर से क्या इंडिकेशन मिलती है और उसमें सेशल्स का क्या महत्व है?
2: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिपेक्ष में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व वो जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 2015 में जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब सभी की सुरक्षा, सभी का जो वृद्धि है, जो भी उनका आगे ले जाना है, ग्रोथ है, प्रगति है, सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। परंतु उसका परिपेक्ष केवल इंडियन ओशन था। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने महासागर को भी मॉरिशस में ही लॉन्च किया, और उसका है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। मतलब इसको और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अगर सागर केवल इंडियन ओशन भारतीय भूसागर से ही मिलता जुलता था, उसके परिपेक्ष में आता था, तो महासागर है इसका जो दायरा है कहीं और बढ़ गया है। और सेशल्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत ही उसका ज्यादा महत्व हो गया है। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो आगे चलते हुए दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे।
1: जो भारत है उसने सेशल्स के कई मुख्य द्वीपों पर कोस्टल सर्वेलेंस राडार सिस्टम भी स्थापित किए हैं, यानी कि तटीय रक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करने में दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध है, जो गहरे संबंध है, वो काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम पायरेसी की बात करें, यानी कि जिन जिन शिपिंग लेन्स की आपने बात की, समुद्री सुरक्षा की बात की, तो एंटी पायरेसी जो स्टेप्स हैं, जो एंटी पायरेसी कैंपेन जो है उसमें भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा गहरा समझौता है और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी गाहे बगाहे कई बार दोनों देश कर चुके हैं, तो ये इतिहास से देखा जाए तो पहले सागर और उसके एक दशक बाद अब महासागर, यानी कि एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं सेशल्स के साथ जो हमारे संबंध हैं और हमारा जो समझौता है खासतौर पे तटीय सुरक्षा को लेकर और जो समुद्री सुरक्षा जिसे कहा जाए उसको लेकर भी। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है मिस्टर सज्जनहार और हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा दिल रखते हुए कई बार कई तरह से सेशल्स की मदद की है, चाहे हम अगर कोविड 19 के दिनों से देखें जिस तरह से हमने पेंडेमिक के दौरान कई और देशों के साथ साथ सेशल्स की भी मदद की, हमने वैक्सीन पहुंचाई, उसके अलावा खाद्य सामग्री पहुंचाई और हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले एक 175 मिलियन यूएस डॉलर का आर्थिक पैकेज भी सेशल्स को दिया गया था। तो वहां सेशल्स में इसको किस तरह से देखा जाता है, भारत की जो इमेज की अगर हम बात करें तो किस तरह की इमेज भारत की है?
2: देखिए, भारत की इमेज मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बताया है जो भारत के संबंध हमारे बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही पुराने हैं। वहां पर 1770 में हमारे 5 वहां पर जिसे कहा जाए वर्कर्स गए थे, लेबर गए थे, काम करने के लिए गए थे, कोई फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट उनको वहां पर ले गए थे और वो पहले भारतीय लोग थे जो वहां पर हैं और हमारा बहुत ही तब से बहुत ही संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो करीब 6,000 हमारे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमारा जो डायस्पोरा है उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं करीब 6,000 हैं, करीब 10-11,000 वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वगैरह। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए भारत ने हमेशा सेशल्स की मदद की है, सहायता की है और इसके लिए बहुत ही आभारी है, सेशल्स अपने को मानता है, क्योंकि पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये भी कहूंगा जो देखिए हमने बहुत वहां पर पेट्रोल वेसल्स दिए हैं उनको, जिससे कि वहां पर अपनी वो पेट्रोलिंग कर सके। आपने रेडार सिस्टम्स का तो बताया ही है, जो कोस्टल तटीय इलाकों में हमने उनको स्थापित किया है, अभी हमने 6 वहां पर तटीय इलाकों पर हमने ये एस्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं, जिससे कि जो कोई वहां पर अगर उनकी संप्रभुता के ऊपर कोई वहां पर आते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए उसके बारे में। फिर दूसरी बात है, हमने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उनको, इस प्रकार के बहुत सारे उनको हमने सामान दिया है जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो बड़ी अच्छी तरीके से निभा पाए। उसके साथ हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो लिमातीय एक्सरसाइजेस हर 2 साल में एक बारी होती हैं। तो मैं कहूंगा बहुत वहां पर काम किया गया है, हमारी जो नेवल शिप्स हैं, INS सुनैना है, INS शारदा है, उन्होंने वहां की उसके एरिया के लिए, तटीय इलाकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह की है। तो बहुत काम दोनों देश एक साथ करते हैं और इसमें वहां के जो लोग हैं वो भारत के बहुत ही आभार मानते हैं। हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसको और बढ़ सकता था, तो परंतु आपने जो अभी जिक्र किया है 175 मिलियन डॉलर का, वो जब डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी आए थे यहाँ पर फरवरी में,
1: जी बिल्कुल,
2: तो तब उन्होंने उस समय ये पैकेज लोन भी है और ग्रांट का पैकेज है जो कि दिया था हमने उन्हें, और उसमें जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे वहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें दोनों देशों ने कहा जो वहां पर काम किया जाएगा। आपने कोविड 19 का विशाल जी अभी जिक्र किया
1: जी।
2: और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सेशल्स मेरे विचार से दुनिया में करीब सबसे पहला देश रहा होगा जहां पर कि हमने 50,000 अपने वैक्सीन डोजेज वहां पर भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा करीब 2021 में बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में 16 जनवरी को हमने अपना टीकाकरण शुरू किया और फिर 21 जनवरी 4-5 दिन बाद ही हमने सेशल्स के लिए भी करीब 50,000 डोजेस भेज दिए थे। उनकी जनसंख्या ही अगर देखा जाए तो करीब 1,00,000 के आसपास है, छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है
1: जी।
2: परंतु भारत उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से उसको आगे लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है
1: जी,
2: वो हम इन्हीं समुद्र से ही हम उसको आगे लेकर चलते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, एमएस सज्जनहार, केवल सुरक्षा

0: के लिहाज से नहीं, केवल सैन्य उपकरण नहीं बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में भारत का काफी योगदान रहा है सेशल्स में, चाहे वो वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग हो, वहां पर ऊर्जा संयंत्र हो या फिर और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, उनका 50वां स्वतंत्रता दिवस है यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष स्तर पर वार्ता भी होगी, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए क्या वो दो या तीन बड़ी बातें हैं जो उभर कर सामने आ सकती हैं?
1: देखिए, एक तो मेरे विचार से भारत न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है और उसको वो बिल्कुल भारत जो है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। तो कोई ये जैसे हम देख रहे हैं चीन की तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मालदीव्स के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा हो, श्रीलंका के साथ आगे बढ़ा रहा हो, तो किसी को ये शक, चाहे वो ग्वादर में आ गया हो, जिबूती में आ गया हो, तो किसी को ये शक शुभ नहीं होना चाहिए जो भारत और देशों को यहाँ पर अपने इस क्षेत्र में आकर किसी ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी कार्रवाई करने का की अनुमति देगा। तो इसका भारत के यहाँ पर जो भी देश है उनके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है। एक तो ये संदेश बिल्कुल सीधा है। दूसरा है, चाहे देश छोटे हो परंतु भारत उनके साथ, जो भारत के मित्र हैं उनके साथ वो बिल्कुल मिलकर काम करेगा और उनकी सब पूरी तरीके से सहायता करेगा। आखिर में यही कहना है, जब भारत बढ़ता है, भारत की प्रगति होती है, भारत समृद्धिमान बनता है, तो ये केवल भारत के लिए फायदा नहीं है परंतु जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इन सभी के लिए फायदा है और भारत सभी के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है। उसी को हमने सागर का पहले रूप दिया और उसी को हमने फिर और बढ़ाकर महासागर का रूप दिया है।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सज्जनहार। जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सेशल्स की और भारत और सेशल्स के बीच जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनकी समीक्षा करने के लिए और श्रोताओं को ये बताने के लिए कि किस मार्ग पर यानी कि किस दिशा में भारत और सेशल्स के संबंध अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 102.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। सागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ मां के नाम सतत विकास के प्रति। बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को 5 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क मिल है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया। उस प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभ निर्मित झीले आज भी गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल 143 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जेसाई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया।
5: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मर और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. 50th Independence Anniversary Celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Sports in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the
1: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi The Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India Seychelles commitment towards the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people-to-people ties and enriching the shared journey. In a special to President Dr. Patrick Hermini. He also handed over 6 ambulances, 10 utility vehicles and 5 laser radial boats, which will further contribute to the development and celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. He is the first ever Indian Prime Minister to attend the National Day celebration of Seychelles. Akshit Vaidyan, Akashwani News.
6: Seychelles has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Faure said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. He said India deserves a permanent seat in the Security Council because of its population, growing global influence and its contribution to peacekeeping, maritime security and multilateral diplomacy. Indian Navy's indigenously built survey vessel large INS Ikshak reached Port Victoria in Seychelles as part of her operational deployment to the Southwest Indian Ocean region. The Defence Ministry said the visit coincides with the 50th National Day celebrations of Seychelles. During the port call, INS Ikshak will participate in the National Day celebrations and engage in a series of professional interactions with the Seychelles Defence Forces aimed at enhancing maritime cooperation and interoperability. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program will be broadcast website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more,

0: पंत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जना मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर है जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहां पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडी मेयर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की यह तकरीब एक पेड़ मां के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशल्स के दरमियान मुश्तरक अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वहां आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान रबते मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय बहरिया का अंदरून मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना रबते कायम करेगा जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीकेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नश्रिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DT न्यूज, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराहे रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में नायब वजीर आला हर्ष सिंघवी की मौजूदगी में जिला तरक्याती तालमेल और निगरानी कमेटी की सदारत की। वजीर मौसूफ ने मरकज की कई अहम स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। किसानों को माली एतबार से बाख्तियार बनाने की गरज से जनाब शाह ने एक तेज रफ्तार सर्वे कराए जाने की बात कही ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमीन रखने वाले हर किसान को कम अज कम 2 मवेशी मुहैया कराए जाएं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की मजबूती बहुत छोटे और मुतवस्सित कारोबारी इदारों के इसके शोबे के इश्तराक पर मबनी होती है। आज नई दिल्ली में MSME के दिन 2026 उद्यमी भारत की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में MSME का शोबा पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर्स के हौसले और कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। नायब सदर ने कहा कि यह शोबा मुसलसल आला मियारात को बरकरार रखते हुए मुल्क की कुल बरामदात में तकरीबन 50% का तआवुन कर रहा है। जनाब राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि MSME का शोबा 2047 तक विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर में एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس ایم ای کے مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کہا کہ مرکزی بجٹ سے ایم ایس ایم ای کے شعبے کے لیے حکومت کی ترجیح اور عزم کا اظہار ہوتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ایک ایسے ایکو نظام کی تشکیل کے لیے عہد بند ہے جہاں ہر کاروباری کو اختراع، ترقی اور ملک کی تعمیر میں تعاون کرنے کے برابر کے مواقع میسر ہوں.
3: آپ نے دیکھا ہوگا جو 2024-25 کا بجٹ تھا اور 25-26 کا بجٹ تھا، ایم ایس ایم ای کے بارے میں جتنی چنتائیں کی گئی ہیں اس بجٹ میں، اس کے پہلے ہمارے سینٹرل بجٹ میں چنتائیں نہیں ہوئی تھی. یہ درساتا ہے کہ پردھان منتری جی ایم ایس ایم ای کو آگے لے جانا چاہتے ہیں.
0: وزیراعظم کے میوزیم اور لائبریری پی ایم ایم ایل میں آج آنجہانی وزیراعظم پی وی نرسمہا راؤ کے 105ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی حیات اور وراثت کے تئیں وقف ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا. اس نمائش کا افتتاح پی ایم ایم ایل کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر نشی نرپیندر مشرا نے کیا اور پردھان منتری سنگرہالے میں لگی اس نمائش کو دیکھنے والوں کے لیے کھول دیا. اس نمائش میں ایسی نایاب تصاویر، سرکاری دستاویزات، تقاریر، خط و مراسلے اور آرکائف سے متعلق ساز و سامان رکھا گیا ہے جس سے عوامی زندگی میں نرسمہا راؤ کے قابل قدر سفر کا علم ہوتا ہے. وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کچھ ایسی پوسٹس گردش کر رہی ہیں جن کی روح سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے پچھلے برس 28 جولائی کو پارلیمنٹ کے ایوان میں دیے گئے خطاب کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ ان پوسٹس میں ان کی تقریر کے کچھ حصوں کو الگ کر کے اس طرح دکھایا جا رہا ہے جس سے یہ جھوٹا گمان گزرتا ہے کہ جناب سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران کسی بھارتی فوجی کی جان تلف نہیں ہوئی ہے. وزیر دفاع کے بیان کے تناظر کی وضاحت پیش کرتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ جناب سنگھ کے خطاب کے وقت میڈیا کے کچھ حصوں اور سوشل میڈیا پر ایک مخصوص مستقل اور پر اثر بیانیہ ابھرا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی پائلٹس کی جانیں تلف ہوئی ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ یہ بیان قطعی غلط تھا، اس کے باوجود اسے بہت شدت کے ساتھ طول دیا جا رہا تھا جس میں واضح طور پر آپریشن کی کامیابی کو کم کرنے اور عوامی جذبات کو مجروح کرنے کی نیت کار فرما تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انیل مشرا نے اپنے اپنے استعفے دے دیے ہیں. اس سلسلے میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر کے خزانچی نے آج ایک بیان جاری کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں ان استعفوں پر غور و خوض کیا جائے گا. اس میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عقیدت مندوں کی جانب سے دان میں دی گئی چاندی کی اینٹیں پہنچا ہے. اس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایس آئی ٹی کی عبوری رپورٹ کے مطابق عطیات سے متعلق معاملے میں ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے جس کے مہاراشٹر کی ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ٹی ای ٹی سے متعلق پیپر لیک ہونے کے ایک بڑے واقعے کا راز بھیونڈی میں فاش ہوا ہے. امتحان کے انعقاد سے ایک دن قبل اس بات کا علم ہوا اور پیپر لیک معاملے میں ملوث تین مبینہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. پولیس نے بتایا کہ ملزمین ٹی ای ٹی کے سوال نامے دلی سے لے کر آئے تھے اور وہ مبینہ طور پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی مالیت کے ایک سودے میں انہیں فروخت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. ایک سراغ ملنے پر کاروائی کرتے ہوئے بھیونڈی کی پولیس نے ایک جال بچھایا اور لین دین طے پانے سے قبل ہی تین ملزموں کو حراست میں لے لیا گیا. اس واقعے کے اتوار کو ہونے والے ٹی ای ٹی کے امتحان کو ملتوی کر دیا ہے. امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اس واقعے کے سبب مہاراشٹر بھر میں لاکھوں امیدواروں کے درمیان تشویش پیدا ہو گئی ہے. مغربی ایشیا میں چار مہینے سے جاری مہازرائی کو ختم کرنے کی غرض سے دو ہفتے پہلے طے پائی کمزور جنگ بندی کو انتہائی دباؤ کا سامنا ہے. پچھلے 48 گھنٹے میں امریکہ اور ایران کے درمیان کئی حملے اور جوابی حملے ہوئے ہیں. حملوں نے جمعرات کے روز اس وقت زور پکڑا جب آبنائے ہرمز میں ایک کمرشل جہاز پر کیے گئے ایرانی حملے کے جواب میں امریکہ کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا. اس کے بعد تہران کے بقول آج خطے میں امریکی فوجی پوزیشن کے خلاف اس کا حملہ ایک دفاعی حملہ تھا. دونوں ہی ملک عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں جبکہ امریکہ اور ایران دونوں ہی جیسے کو تیسا محاورے پر عمل کرتے ہوئے فوجی کاروائیوں کے ایک سلسلے میں ملوث ہو گئے ہیں جس سے 40 ملکوں کی سفارتی کوششوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. افغانستان کے ہندو کش خطے میں آج شام بھارتی وقت کے مطابق تقریباً 7:04 پر 6.2 شدت کا زبردست زلزلہ آیا. زلزلے کے جھٹکے بھارت، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان اور ترکمانستان میں محسوس کیے گئے. دلی این سی آر، جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور ہریانہ سمیت شمالی بھارت کے کئی حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. جموں کشمیر میں سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ، کپواڑہ اور جموں ضلعوں سمیت مرکز کے زیر انتظام کئی علاقوں میں لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. اہلکاروں نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے نیشنل سینٹر فار سسمالوجی میں سائنسدان سنجے کمار پرجاپتی نے بتایا کہ یہ زلزلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے معتدل تھا اور اس کے مرکز کے نزدیک توقع ہے کہ نقصان بھی کافی کم ہوا ہوگا.
4: کی جو گہرائی وہ 215 کلومیٹر ہے اور یہ بھوکمپ کابل سے لگ بھگ 478 کلومیٹر اتر میں ہے اور سری نگر سے 512 کلومیٹر پشچم میں ہے اور یہ دلی سے لگ بھگ 1000 کلومیٹر اتر پشچم میں. اور اس کے جھٹکے جو ہیں دلی این سی آر، چنڈی گڑھ، سری نگر، ہماچل پردیش کئی حصوں میں محسوس کیے گئے اور ریپورٹس کے پاس اس کی تیوتا تھی 4 اور اس کی گہرائی ادھک ہونے کے کارن یہ جن ریجن میں محسوس کیے گئے لیکن اس کی انٹینسٹی 4 ہی ہے تو اس کی چھتی ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے.
0: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل کے لیے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں بہت شدید بارش سے لے کر انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمہ نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور اتر پردیش میں کل کے لیے تیز گرمی کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں کل عارضی طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے. یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ٹائٹن جم میں بھارت کی دیویکا سہاگ، کدامبی شری کانت اور رونق چوہان سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں دیویکا سہاگ نے جاپان کی تیسرے درجے کی کھلاڑی ریکو گنجی کو سیدھے سیٹوں میں 22-20، 21-19 سے شکست دی. کل سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ ڈنمارک کی لائن کرسٹوفرسن سے ہوگا. مردوں کے سنگلز میں سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی کدامبی شری کانت نے چینی تائپے کے لیاو جو فو کو 21-9، 12-21-21-8 سے شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل کے لیے اس امکان کو برقرار رکھا ہے کہ فائنل میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے ہوں گے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر اعظم نریندر مودی سیشیلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کے لیے وہاں پہنچ گئے ہیں. بھارت نے سیشیلز کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے اسے تیز رفتار گشتی جہاز، ایمبولینسز اور دیگر کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں اور لیزر ریڈیل کشتیاں تحفے میں دی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. شری رام جنم بھومی مندر ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی انل مشرا نے عطیات میں خورد بورد سے متعلق معاملوں کے بعد اخلاقی بنیاد پر استعفے دے دیے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان دونوں طرف سے حملوں اور جوابی حملوں کے بعد جنگ بندی دباؤ کا شکار ہے. اور یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی دیویکا سہاگ، کدامبی شری کانت اور رونق چوہان سیمی فائنل ختم ہوا.
5: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना. विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं. आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे. रहिए हमारे साथ. आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
6: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता हैं उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
7: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
6: जी।
7: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट है। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
6: जी।
7: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
6: जी।
7: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और उनकी डेथ हो गई। तो उस घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
5: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
8: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
9: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
8: जी।
9: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
8: जी,
9: उन्होंने देखा जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
8: जी।
9: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई, इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीब आवाज उसको रिले करता था
6: जी।
9: और वो सुनाई नहीं देता था और

0: मोबाइल भी नहीं था और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पे
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में नेटवर्क की समस्या है, वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौती
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9 महीने 10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून महा विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में मत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाश या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहां से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है, यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो रुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे कालीगत से स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम FTTH ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। इसी तरह चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और डेटा ट्रांसमिशन विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एयरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
2: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
5: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
6: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होके अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
5: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जी वी राव सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट निदेशक एआईजी अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाश गंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अर्थात ग्रीष्म बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साहब ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्ट प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur.
2: He was initiated by Sri Dulal Roy.
1: He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the cases of instrumental music from the great Sarangi Maestro Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries: Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला। विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार।

0: चार दिल्ली
1: पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियांड्रो ट्रोसार्ड के दो गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Marke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defense Minister's remarks,